0: You're listening to
1: Bradford Asian Radio on 1413 AM.
0: You're listening to
1: Bradford Asian Radio on 1413 AM.
2: And the winner is
3: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका, पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक, आटा चावल दालें मसाला जात, रोजाना ताजा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे, फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की खुआरी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबी रोड ब्रैडफोर्ड BD88JL। बुखारी पसंद आपकी और हमारी बुखारी।
6: उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे, क्या ही चॉइस है आपका।
7: ये चॉइस हमारा नहीं, ये तो कमाल है, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का।
6: जो कि पायदार, मजबूत, खूबसूरत डबल एंट्रेपल ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
7: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं।
6: फर्स्ट चॉइस विंडोज एंड डोर्स यॉर्कशायर,
7: 106 लिस्टर हिल्स ब्रैडफोर्ड BD71JL।
6: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए, आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
7: 01274317644।
8: फॉर क्वालिटी, वैल्यू, स्टाइल एंड सिक्योरिटी, योर नंबर वन चॉइस, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर।
7: दुल्हन वो जो पिया मन भाई,
9: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
7: नित नए डिजाइन के साथ चूड़ियां, कंगन, कांटे,
9: बालियां, अंगूठियां और हार,
7: जो दुल्हन करे सिंगार,
9: आज ही मामू काके की दुकान,
7: खालिस सोने की पहचान,
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स से शरीफ लाइए
7: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
9: आपकी शान
7: हमारी आन,
9: क्वालिटी की पहचान,
7: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 Duckworth Lane ब्रैडफोर्ड BD95ER, 01274491442।
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स। अरे बेटी की शादी करीब आ रही है, समझ नहीं आ रही कि जेवर कहाँ से लूँ।
10: अरे भोली, तुम्हें नहीं पता कि सोफी बहन ने ऑकलैंड पर सोफी ज्वेलर्स के नाम से गोल्ड जेवरात की दुकान खोल दी है।
9: सोफी ज्वेलर्स?
10: सोफी नहीं, सोफी, नित नए डिजाइन के जेवरात, जिनकी क्या है बात, इंश्योरेंस और वैल्यूएशन का भी इंतजाम, लेडी स्टाफ।
9: सोफी ज्वेलर्स, 121 ऑकलैंड BD94QU, 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
11: Looking to start driving or building a strong career? With Safeway Rider, you can learn automatic or manual driving with trusted, friendly instructors. We offer theory classes online and in-class to help you pass first time. Need your taxi badge for West, North or South Yorkshire? We will guide you step by step. Want more? Train as a driving instructor with our audit-approved trainers or get your truck, bus or forklift license and grow your future. Safeway Rider. Call today at 01274-201-679 or visit safewayrider.co.uk. Safeway Rider, helping you secure your future.
12: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
7: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली £299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली £99।
12: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट, लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डायरेक्ट, ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।

0: Master Jewelers, 93 Hotham Grange Road, Bradford 7, 414-760.
1: रिवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
2: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पल्स जाने का इरादा है।
1: जी हाँ, पल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रून,
2: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए। आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, पल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रेडफोर्ड, BD61DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
3: You're listening to
4: Bradford Asian Radio on 1413 AM.
3: You're listening to
4: Bradford Asian Radio on 1413 AM.

0: listening to Breakfast Asian Radio on 1413 AM.
1: And the winner is.
2: And the winner is.
3: And the winner is.
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे, क्या ही चॉइस है आपका।
6: ये चॉइस हमारा नहीं, ये तो कमाल है, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का,
5: जो कि पायदार, मजबूत, खूबसूरत डबल एंटीपल ग्लेस विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
6: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं।
5: फर्स्ट चॉइस विंडोज एंड डोर्स यॉर्कशायर,
6: 106 लिस्टर हिल्स, ब्रैडफोर्ड, BD71JL।
5: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए, आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
6: 01274317644।
7: फॉर क्वालिटी, वैल्यू, स्टाइल एंड सिक्योरिटी, योर नंबर वन चॉइस, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर।
6: आओ, असल सोने के जेवरात के लिए दुबई चले।
8: मगर दुबई का टिकट तो हमने लिया ही नहीं।
6: अरे पगली, अब दुबई ब्रैडफोर्ड में ही आ गई। जी हाँ, दुबई ज्वेलर्स ने व्हाइट एबे रोड पर पेट्रोल स्टेशन के पास खूबसूरत जेवरात का शानदार शोरूम खोल दिया है।
8: झिलमिल करते कांटे, बालियां, कंगन, गले के हार 22 और 24 कैरेट गोल्ड में तैयार।
6: टॉप क्वालिटी, बेहतरीन सर्विस, ओपन 7 डेज।
8: 30 वेटले हिल, ब्रैडफोर्ड, BD8 8NG, फोन 01274477257। दुबई ज्वेलर्स,
6: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका। पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक, आटा, चावल, दालें, मसाला जात, रोजाना ताज़ा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे, फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की खुआरी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर, नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबी रोड, ब्रैडफोर्ड, BD8 8JL। बुखारी, पसंद आपकी और हमारी बुखारी।
9: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
8: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ 3 दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रैडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे।
6: मिलान दुल्हा हाउस, 8183 व्हाइट एबे रोड, ब्रैडफोर्ड, BD8 8DR। टेलीफोन 07885428349। अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम, 1304 लीड्स रोड, ब्रैडफोर्ड।
8: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
6: तुम्हें पता है भाभी ने बॉबीज कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
8: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट, लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डाइक, ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3 ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।
10: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
6: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पल्स जाने का इरादा है।
10: जी हाँ, पल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
6: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए, आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, पल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रैडफोर्ड, BD6 1DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
11: Do you know there are 170,000 new cases of cancer each year in Pakistan? Do you know that Imran Khan Cancer Appeal provides free cancer treatment to 75% of its patients? Do you know that the third specialist Shaukat Hanum Cancer Hospital is being built in Karachi? We need your support more than ever now. Please donate today by calling 01274 424444 or donate online at ikca.org.uk.
0: You're listening to
12: Bradford Asian Radio on 1413 AM.
0: You're listening to
12: Bradford Asian Radio on 1413 AM.

0: You're listening to
1: Bradford Asian Radio on 1413 AM.
2: जी लिस्टनर्स, इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं फेडरल मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग जनाब मोहम्मद अली दुरानी, और आज जो तकरीब थी जिसमें डायरेक्टर जनरल रेडियो पाकिस्तान जनाब तारिक इमाम के हवाले जो सीडी गई थी, जो लॉन्च की गई सीडी जिसमें इकबाल का कलाम है, इसका टाइटल अपना मुकाम पैदा कर, इसके हवाले से हम मिनिस्टर साहब से पूछेंगे कि वो क्या कहना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर।
3: वालेकुम सलाम।
2: जी सर, इस सीडी के हवाले से और आज जो तकरीब थी इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे?
3: आज जी वो कल जैसे 9 नवंबर है और इकबाल डे के रेफरेंस से आज सीडी जारी किया गया है, जिसका बुनियादी मकसद ये है कि जो कलाम है उसको नौजवानों तक, इकबाल की सोच को आम लोगों तक पहुंचाने के लिए जो है वो बहुत अरसे बाद कलाम इकबाल को दोबारा जो है एक नए के साथ जो है पेश किया गया है और एक नए अपोजिशन के साथ पेश किया गया है। मैं समझता हूँ ये एक डेवलपमेंट है, इंशाल्लाह ये काफी जारी रहेगा।
2: हम सर से उनका पैगाम लेंगे कल हजरत अल्लामा इकबाल का योम पैदाइश है, उस हवाले से। जी सर, आप क्या कहना चाहेंगे?
3: मैं समझता हूँ कि जी कल के दिन की अहमियत जो है वो इस जाहिर होती है कि कल उस शख्सियत का योम पैदाइश है जिनके तस्वुर की बुनियाद पर ये मुल्क हमारे वजूद में आया, और ऐसी शख्सियत जो पूरी मुस्लिम उम्मा के नौजवानों के लिए एक आइडियल की हैसियत रखती है, और ऐसी शख्सियत जिनके कलाम ने जो है पूरी मुस्लिम उम्मा के अंदर जो है एक एतमाद और एक अपनी पहचान, एक खुदी और एक एतमाद पैदा किया। इसलिए मैं समझता हूँ कि कल का दिन अहम है और कल हमारी खुद की सोच और फिक्र जो है वो इस तरह से उसको आगे बढ़ाना चाहिए। हम सब जो है ना सिर्फ इकबाल के पैगाम को समझे बल्कि उससे अमली रहनुमाई भी हासिल करें।
0: You're listening to
1: Bradford Asian Radio on 1413 AM.

0: Redcord Asian Radio on 1413 AM.
1: And the winner is.
2: And the winner is.
3: And the winner is.
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका, पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक, आटा चावल दालें मसाला जात, रोजाना ताजा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे, फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की ख्वारी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबी रोड ब्रैडफोर्ड BD88JL। बुखारी, पसंद आपकी और हमारी बुखारी।
6: उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे, क्या ही चॉइस है आपका।
7: ये चॉइस हमारा नहीं, ये तो कमाल है, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का।
6: जो कि पायदार, मजबूत, खूबसूरत डबल एंड ट्रिपल ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
7: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं।
6: फर्स्ट चॉइस विंडोज एंड डोर्स यॉर्कशायर,
7: 106 लिस्टर हिल्स ब्रैडफोर्ड BD71JL।
6: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए, आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
7: 01274317644।
8: फॉर क्वालिटी, वैल्यू, स्टाइल एंड सिक्योरिटी, योर नंबर वन चॉइस, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर।
7: दुल्हन वो जो पिया मन भाई,
9: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
7: नित नए डिजाइन के सेट, चूड़ियां, कंगन, कांटे,
9: बालियां, अंगूठियां और हार,
7: जो दुल्हन करे सिंगार,
9: आज ही मामू काकी की दुकान,
7: खालिस सोने की पहचान,
9: पाकिस्तान ज्वेलर से शरीफ लाइए
7: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
9: आपकी शान
7: हमारी आन,
9: क्वालिटी की पहचान,
7: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 डुकवर्ट लेन ब्रैडफोर्ड, BD95ER, 01274491442।
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स। अरे बेटी की शादी करीब आ रही है, समझ नहीं आ रही कि जेवर कहाँ से लूँ।
10: अरे भोली, तुम्हें नहीं पता कि सोफी बहन ने ऑकलैंड पर सोफी ज्वेलर्स के नाम से गोल्ड जेवरात की दुकान खोल दी है।
9: सोफी ज्वेलर्स?
10: सोफी नहीं, सोफी, नित नए डिजाइन के जेवरात, जिनकी क्या है बात, इंश्योरेंस और वैल्यूएशन का भी इंतजाम, लेडी स्टाफ।
9: सोफी ज्वेलर्स, 121 ऑकलैंड, BD94QU, 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
11: ना ही बच्चों का कोई सेफ मुस्तकबिल, ना हमारा, कब तक ऐसे ही करेंगे गुजारा।
7: अरे सेफ पे राइडर जाएंगे, ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर बनके खूब पैसे कमाएंगे, बच्चों को ड्राइविंग भी सिखाएंगे।
11: बस, ट्रक, फोकलिफ्ट,
12: टैक्सी लाइसेंस,
11: हम हैं आपको सब कुछ सिखाने को तैयार।
7: 30 साल ब्रैडफोर्ड का सबसे बड़ा पुराना और काबिल एतमाद नाम, सेफ पे राइडर।
11: DSA ऑडिट अप्रूव्ड इंस्ट्रक्टर्स, ऑटोमेटिक एंड मैनुअल कार्स, ऑनलाइन थ्योरी क्लासेस की सहूलत, आज ही विजिट कीजिए
7: 33 वेटले लैंड ब्रैडफोर्ड, 01274201679।
11: safewayrider.co.uk। सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
7: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट्स की स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
11: खूबसूरत कारपेट्स, लैमिनेट, लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डायरेक्ट, ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।

0: अजान का वक्त हुआ चाहता है इस अजान के लिए हमें तावन हासिल है कूपर हॉल सिलिस्टर्स लिस्टर हिल्स साइंस पार्क कैंपस रोड ब्रेडफोर्ड BD71HR
1: अजान दे गई हजरत बिलाल की हस्ती अजान दे गई हजरत बिलाल की हस्ती नमाज पढ़ गए दुनिया में करबला वाले सामीन ब्रेडफोर्ड और इसके मुजाफात में अजान का वक्त हुआ चाहता है।

0: You're listening to
1: Bradford Asian Radio.
0: You're listening to
1: 1413 Bradford Asian Radio on 1413 AM.
2: And the winner is.
3: And the winner is.
4: And the winner is.
2: Your business being heard on the radio.
5: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
6: उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे, क्या ही चॉइस है आपका।
7: ये चॉइस हमारा नहीं, ये तो कमाल है, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का,
6: जो कि पायदार, मजबूत, खूबसूरत डबल एंट्रेपल ग्लेस विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
7: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं।
6: फर्स्ट चॉइस विंडोज एंड डोर्स यॉर्कशायर,
7: 106 लिस्टर हिल्स, ब्रैडफोर्ड, BD71JL।
6: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए, आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
7: 01274317644।
8: फॉर क्वालिटी, वैल्यू, स्टाइल एंड सिक्योरिटी, योर नंबर वन चॉइस, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर।
7: आओ, असल सोने के जेवरात के लिए दुबई चले।
9: मगर दुबई का टिकट तो हमने लिया ही नहीं।
7: अरे पगली, अब दुबई ब्रैडफोर्ड में ही आ गई। जी हाँ, दुबई ज्वेलर्स ने व्हाइट एबे रोड पर पेट्रोल स्टेशन के पास खूबसूरत जेवरात का शानदार शोरूम खोल दिया है।
9: झिलमिल करते कांटे, बालियां, कंगन, गले के हार 22 और 24 कैरेट गोल्ड में तैयार।
7: टॉप क्वालिटी, बेहतरीन सर्विस, ओपन 7 डेज।
9: 30 वेटले हिल, ब्रैडफोर्ड, BD8 8NG, फोन 01274477257। दुबई ज्वेलर्स,
7: व्हाइट एबे रोड पर धमाके पे धमाका। पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ शोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक। आटा, चावल, दालें, मसाला जात, रोजाना ताज़ा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे, फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की ख्वारी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर, नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबे रोड, ब्रैडफोर्ड, BD8 8JL। बुखारी, पसंद आपकी और हमारी बुखारी।
10: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
9: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ 3 दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रैडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे।
7: मिलान दुल्हा हाउस, 8183 व्हाइट एबे रोड, ब्रैडफोर्ड, BD8 8DR। टेलीफोन 07885 428 349। अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम, 1304 लीड्स रोड, ब्रैडफोर्ड।
9: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
7: तुम्हें पता है भाभी ने बोबीज कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
9: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट, लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डाइट, ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3 8DN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।
11: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
7: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पल्स जाने का इरादा है।
11: जी हाँ, पल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
7: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए, आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, पल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रैडफोर्ड, BD6 1DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
9: शादी आ गई है सर पर और कोई फोटोग्राफर नहीं है घर पर।
7: लगता है आपने asianweddingsuk.com का नाम नहीं सुना, जो आपकी शादी के चलते फिरते हसीन लम्हात हमेशा के लिए फोटोज और वीडियोस के जरिए महफूज करते हैं और फिल्म ऐसी बनाते हैं दूल्हा दुल्हन जैसी चाहते हैं।
9: डिजिटल क्वालिटी, तेज और दोस्ताना सर्विस, मेल और फीमेल
12: अदीब रायपुरी साहब की कई हुई नात के अशआर आपके सामने पेश कर रहा हूँ, और जो शेर पसंद आया आपको, बावाज़ बुलंद सुभान अल्लाह माशाल्लाह जरूर कहिएगा, इससे मुझे भी पढ़ने में मजा आएगा और आपको सुनने में मजा आएगा।

0: You're listening to
1: Bradford Asian Radio on 1413 AM.
2: Labbaik Allahumma labbaik, labbaik.
3: Hajj aur Umre ke package ke liye Selani Travels and Tours Private Limited ko hamesha yaad rakhiye. Aapke baabarkat safar ke liye tamam tar sahulaton ke saath munasib packages maujood hain. Apni deegar safari sahuliyat ke liye याद रखिए सैलानी ट्रेवल्स एंड टूर्स प्राइवेट लिमिटेड. हमारा पता B5 सैंड हेवन अपार्टमेंट्स नज़्द तीन तलवार बिलमुकाबिल बॉम्बे लाइट फैसल बैंक ब्रांच. इंतहाई मुनासिब कीमत पर आरामदेह सफर के लिए राबता कीजिए फोन 5654151516 और 17. मुल्की और गैर मुल्की मुसाफिरों के लिए वीजे और कयाम ताम की सहूलत भी मौजूद है. सैलानी ट्रेवल्स एंड टूर्स प्राइवेट लिमिटेड

0: ادخل الصرح فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها
1: You're listening to Bedford Asian Radio on 1413 AM.
2: And the winner is
3: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेश खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक आटा चावल दालें मसाला जात रोजाना ताजा सब्जियां और फल फ्रूट हलाल गोश्त और चूजे फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले बचिए इधर उधर की ख्वारी से शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से बुखारी सुपर स्टोर नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक व्हाइट एबी रोड ब्रेडफोर्ड BD88JL बुखारी पसंद आपकी और हमारी बुखारी
6: उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे क्या ही चॉइस है आपका
7: ये चॉइस हमारा नहीं ये तो कमाल है फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का
6: जो कि पायदार मजबूत खूबसूरत डबल एंट्री पर ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
7: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं
6: फर्स्ट चॉइस विंडोज एंड डोर्स यॉर्कशायर
7: 106 लिस्टर हिल्स ब्रेडफोर्ड BD71JL
6: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
7: 01274317644
8: फॉर क्वालिटी वैल्यू स्टाइल एंड सिक्योरिटी योर नंबर वन चॉइस फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर
7: दुल्हन वो जो पिया मन भाई
9: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए
7: नित नए डिजाइन के साथ चूड़ियां कंगन कांटे
9: बालियां अंगूठियां और हार
7: जो दुल्हन करे सिंगार
9: आज ही मामू काके की दुकान
7: खालिस सोने की पहचान
9: पाकिस्तान ज्वेलर से शरीफ लाइए
7: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए
9: आपकी शान
7: हमारी आन
9: क्वालिटी की पहचान
7: पाकिस्तान ज्वेलर्स 1 Dufferin Lane ब्रेडफोर्ड BD95BR 01274491442
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स अरे बेटी की शादी करीब आ रही है समझ नहीं आ रही कि जेवर कहाँ से लूँ
10: अरे भोली तुम्हें नहीं पता कि सोफी बहन ने ऑकलैंड पर सोफी ज्वेलर्स के नाम से गोल्ड जेवरात की दुकान खोल दी है
9: सोफी ज्वेलर्स
10: सोफी नहीं सोफी नित नए डिजाइन के जेवरात जिनकी क्या है बात इंश्योरेंस और वैल्यूएशन का भी इंतजाम लेडी स्टाफ
9: सोफी ज्वेलर्स 121 ऑकलैंड BD94QU 01274056014 सोफी ज्वेलर्स
11: Looking to start driving or building a strong career? With Safeway Rider, you can learn automatic or manual driving with trusted, friendly instructors. We offer theory classes online and in-class to help you pass first time. Need your taxi badge for West, North or South Yorkshire? We will guide you step by step. Want more? Train as a driving instructor with our audit-approved trainers or get your truck, bus or forklift license and grow your future. Safeway Rider. Call today at 01274-201-679 or visit safewayrider.co.uk. Safeway Rider, helping you secure your future.
12: सुनिए जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे
7: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स
12: खूबसूरत कारपेट्स लैमिनेट लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ बॉबीज कारपेट्स लिस्टेड डायरेक्ट ट्रैफिक लाइट्स ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग BD3ADN बॉबी आइए भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए नंबर मिलाइए 07414260078

0: Master Jewelers, 93 Hotham Grange Road, Bradford 7, 414-760.
1: रिवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
2: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज बेल्स जाने का इरादा है।
1: जी हाँ, बेल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
2: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए। आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, बेल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रेडफोर्ड, BD6 1DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन। अरे, ये पूरे ब्रेडफोर्ड में क्या है शोर?
3: आपको नहीं पता, ऑफर्स इन मेनिंगम स्टोर, रोजाना ताज़ा सब्जियां, फल, फ्रूट, सलाद, मीट, चिकन, आटा, दाल, चावल और मसाला, क्वालिटी में सबसे आला और सर्विस में सबसे बाला।
2: हर सम्त मचा है जिसका शोर, वो है मेनिंगम सुपर स्टोर। मेनिंगम सुपर स्टोर, कार्लाइल रोड, ब्रेडफोर्ड, BD8 8AX, फोन ब्रेडफोर्ड 4955555। हफ्ते के सातों दिन आपकी खिदमत में पेश, मेनिंगम सुपर स्टोर।
3: मेनिंगम सुपर स्टोर।
4: You're listening to
5: Bradford Asian Radio on 1413 AM.
4: You're listening to
5: Bradford Asian Radio on 1413 AM.
6: Kaapta hai dil tera, andeshaye toofan se kya? Na khuda tu, bahar tu, kishti bhi tu, sahil bhi tu. Dekh aakar koochaye chaake girebaan mein kabhi. कैस तू, लैला भी तू, सहरा भी तू, महमिल भी तू।

0: Bedford Asian Radio on 1413 AM.
1: And the winner is
2: Your business being heard on the radio.
3: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed, so find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
4: उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे, क्या ही चॉइस है आपका।
5: ये चॉइस हमारा नहीं, ये तो कमाल है, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का,
4: जो कि पायदार, मजबूत, खूबसूरत डबल एंट्रेपल ग्लेस विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
5: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं।
4: फर्स्ट चॉइस विंडोज एंड डोर्स यॉर्कशायर,
5: 106 लिस्टर हिल्स, ब्रैडफोर्ड, BD71JL।
4: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए, आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
5: 01274317644।
6: फॉर क्वालिटी, वैल्यू, स्टाइल एंड सिक्योरिटी, योर नंबर वन चॉइस, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर।
5: आओ, असल सोने के जेवरात के लिए दुबई चले।
7: मगर दुबई का टिकट तो हमने लिया ही नहीं।
5: अरे पगली, अब दुबई ब्रैडफोर्ड में ही आ गई। जी हाँ, दुबई ज्वेलर्स ने व्हाइट एबे रोड पर पेट्रोल स्टेशन के पास खूबसूरत जेवरात का शानदार शोरूम खोल दिया है।
7: झिलमिल करते कांटे, बालियां, कंगन, गले के हार, 22 और 24 कैरेट गोल्ड में तैयार।
5: टॉप क्वालिटी, बेहतरीन सर्विस, ओपन 7 डेज।
7: 30 वेटली हिल, ब्रैडफोर्ड, BD8 8NG, फोन 01274477257। दुबई ज्वेलर्स,
5: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका, पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ शोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक, आटा, चावल, दालें, मसाला जात, रोजाना ताज़ा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे, फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की ख्वारी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर, नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबी रोड, ब्रैडफोर्ड, BD8 8JL। बुखारी, पसंद आपकी और हमारी बुखारी।
8: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
7: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ 3 दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रैडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे।
5: मिलान दुल्हा हाउस, 81-83 व्हाइट एबे रोड, ब्रैडफोर्ड, BD8 8DR, टेलीफोन 07885-428-349, अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम, 1304 लीड्स रोड, ब्रैडफोर्ड।
7: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
5: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
7: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट, लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डायरेक्ट, ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3 8DN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।
9: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
5: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज बेल्स जाने का इरादा है।
9: जी हाँ, बेल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
5: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए, आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, बेल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रैडफोर्ड, BD6 1DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
10: हिसाबे उम्र का इतना सा गोशवारा है, तुम्हें निकाल के देखा तो सब खसारा है। महमूद रिजवी अकाउंटेंट्स, जी हाँ, छोटे से छोटे टैक्सी अकाउंट से लेकर बड़ी से बड़ी कंपनी के अकाउंट्स बनवाने के लिए काबिल एतमाद नाम, महमूद रिजवी अकाउंटेंट्स, ऑडिट एंड अकाउंटेंसी, टैक्सेशन, VAT, बुककीपिंग, पेरोल, फंडरेजिंग, कंपनी फॉर्मेशन, मॉर्गेजेस। अकाउंट्स के किसी भी मसले के लिए ना हो परेशान, क्योंकि आपकी मुश्किल करेंगे आसान महमूद रिजवी चार्टर्ड सर्टिफाइड अकाउंटेंट्स, महमूद रिजवी, ग्रेट हॉटन रोड, ऑन ब्रैडफोर्ड, 424453। महमूद रिजवीज।
0: You're listening to Bedford Asian Radio on 1413 AM.
2: You're listening to
0: Bedford Asian Radio on 1413 AM.

0: Bradford Asian Radio on 14:13 AM.
1: And the winner is
2: Your Business Being Heard on the Radio.
3: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
4: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका, पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक, आटा चावल दालें मसाला जात, रोजाना ताज़ा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे, फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की ख्वारी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबी रोड ब्रेडफोर्ड BD88JL। बुखारी पसंद आपकी और हमारी बुखारी।
5: उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे, क्या ही चॉइस है आपका।
6: ये चॉइस हमारा नहीं, ये तो कमाल है, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का।
5: जो कि पायदार, मजबूत, खूबसूरत डबल एंड ट्रिपल ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
6: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं।
5: फर्स्ट चॉइस विंडोज एंड डोर्स यॉर्कशायर,
6: 106 लिस्टर हिल्स ब्रेडफोर्ड BD71JL।
5: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए, आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
6: 01274317644।
7: फॉर क्वालिटी, वैल्यू, स्टाइल एंड सिक्योरिटी, योर नंबर वन चॉइस, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर।
6: दुल्हन वो जो पिया मन भाई,
8: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
6: नित नए डिजाइन के सेट, चूड़ियां, कंगन, कांटे,
8: बालियां, अंगूठियां और हार,
6: जो दुल्हन करे सिंगार,
8: आज ही मामू काके की दुकान,
6: खालिस सोने की पहचान,
8: पाकिस्तान ज्वेलर से शरीफ लाइए
6: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
8: आपकी शान
6: हमारी आन,
8: क्वालिटी की पहचान,
6: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 Duffert Lane ब्रेडफोर्ड BD95ER 01274491442।
8: पाकिस्तान ज्वेलर्स। अरे बेटी की शादी करीब आ रही है, समझ नहीं आ रही कि जेवर कहाँ से लूँ।
9: अरे भोली, तुम्हें नहीं पता कि सोफी बहन ने ऑकलैन पर सोफी ज्वेलर्स के नाम से गोल्ड जेवरात की दुकान खोल दी है।
8: सोफी ज्वेलर्स?
9: सोफी नहीं, सोफी, नित नए डिजाइन के जेवरात, जिनकी क्या है बात, इंश्योरेंस और वैल्यूएशन का भी इंतजाम, लेडी स्टाफ।
8: सोफी ज्वेलर्स, 121 ऑकलैन BD94QU 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
10: ना ही बच्चों का कोई सेफ मुस्तकबिल, ना हमारा, कब तक ऐसे ही करेंगे गुजारा।
6: अरे सेफ पे राइडर जाएंगे, ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर बनके खूब पैसे कमाएंगे, बच्चों को ड्राइविंग भी सिखाएंगे।
10: बस, ट्रक, फोकलिफ्ट, टैक्सी लाइसेंस, हम हैं आपको सब कुछ सिखाने को तैयार।
6: 30 साल ब्रेडफोर्ड का सबसे बड़ा पुराना और काबिल एतमाद नाम, सेफ पे राइडर।
10: DSA ऑडिट अप्रूव्ड इंस्ट्रक्टर्स, ऑटोमेटिक एंड मैनुअल कार्स, ऑनलाइन थ्योरी क्लासेस की सहूलत, आज ही विजिट कीजिए
6: 33 Wetley Lane ब्रेडफोर्ड 01274201679।
10: saferaider.co.uk। सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
6: तुम्हें पता है भाभी ने बॉबीज कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली £299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली £99।
10: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट, लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डायरेक्ट, ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग्स, BD3ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260 07 8।

0: Master Jewelers, 93 Horton Grange Road, Bradford 7, 01274-414-760.
1: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
2: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पल्स जाने का इरादा है।
1: जी हाँ, पल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
2: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए। आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, पल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रेडफोर्ड, BD6 1DA, फोन 01274-306-567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
3: ब्रेडफोर्ड में फर्नीचर का सबसे खूबसूरत शोरूम लव फर्नीचर।
4: फर्नीचर तो आप घर घर देखते हैं, मगर जो देखते ही पसंद आ जाए वो है लव फर्नीचर, जहाँ पर ऑर्थोपेडिक डबल बेड सिर्फ 100 pounds से, जर्मन वार्डरोब, डाइनिंग टेबल, कॉफी टेबल, रग, कारपेट, मैट्रेसेस की वसी वैरायटी।
5: ओपन 7 डेज, 10 till 6, फ्री डिलीवरी ऑल ओवर वेस्ट यॉर्कशायर। लव फर्नीचर, कार्लाइल रोड, ब्रेडफोर्ड, अपोजिट बार्कलेज बैंक, पॉन्ड ब्रेडफोर्ड, 9627229622।
4: लव फर्नीचर, फर्नीचर यू लव।
6: यू आर लिसनिंग टू
7: Bradford Asian Radio on 1413 AM.
6: You're listening to
7: Bradford Asian Radio on 1413 AM.

0: Bradford Asian Radio on 14:13 AM.
1: And the winner is
2: Your business being heard on the radio.
3: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
4: उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे, क्या ही चॉइस है आपका।
5: ये चॉइस हमारा नहीं, ये तो कमाल है, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का,
4: जो कि पायदार, मजबूत, खूबसूरत डबल एंट्रेपल ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
5: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं।
4: फर्स्ट चॉइस विंडोज एंड डोर्स यॉर्कशायर,
5: 106 लिस्टर हिल्स, ब्रैडफोर्ड, BD71JL।
4: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए, आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
5: 01274317644।
6: फॉर क्वालिटी, वैल्यू, स्टाइल एंड सिक्योरिटी, योर नंबर वन चॉइस, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर।
5: आओ असल सोने के जेवरात के लिए दुबई चले।
7: मगर दुबई का टिकट तो हमने लिया ही नहीं।
5: अरे पगली, अब दुबई ब्रैडफोर्ड में ही आ गई। जी हाँ, दुबई ज्वेलर्स ने व्हाइट एबे रोड पर पेट्रोल स्टेशन के पास खूबसूरत जेवरात का शानदार शोरूम खोल दिया है।
7: झिलमिल करते कांटे, बालियां, कंगन, गले के हार 22 और 24 कैरेट गोल्ड में तैयार।
5: टॉप क्वालिटी, बेहतरीन सर्विस, ओपन 7 डेज।
7: 30 वेटले हिल ब्रैडफोर्ड, BD8 8NG, फोन 01274477257। दुबई ज्वेलर्स,
5: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका। पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक। आटा, चावल, दालें, मसाला जात, रोजाना ताज़ा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे, फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की खुआरी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर, नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबी रोड, ब्रैडफोर्ड, BD8 8JL। बुखारी, पसंद आपकी और हमारी बुखारी।
8: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
7: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ 3 दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रैडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे।
5: मिलान दुल्हा हाउस, 81-83 व्हाइट एबे रोड, ब्रैडफोर्ड, BD8 8DR। टेलीफोन 07-885-428-349। अदर ब्रांच, द मुगल एम्पोरियम, 1304 लीड रोड, ब्रैडफोर्ड।
7: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
5: तुम्हें पता है भाभी ने बॉबीज कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
7: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट, लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डाइट, ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3 8DN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।
9: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
5: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पल्स जाने का इरादा है।
9: जी हाँ, पल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
5: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए, आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, पल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रैडफोर्ड, BD6 1DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
10: क्या आपकी आवाज खूबसूरत है? क्या आप में बोलने की जरूरत है? अगर ऐसी ही सूरत है तो ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो को आपकी जरूरत है। आज ही स्टूडियो नंबर 01274306677 पर कॉल कीजिए और अपनी आवाज सुनने वालों के दिलों तक पहुंचाइए और खुद को रेडियो स्टार बनाइए। याद रखिए, अगर आपको बड़ी बड़ी छोड़ने की आदत है तो ये आपके कल के बड़ा ब्रॉडकास्टर बनने की जमानत है। आज ही स्टूडियो नंबर 01274306677 पर कॉल कीजिए। ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो,
0: यू आर लिसनिंग टू Bradford Asian Radio on 14:13 AM.
2: You're listening to
0: Bradford Asian Radio on 14:13 AM.

0: You're listening to
1: Bradford Asian Radio on 1413 AM.
2: सितारों से आगे जहां और भी हैं, अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं. अगर खो गया एक नशेमन तो क्या गम, मकामाते आहो फगां और भी हैं. तू शाही है, परवाज है काम तेरा, तेरे सामने आसमां और भी हैं. इसी रोज शब में

0: dulhan.
1: You're listening to
2: Bedford Asian Radio on 1413 AM.
3: And the winner is...
4: And the winner is...
5: And the winner is...
3: Your business being heard on the radio.
6: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
7: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका, पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेश खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। ऑल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक, आटा चावल दालें मसाला जात, रोजाना ताजा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे, फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की खुआरी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबी रोड ब्रेडफोर्ड BD88JL। बुखारी, पसंद आपकी और हमारी बुखारी।
8: उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे, क्या ही चॉइस है आपका।
9: ये चॉइस हमारा नहीं, ये तो कमाल है, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का,
8: जो कि पायदार, मजबूत, खूबसूरत डबल एंड ट्रिपल ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
9: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं।
8: फर्स्ट चॉइस विंडोज एंड डोर्स यॉर्कशायर,
9: 106 लिस्टर हिल्स ब्रेडफोर्ड BD71JL।
8: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए, आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
9: 01274317644।
10: फॉर क्वालिटी, वैल्यू, स्टाइल एंड सिक्योरिटी, योर नंबर वन चॉइस, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर।
9: दुल्हन वो जो पिया मन भाई,
11: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
9: नित नए डिजाइन के सेट, चूड़ियां, कंगन, कांटे,
11: बालियां, अंगूठियां और हार,
9: जो दुल्हन करे सिंगार,
11: आज ही मामू काके की दुकान,
9: खालिस सोने की पहचान,
11: पाकिस्तान ज्वेलर्स से शरीफ लाइए
9: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
11: आपकी शान
9: हमारी आन,
11: क्वालिटी की पहचान,
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 Duckworth Lane ब्रेडफोर्ड BD95ER 01274491442।
11: पाकिस्तान ज्वेलर्स। अरे बेटी की शादी करीब आ रही है, समझ नहीं आ रही कि जेवर कहाँ से लूँ।
12: अरे भोली, तुम्हें नहीं पता कि सोफी बहन ने ऑकलैन पर सोफी ज्वेलर्स के नाम से गोल्ड जेवरात की दुकान खोल दी है।
11: सोफी ज्वेलर्स?
12: सोफी नहीं, सोफी, नित नए डिजाइन के जेवरात, जिनकी क्या है बात, इंश्योरेंस और वैल्यूएशन का भी इंतजाम, लेडी स्टाफ।
11: सोफी ज्वेलर्स, 121 ऑकलैन BD94QU 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
13: Looking to start driving or building a strong career? With Safeway Rider, you can learn automatic or manual driving with trusted, friendly instructors. We offer theory classes online and in-class to help you pass first time. Need your taxi badge for West, North or South Yorkshire? We will guide you step by step. Want more? Train as a driving instructor with our audit-approved trainers or get your truck, bus or forklift license and grow your future. Safeway Rider. Call today at 01274-201-679 or visit safewayrider.co.uk. Safeway Rider, helping you secure your future.
14: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
9: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली £299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली £99।
14: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट, लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डाइट, ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।

0: Master Jewelers, 93 Hotham Grange Road, Bradford 7, 414-760.
1: रिवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
2: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पल्स जाने का इरादा है।
1: जी हाँ, पल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
2: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए। आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, पल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रेडफोर्ड, BD6 1DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
3: यू आर लिसनिंग टू
4: Bradford Asian Radio on 1413 AM.
3: You're listening to
4: Bradford Asian Radio on 1413 AM.

0: جنت.
1: یہ آخری شعر.
0: مر کر بھی میری ماں

0: You're listening to Bedford Asian Radio on 1413 AM.
1: And the winner is
2: Your business being heard on the radio.
3: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
4: उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे, क्या ही चॉइस है आपका।
5: ये चॉइस हमारा नहीं, ये तो कमाल है, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का,
4: जो कि पायदार, मजबूत, खूबसूरत डबल एंट्रीपल ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
5: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं।
4: फर्स्ट चॉइस विंडोज एंड डोर्स यॉर्कशायर,
5: 106 लिस्टर हिल्स, ब्रैडफोर्ड, BD71JL।
4: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए, आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
5: 01274317644।
6: फॉर क्वालिटी, वैल्यू, स्टाइल एंड सिक्योरिटी, योर नंबर वन चॉइस, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर।
5: आओ, असल सोने के जेवरात के लिए दुबई चले।
7: मगर दुबई का टिकट तो हमने लिया ही नहीं।
5: अरे पगली, अब दुबई ब्रैडफोर्ड में ही आ गई। जी हाँ, दुबई ज्वेलर्स ने व्हाइट एबे रोड पर पेट्रोल स्टेशन के पास खूबसूरत जेवरात का शानदार शोरूम खोल दिया है।
7: झिलमिल करते कांटे, बालियां, कंगन, गले के हार 22 और 24 कैरेट गोल्ड में तैयार।
5: टॉप क्वालिटी, बेहतरीन सर्विस, ओपन 7 डेज।
7: 30 वेटले हिल ब्रैडफोर्ड, BD8 8NG, फोन 01274477257। दुबई ज्वेलर्स,
5: व्हाइट एबे रोड पर धमाके पे धमाका। पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ शोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक, आटा, चावल, दालें, मसाला जात, रोजाना ताज़ा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे, फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की ख्वारी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर, नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबे रोड, ब्रैडफोर्ड, BD8 8JL। बुखारी, पसंद आपकी और हमारी बुखारी।
8: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
7: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ 3 दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रैडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे।
5: मिलान दुल्हा हाउस, 8183 व्हाइट एबे रोड, ब्रैडफोर्ड, BD8 8DR। टेलीफोन 07885428349। अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम, 1304 लीड रोड, ब्रैडफोर्ड।
7: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
5: तुम्हें पता है भाभी ने बॉबीज कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
7: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट, लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डायरेक्ट, ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3 8DN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।
9: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
5: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पल्स जाने का इरादा है।
9: जी हाँ, पल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
5: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए। आज ही तशरीफ लाइए, ओपन 7 डेज। पल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रैडफोर्ड, BD6 1DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
10: Do you know there are 170,000 new cases of cancer each year in Pakistan? Do you know that Imran Khan Cancer Appeal provides free cancer treatment to 75% of its patients? Do you know that the third specialist Shaukat Hanum Cancer Hospital is being built in Karachi? We need your support more than ever now. Please donate today by calling 01274 424444 or donate online at ikca.org.uk.
0: You're listening to
1: Bradford Asian Radio on 1413 AM.
0: You're listening to
1: Bradford Asian Radio on 1413 AM.

0: You're listening to Bradford Asian Radio on 1413 AM.
1: And the winner is
2: Your business being heard on the radio.
3: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
4: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका, पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेश है खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक, आटा चावल दालें मसाला जात, रोजाना ताज़ा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे, फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की ख्वारी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबी रोड, ब्रेडफोर्ड, BD88JL। बुखारी पसंद आपकी और हमारी बुखारी।
5: उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे, क्या ही चॉइस है आपका।
6: ये चॉइस हमारा नहीं, ये तो कमाल है, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का,
5: जो कि पायदार, मजबूत, खूबसूरत डबल एंट्रेपल ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
6: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं।
5: फर्स्ट चॉइस विंडोज एंड डोर्स यॉर्कशायर,
6: 106 लिस्टर हिल्स, ब्रेडफोर्ड, BD71JL।
5: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए, आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
6: 01274317644।
7: फॉर क्वालिटी, वैल्यू, स्टाइल एंड सिक्योरिटी, योर नंबर वन चॉइस, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर।
6: दुल्हन वो जो पिया मन भाए,
8: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
6: नित नए डिजाइन के सेट, चूड़ियां, कंगन, कांटे,
8: बालियां, अंगूठियां और हार,
6: जो दुल्हन करे सिंगार,
8: आज ही मामू काकी की दुकान,
6: खालिस सोने की पहचान,
8: पाकिस्तान ज्वेलर्स से शरीफ लाइए
6: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
8: आपकी शान
6: हमारी आन,
8: क्वालिटी की पहचान,
6: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 Duffert Lane, ब्रेडफोर्ड, BD95ER, 01274491442।
8: पाकिस्तान ज्वेलर्स। अरे बेटी की शादी करीब आ रही है, समझ नहीं आ रही कि जेवर कहाँ से लूँ।
9: अरे भोली, तुम्हें नहीं पता कि सोफी बहन ने ऑक लेन पर सोफी ज्वेलर्स के नाम से गोल्ड जेवरात की दुकान खोल दी है।
8: सोफी ज्वेलर्स?
9: सोफी नहीं, सोफी, नित नए डिजाइन के जेवरात, जिनकी क्या है बात, इंश्योरेंस और वैल्यूएशन का भी इंतजाम, लेडी स्टाफ।
8: सोफी ज्वेलर्स, 121 ओक लेन, BD94QU, 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
10: ना ही बच्चों का कोई सेफ मुस्तकबिल, ना हमारा, कब तक ऐसे ही करेंगे गुजारा।
6: अरे सेफ राइडर जाएंगे, ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर बनके खूब पैसे कमाएंगे, बच्चों को ड्राइविंग भी सिखाएंगे।
10: बस ट्रक, फोकलिफ्ट, टैक्सी लाइसेंस, हम हैं आपको सब कुछ सिखाने को तैयार।
6: 30 साल ब्रेडफोर्ड का सबसे बड़ा, पुराना और काबिल एतमाद नाम, सेफ राइडर।
10: DSA ऑडिट अप्रूव्ड इंस्ट्रक्टर्स, ऑटोमेटिक एंड मैनुअल कार्स, ऑनलाइन थ्योरी क्लासेस की सहूलत, आज ही विजिट कीजिए
6: 33 Wetley Lane, ब्रेडफोर्ड, 01274201679।
10: UK। सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
6: तुम्हें पता है भाभी ने बोबीज कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
10: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट, लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डायरेक्ट, ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।

0: Master Jewelers, 93 Hawthorne Grange Road, Bradford 7, 01274-414-760.
1: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
2: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज बेल्स जाने का इरादा है।
1: जी हाँ, बेल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
2: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए। आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, बेल्स, टी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रेडफोर्ड, BD6 1DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन। अरे, ये पूरे ब्रेडफोर्ड में क्या है शोर?
3: आपको नहीं पता, ऑफर्स इन मेनिंगम स्टोर, रोजाना ताज़ा सब्जियाँ, फल, फ्रूट, सलाद, मीट, चिकन, आटा, दाल, चावल और मसाला, क्वालिटी में सबसे आला और सर्विस में सबसे बाला।
2: हर सम्त मचा है जिसका शोर, वो है मेनिंगम सुपर स्टोर। मेनिंगम सुपर स्टोर, कार्लाइल रोड, ब्रेडफोर्ड, BD8 8AX, फोन ब्रेडफोर्ड 4955555। हफ्ते के सातों दिन आपकी खिदमत में पेश, मेनिंगम सुपर स्टोर।
3: मेनिंगम सुपर स्टोर।
4: You're listening to Bradford Asian Radio on 1413 AM. You're listening to Bradford Asian Radio on 1413 AM.

0: You're listening to
1: Bradford Asian Radio on 1413 AM.
2: देख आकर कूचाए चाके गिरेबां में कभी कैस तू लैला भी तू सहरा भी तू महमिल भी तू

0: You're listening to
1: Bradford Asian Radio on 14:13 AM.
2: اے روح محمد شیرازہ ہوا ملت مرحوم کا ابتر، اب تو ہی بتا تیرا مسلمان کدھر جائے، وہ لذت آشوب نہیں بحر عرب میں، پوشیدہ جو ہے مجھ میں وہ طوفان کدھر جائے، اس راز کو اب فاش کر اے روح محمد، آیات الہی کا نگہبان کدھر جائے.
0: You're listening to
1: Bradford Asian Radio on 14:13 AM.
3: And the winner is...
4: And the winner is...
5: And the winner is...
3: Your business being heard on the radio.
6: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
7: उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे, क्या ही चॉइस है आपका।
8: ये चॉइस हमारा नहीं, ये तो कमाल है, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का,
7: जो कि पायदार, मजबूत, खूबसूरत डबल एंटरप्रेस ग्लेस विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
8: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं।
7: फर्स्ट चॉइस विंडोज एंड डोर्स यॉर्कशायर,
8: 106 लिस्टर हिल्स ब्रैडफोर्ड, BD71JL.
7: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए, आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
8: 01274317644.
9: फॉर क्वालिटी, वैल्यू, स्टाइल एंड सिक्योरिटी, योर नंबर वन चॉइस, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर।
8: आओ, असल सोने के जेवरात के लिए दुबई चले।
10: मगर दुबई का टिकट तो हमने लिया ही नहीं।
8: अरे पगली, अब दुबई ब्रैडफोर्ड में ही आ गई। जी हाँ, दुबई ज्वेलर्स ने व्हाइट एबे रोड पर पेट्रोल स्टेशन के पास खूबसूरत जेवरात का शानदार शोरूम खोल दिया है।
10: झिलमिल करते कांटे, बालियां, कंगन, गले के हार, 22 और 24 कैरेट गोल्ड में तैयार।
8: टॉप क्वालिटी, बेहतरीन सर्विस, ओपन 7 डेज।
10: 30 वेटले हिल, ब्रैडफोर्ड, BD8 8NG, फोन 01274477257। दुबई ज्वेलर्स।
8: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका, पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक, आटा, चावल, दालें, मसाला जात, रोजाना ताज़ा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे, फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की ख्वारी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर, नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबी रोड, ब्रैडफोर्ड, BD8 8JL। बुखारी, पसंद आपकी और हमारी बुखारी।
11: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
10: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ 3 दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रैडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे।
8: मिलान दुल्हा हाउस, 8183 व्हाइट एबे रोड, ब्रैडफोर्ड, BD8 8DR, टेलीफोन 07885 428 349, अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम, 1304 लीड्स रोड, ब्रैडफोर्ड।
10: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
8: तुम्हें पता है भाभी ने बोबीस कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
10: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट, लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डायरेक्ट, ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3 ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।
12: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
8: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज बेल्स जाने का इरादा है।
12: जी हाँ, बेल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
8: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए, आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, बेल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रैडफोर्ड, BD6 1DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
10: शादी आ गई है सर पर और कोई फोटोग्राफर नहीं है घर पर।
8: लगता है आपने AsianWeddingsUK.com का नाम नहीं सुना, जो आपकी शादी के चलते फिरते हसीन लम्हात हमेशा के लिए फोटोज और वीडियोस के जरिए महफूज करते हैं और फिल्म ऐसी बनाते हैं दूल्हा दुल्हन जैसी चाहते हैं।
10: डिजिटल क्वालिटी, तेज और दोस्ताना सर्विस, मेल और

0: Good Asian Radio on 1413 AM.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका, पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक, आटा चावल दालें मसाला जात, रोजाना ताजा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे, फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की ख्वारी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबी रोड ब्रेडफोर्ड BD88JL। बुखारी, पसंद आपकी और हमारी बुखारी।
6: उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे, क्या ही चॉइस है आपका।
7: ये चॉइस हमारा नहीं, ये तो कमाल है, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का।
6: जो कि पायदार, मजबूत, खूबसूरत डबल एंट्रेपल ग्लेस विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
7: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं।
6: फर्स्ट चॉइस विंडोज एंड डोर्स यॉर्कशायर,
7: 106 लिस्टर हिल्स ब्रेडफोर्ड BD71JL।
6: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए, आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
7: 01274317644।
8: फॉर क्वालिटी, वैल्यू, स्टाइल एंड सिक्योरिटी, योर नंबर वन चॉइस, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर।
7: दुल्हन वो जो पिया मन भाए,
9: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
7: नित नए डिजाइन के सेट, चूड़ियां, कंगन, कांटे,
9: बालियां, अंगूठियां और हार,
7: जो दुल्हन करे सिंगार,
9: आज ही मामू काकी की दुकान,
7: खालिस सोने की पहचान,
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स से शरीफ लाइए
7: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
9: आपकी शान
7: हमारी आन,
9: क्वालिटी की पहचान,
7: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 Duckworth Lane ब्रेडफोर्ड BD95ER, 01274491442।
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स। अरे बेटी की शादी करीब आ रही है, समझ नहीं आ रही कि जेवर कहाँ से लूँ।
10: अरे भोली, तुम्हें नहीं पता कि सोफी बहन ने ऑकलैंड पर सोफी ज्वेलर्स के नाम से गोल्ड जेवरात की दुकान खोल दी है।
9: सोफी ज्वेलर्स?
10: सोफी नहीं, सोफी, नित नए डिजाइन के जेवरात, जिनकी क्या है बात, इंश्योरेंस और वैल्यूएशन का भी इंतजाम, लेडी स्टाफ।
9: सोफी ज्वेलर्स, 121 ऑकलैंड BD94QU, 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
11: Looking to start driving or building a strong career? With Safeway Rider, you can learn automatic or manual driving with trusted, friendly instructors. We offer theory classes online and in-class to help you pass first time. Need your taxi badge for West, North or South Yorkshire? We will guide you step by step. Want more? Train as a driving instructor with our audit-approved trainers or get your truck, bus or forklift license and grow your future. Safeway Rider. Call today at 01274-201-679 or visit safewayrider.co.uk. Safeway Rider, helping you secure your future.
12: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
7: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट की स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली £299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली £99।
12: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट, लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डायरेक्ट, ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।

0: Master Jewelers, 93 Hotham Grange Road, Bradford 7, 414-760.
1: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
2: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पल्स जाने का इरादा है।
1: जी हाँ, पल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
2: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए। आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, पल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रेडफोर्ड, BD61DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
3: ब्रेडफोर्ड में फर्नीचर का सबसे खूबसूरत शोरूम लव फर्नीचर।
4: फर्नीचर तो आप घर घर देखते हैं, मगर जो देखते ही पसंद आ जाए वो है लव फर्नीचर, जहाँ पर ऑर्थोपेडिक डबल बेड सिर्फ 100 pounds से, जर्मन वार्डरोब, डाइनिंग टेबल, कॉफी टेबल, रग्स, कारपेट, मैट्रेसेस की वसी वैरायटी।
5: ओपन 7 डेज, 10 till 6, फ्री डिलीवरी ऑल ओवर वेस्ट यॉर्कशायर। लव फर्नीचर, कार्लाइल रोड, ब्रेडफोर्ड, अपोजिट बार्कलेज बैंक, पौंड ब्रेडफोर्ड, 9627229622।
4: लव फर्नीचर, फर्नीचर यू लव।
6: यू आर लिसनिंग टू Bradford Asian Radio on 14:13 AM.
1: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिलनवाज,
2: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
1: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
2: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
7: Bradford Asian Radio, मीडियम वेव 14:13 AM. Bradford Asian Radio.
1: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिलनवाज,
2: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
1: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
2: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
7: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 14:13 AM. ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।

0: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
1: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
0: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
1: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
2: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो,
0: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
1: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
0: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
1: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
2: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।

0: Asian Radio on 1413 AM.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे, क्या ही चॉइस है आपका।
6: ये चॉइस हमारा नहीं, ये तो कमाल है, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का,
5: जो कि पायदार, मजबूत, खूबसूरत डबल एंड ट्रिपल ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
6: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं।
5: फर्स्ट चॉइस विंडोज एंड डोर्स यॉर्कशायर,
6: 106 लिस्टर हिल्स, ब्रैडफोर्ड, BD71JL।
5: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए, आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
6: 01274317644।
7: फॉर क्वालिटी, वैल्यू, स्टाइल एंड सिक्योरिटी, योर नंबर वन चॉइस, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर।
6: आओ, असल सोने के जेवरात के लिए दुबई चले।
8: मगर दुबई का टिकट तो हमने लिया ही नहीं।
6: अरे पगली, अब दुबई ब्रैडफोर्ड में ही आ गई। जी हाँ, दुबई ज्वेलर्स ने व्हाइट एबे रोड पर पेट्रोल स्टेशन के पास खूबसूरत जेवरात का शानदार शोरूम खोल दिया है।
8: झिलमिल करते कांटे, बालियां, कंगन, गले के हार 22 और 24 कैरेट गोल्ड में तैयार।
6: टॉप क्वालिटी, बेहतरीन सर्विस, ओपन 7 डेज।
8: 30 वेटले हिल ब्रैडफोर्ड, BD8 8NG, फोन 01274477257।
6: दुबई ज्वेलर्स, व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका। पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक, आटा, चावल, दालें, मसाला जात, रोजाना ताज़ा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे, फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की खुआरी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर, नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबी रोड, ब्रैडफोर्ड, BD8 8JL। बुखारी, पसंद आपकी और हमारी बुखारी।
9: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
8: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ 3 दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रैडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे।
6: मिलान दुल्हा हाउस, 81-83 व्हाइट एबे रोड, ब्रैडफोर्ड, BD8 8DR, टेलीफोन 07-885-428-349, अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम, 1304 लीड रोड, ब्रैडफोर्ड।
8: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
6: तुम्हें पता है भाभी ने बोबीज कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
8: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट, लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बोबीज कारपेट्स, लिस्टेड डाइट, ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3 8DN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।
10: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
6: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पल्स जाने का इरादा है।
10: जी हाँ, पल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
6: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए। आज ही तशरीफ लाइए, ओपन 7 डेज। पल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रैडफोर्ड, BD6 1DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
11: हिसाबे उम्र का इतना सा गोशवारा है, तुम्हें निकाल के देखा तो सब खसारा है। मैं महमूद रिजवी अकाउंटेंट, जी हाँ, छोटे से छोटे टैक्सी अकाउंट से लेकर बड़ी से बड़ी कंपनी के अकाउंट्स बनवाने के लिए काबिल एतमाद नाम महमूद रिजवी अकाउंटेंट, ऑडिट एंड अकाउंटेंसी, टैक्सेशन, VAT, बुककीपिंग, पेरोल, फंडरेजिंग, कंपनी फॉर्मेशन।
12: दिस इज ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो, 1413 AM एंड ऑनलाइन।

0: Bedford Asian Radio on 1413 AM.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका, पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेश खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक, आटा चावल दालें मसाला जात, रोजाना ताज़ा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे, फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की खुआरी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबी रोड ब्रेडफोर्ड BD88JL। बुखारी, पसंद आपकी और हमारी बुखारी।
6: उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे, क्या ही चॉइस है आपका।
7: ये चॉइस हमारा नहीं, ये तो कमाल है, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का,
6: जो कि पायदार, मजबूत, खूबसूरत डबल एंटीपल ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
7: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं।
6: फर्स्ट चॉइस विंडोज एंड डोर्स यॉर्कशायर,
7: 106 लिस्टर हिल्स ब्रेडफोर्ड BD71JL।
6: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए, आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
7: 01274317644।
8: क्वालिटी, वैल्यू, स्टाइल एंड सिक्योरिटी, योर नंबर वन चॉइस, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर।
7: दुल्हन वो जो पिया मन भाए,
9: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
7: नित नए डिजाइन के सेट, चूड़ियां, कंगन, कांटे,
9: बालियां, अंगूठियां और हार,
7: जो दुल्हन करे सिंगार,
9: आज ही मामू काकी की दुकान,
7: खालिस सोने की पहचान,
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स से शरीफ लाइए
7: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
9: आपकी शान
7: हमारी आन,
9: क्वालिटी की पहचान,
7: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 Duckworth Lane, Bradford, BD95ER, 01274491442,
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स। अरे बेटी की शादी करीब आ रही है, समझ नहीं आ रही कि जेवर कहाँ से लूँ।
10: अरे भोली, तुम्हें नहीं पता कि सोफी बहन ने ऑकलेन पर सोफी ज्वेलर्स के नाम से गोल्ड जेवरात की दुकान खोल दी है।
9: सोफी ज्वेलर्स?
10: सोफी नहीं, सोफी, नित नए डिजाइन के जेवरात, जिनकी क्या है बात, इंश्योरेंस और वैल्यूएशन का भी इंतजाम, लेडी स्टाफ।
9: सोफी ज्वेलर्स, 121 ओकलेन, BD94QU, 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
11: ना ही बच्चों का कोई सेफ मुस्तकबिल, ना हमारा, कब तक ऐसे ही करेंगे गुजारा।
7: अरे सेफ राइडर जाएंगे, ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर बनके खूब पैसे कमाएंगे, बच्चों को ड्राइविंग भी सिखाएंगे।
11: बस ट्रक, फोकलिफ्ट,
12: टैक्सी लाइसेंस,
11: हम हैं आपको सब कुछ सिखाने को तैयार।
7: 30 साल ब्रेडफोर्ड का सबसे बड़ा, पुराना और काबिल एतमाद नाम, सेफ राइडर।
11: DSA ऑडिट अप्रूव्ड इंस्ट्रक्टर्स, ऑटोमेटिक एंड मैनुअल कार्स, ऑनलाइन थ्योरी क्लासेस की सहूलत, आज ही विजिट कीजिए
7: 33 Wetley Lane, ब्रेडफोर्ड, 01274201679।
11: saferaider.co.uk। सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
7: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली £299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली £99।
11: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट, लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डाइट, ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।

0: Master Jewelers, 93 Hawson Grange Road, Bradford 7, 01274-414-760.
1: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
2: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज बेल्स जाने का इरादा है।
1: जी हाँ, बेल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
2: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए। आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, बेल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रेडफोर्ड, BD6 1DA, फोन 01274-306-567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
3: यू आर लिसनिंग टू
4: Bradford Asian Radio on 1413 AM.

0: listening to Bedford Asian Radio on 1413 AM.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे, क्या ही चॉइस है आपका।
6: ये चॉइस हमारा नहीं, ये तो कमाल है, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का,
5: जो कि पायदार, मजबूत, खूबसूरत डबल एंट्रेपल ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
6: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं।
5: फर्स्ट चॉइस विंडोज एंड डोर्स यॉर्कशायर,
6: 106 लिस्टर हिल्स, ब्रैडफोर्ड, BD71JL।
5: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए, आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
6: 01274317644।
7: फॉर क्वालिटी, वैल्यू, स्टाइल एंड सिक्योरिटी, योर नंबर वन चॉइस, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर।
6: आओ, असल सोने के जेवरात के लिए दुबई चले।
8: मगर दुबई का टिकट तो हमने लिया ही नहीं।
6: अरे पगली, अब दुबई ब्रैडफोर्ड में ही आ गई। जी हाँ, दुबई ज्वेलर्स ने व्हाइट एबे रोड पर पेट्रोल स्टेशन के पास खूबसूरत जेवरात का शानदार शोरूम खोल दिया है।
8: झिलमिल करते कांटे, बालियां, कंगन, गले के हार, 22 और 24 कैरेट गोल्ड में तैयार।
6: टॉप क्वालिटी, बेहतरीन सर्विस, ओपन 7 डेज।
8: 30 वेटले हिल, ब्रैडफोर्ड, BD8 8NG, फोन 01274477257। दुबई ज्वेलर्स।
6: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका, पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक, आटा, चावल, दालें, मसाला जात, रोजाना ताज़ा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे, फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की ख्वारी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर, नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबी रोड, ब्रैडफोर्ड, BD8 8JL। बुखारी, पसंद आपकी और हमारी बुखारी।
9: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
8: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ 3 दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रैडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे।
6: मिलान दुल्हा हाउस, 8183 व्हाइट एबे रोड, ब्रैडफोर्ड, BD8 8DR, टेलीफोन 07885428349, अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम, 1304 लीड्स रोड, ब्रैडफोर्ड।
8: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
6: तुम्हें पता है भाभी ने बॉबीज कारपेट्स की स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
8: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट, लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डायरेक्ट, ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3 ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।
10: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
6: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पल्स जाने का इरादा है।
10: जी हाँ, पल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
6: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए, आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, पल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रैडफोर्ड, BD6 1DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
11: क्या आपकी आवाज खूबसूरत है? क्या आप में बोलने की जरूरत है? अगर ऐसी ही सूरत है तो ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो को आपकी जरूरत है। आज ही स्टूडियो नंबर 01274306677 पर कॉल कीजिए और अपनी आवाज सुनने वालों के दिलों तक पहुंचाइए और खुद को रेडियो स्टार बनाइए। याद रखिए, अगर आपको बड़ी बड़ी छोड़ने की आदत है तो ये आपके कल के बड़ा ब्रॉडकास्टर बनने की जमानत है। आज ही स्टूडियो नंबर 01274306677 पर कॉल कीजिए। ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो।
0: You're listening to Bradford Asian Radio on 1413 AM.
12: You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
13: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.

0: Bedford Asian Radio on 1413 AM.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका, पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक, आटा चावल दालें मसाला जात, रोजाना ताज़ा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे, फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की ख्वारी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबी रोड ब्रेडफोर्ड BD88JL। बुखारी, पसंद आपकी और हमारी बुखारी।
6: उफ, कितनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे, क्या ही चॉइस है आपका।
7: ये चॉइस हमारा नहीं, ये तो कमाल है, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का,
6: जो कि पायदार, मजबूत, खूबसूरत डबल एंट्रेपल ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
7: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं।
6: फर्स्ट चॉइस विंडोज एंड डोर्स यॉर्कशायर,
7: 106 लिस्टर हिल्स ब्रेडफोर्ड BD71JL।
6: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए, आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
7: 01274317644।
8: फॉर क्वालिटी, वैल्यू, स्टाइल एंड सिक्योरिटी, योर नंबर वन चॉइस, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर।
9: दुल्हन वो जो पिया मन भाई,
10: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
9: नित नए डिजाइन के सेट, चूड़ियां, कंगन, कांटे,
10: बालियां, अंगूठियां और हार,
9: जो दुल्हन करे सिंगार,
10: आज ही मामू काके की दुकान,
9: खालिस सोने की पहचान,
10: पाकिस्तान ज्वेलर्स से शरीफ लाइए
9: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
10: आपकी शान
9: हमारी आन,
10: क्वालिटी की पहचान,
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 Dufferin Lane ब्रेडफोर्ड BD95VR, 01274491442।
10: पाकिस्तान ज्वेलर्स। अरे बेटी की शादी करीब आ रही है, समझ नहीं आ रही कि जेवर कहाँ से लूँ।
11: अरे भोली, तुम्हें नहीं पता कि सोफी बहन ने ऑकलैन पर सोफी ज्वेलर्स के नाम से गोल्ड जेवरात की दुकान खोल दी है।
10: सोफी ज्वेलर्स?
11: सोफी नहीं, सोफी, नित नए डिजाइन के जेवरात, जिनकी क्या है बात, इंश्योरेंस और वैल्यूएशन का भी इंतजाम, लेडी स्टाफ।
10: सोफी ज्वेलर्स, 121 ऑकलैन BD94QU, 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
12: Looking to start driving or building a strong career? With Safeway Rider, you can learn automatic or manual driving with trusted, friendly instructors. We offer theory classes online and in-class to help you pass first time. Need your taxi badge for West, North or South Yorkshire? We will guide you step by step. Want more? Train as a driving instructor with our audit-approved trainers or get your truck, bus or forklift license and grow your future. Safeway Rider. Call today at 01274-201-679 or visit safewayrider.co.uk. Safeway Rider, helping you secure your future.
13: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
14: तुम्हें पता है भाभी ने बोबीज कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली £299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली £99।
13: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट, लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डाइक, ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।

0: Master Jewelers, 93 Hotham Grange Road, Bradford 7, 414-760.
1: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
2: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज बेल्स जाने का इरादा है।
1: जी हाँ, बेल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
2: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए। आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, बेल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रेडफोर्ड, BD6 1DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन। अरे, ये पूरे ब्रेडफोर्ड में क्या है शोर?
3: आपको नहीं पता, ऑफर्स इन मेनी गो स्टोर, रोजाना ताज़ा सब्जियाँ, फल, फ्रूट, सलाद, मीट, चिकन, आटा, दाल, चावल और मसाला, क्वालिटी में सबसे आला और सर्विस में सबसे बाला।
2: हर सम्त मचा है जिसका शोर, वो है मैनिंगम सुपर स्टोर। मैनिंगम सुपर स्टोर, कार्लाइल रोड, ब्रेडफोर्ड, BD8 8AX, फोन ब्रेडफोर्ड 4955555। हफ्ते के सातों दिन आपकी खिदमत में पेश पेश, मैनिंगम सुपर स्टोर।
3: मैनिंगम सुपर स्टोर।
4: You're listening to Breakfast Asian Radio on 1413 AM.

जी हाँ, हर दिल जो प्यार करेगा, ये खूबसूरत सा गीत था और किसके लिए पेश किया गया, जनाब चौधरी रुखसार साहब आप प्रोग्राम में तशरीफ लाए हमेशा की तरह। प्रोग्राम में शामिल होने के लिए बहुत शुक्रिया, बहुत नवाजिश आपकी। और आपने कहा कि जी बहुत आपने कमी भी महसूस की कल का प्रोग्राम, चूंकि हम नहीं कर पाए थे तबीयत की नासाजी की बदौलत, तो आपने कहा कि जी यही एक जरिया होता है ब्रेडफर्ड एशियन रेडियो के, इसके जरिए आपको खैर खबर भी पता चल जाती है और जो भी है बात भी हो जाती है। चौधरी रुखसार साहब बहुत शुक्रिया, बहुत आपकी नवाजिश, तहे दिल से हम मशकूर और ममनून हैं। बात बिल्कुल आपने सही कही, प्रोग्राम बहुत से होते हैं, बहुत से प्रेजेंटर्स होते हैं, आप लोगों की बातचीत भी बहुत से होती है, लेकिन पता चल जाता है कि कौन कितने खलूस से आपसे बात करता है, कौन किस तरीके से आपकी किस तरह से रिस्पेक्ट करता है इज्जत, क्योंकि इज्जत जहाँ नहीं है ना जिस भी रिश्ते में, तो वहाँ कुछ भी नहीं होता, फिर ना खलूस रहता है, ना मोहब्बत आती है, ना फिर उसके लिए नेक तमन्नाएं रहती हैं। तो इज्जत हर रिश्ते में, खा वो मियाँ बीवी का रिश्ता है, खा वो देखिए वालिदैन के साथ भी मोहब्बत होती है, लेकिन सबसे पहले इज्जत आती है। इज्जत होगी जहाँ तो मोहब्बत होगी, अगर इज्जत किसी रिश्ते में नहीं है, यकीन जानिए खा बहन भाई हैं, आपस में बहनें हैं, आपस में दोस्त हैं, अजीज रिश्तेदार हैं, कोई भी रिश्ता ले लीजिए, ससुराली रिश्तेदार हैं, घर वाले हैं, पड़ोसी हैं, अड़ोस पड़ोस में जो रहते हैं, अगर इज्जत का एलिमेंट उसमें से निकाल दीजिए तो फिर कुछ भी बाकी नहीं बचता। तो इल्म हो जाता है कि कौन आपको इज्जत से मुखातिब करता है, कौन आपकी कितनी इज्जत रिस्पेक्ट करता है। इज्जत आप देते हैं लोगों को, लोग भी आपको फिर इज्जत वापस में देते हैं। हाँ, कोई कम ज़र्फ निकल आए कि जो इज्जत का मतलब नहीं जानता, उसकी अहमियत से वाकिफ नहीं है, तो फिर उसका क्या किया जा सकता है, फिर उसको उसके हाल पर छोड़ दीजिए। लेकिन आप फिर बेइज्जती मत कीजिए, आप मामला अपना अल्लाह पे खुदा पे छोड़ दीजिए। तो ये चीज़ें इंसान को अपने रवैयों में रखनी चाहिए। बहरहाल बात चौधरी रुखसार साहब आपकी थी कि आप बड़ी मोहब्बत से बड़ी इज्जत के साथ पेश आते हैं, बहुत काबिले एहतराम हैं आप भी हमारे लिए, क्योंकि आप भी बड़े खलूस के साथ याद करते हैं। तो ये आपकी फरमाइश गीत हमने आपके लिए पेश किया था, बीच में बोल नहीं पाए, गीत हमने लगा दिया क्योंकि हम चाहते थे कि मुकम्मल गीत आप अपना एंजॉय करें, मज़े से आप सुने, तो यकीनन आपने सुन लिया होगा। बहुत शुक्रिया चौधरी रुखसार साहब प्रोग्राम में शामिल होने के लिए, आपकी दुआओं के लिए भी हम तहे दिल से मशकूर हैं। जनाब अज़रका साहिबा आप प्रोग्राम में तशरीफ़ लाएं, आपकी प्यारी सी मीठी सी आवाज़ सुनी बहुत अच्छा लगा, अल्लाह ताला आपको खुश व खुर्रम रखे, शाद व आबाद रखे। आने वाला गीत आपकी फरमाइश का है, उम्मीद तो यही है कि ये वही गीत है क्योंकि जरूर है। जनाब अज़रका साहिबा आप प्रोग्राम में तशरीफ लाएं, आपकी प्यारी सी मीठी सी आवाज़ सुनी बहुत अच्छा लगा, अल्लाह ताला आपको खुश व खुर्रम रखे, शाद व आबाद रखे। आने वाला

0: 777 इस नंबर के जरिए आप प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं, अपनी डेडिकेशन या अपनी फरमाइश हम तक पहुंचा सकते हैं। ऑनलाइन भी आप सुन रहे हैं इसकी नशियात bradfordasianradio.co.uk के जरिए पूरी दुनिया में यह आवाज पहुंचती है। लीजिए फिलहाल ब्रेक का वक्त है, हम चलते हैं एक छोटी सी ब्रेक की जानिब। सामने कराम अभी ब्रेक नहीं आई है, अभी स्केड्यूल शायद नहीं हुई, वक्त तो हो चुका है, बहरहाल हम चेक करते हैं, जब ब्रेक आएगी तो फिर हम आपको ब्रेक की जानिब पर ले चलेंगे। उस वक्त तक हम क्या कर सकते हैं, उस वक्त तक हम आपको एक क्या कह लीजिए कि नज़म सुना दीजिए, सुना देते हैं, हम यही कर सकते हैं। और हम क्या कर सकते हैं, कौन सी नज़म आपको सुनाई जाए जो अच्छी हो, आपको पसंद आए, देख लेते हैं एक दफ़ा फिर ब्रेक को। जी हाँ, नज़म चलिए सुनाते हैं, ब्रेक तो अभी तक क्यों नहीं हुई है। आहिस्ता चल जिंदगी, आहिस्ता चल ए जिंदगी, अभी कुछ कर्ज चुकाना बाकी है, कुछ दर्द मिटाना बाकी है, कुछ फर्ज निभाना बाकी है। आहिस्ता चल ए जिंदगी, अभी कुछ कर्ज चुकाना बाकी है, कुछ दर्द मिटाना बाकी है, कुछ फर्ज निभाना बाकी है। रफ्तार में तेरे चलने से कुछ रूठ गए, कुछ छूट गए, रूठों को मनाना बाकी है, रोतों को हंसाना बाकी है। कुछ हसरतें अभी अधूरी हैं, कुछ काम भी बहुत जरूरी हैं, ख्वाहिशें जो घुट गई दिल में उनको दफनाना बाकी है। कुछ रिश्ते बनकर टूट गए, कुछ जुड़ते जुड़ते छूट गए, इन टूटे छूटे रिश्तों के जख्मों को मिटाना बाकी है। तू आगे चल मैं आता हूं, क्या छोड़ के तुझे जी पाऊंगा, इन सांसों पर हक है जिनका, उनको समझाना बाकी है। आहिस्ता चल ए जिंदगी, अभी कुछ कर्ज चुकाना बाकी है। और ये लिखी हुई है गुलजार की, इनका पूरा नाम है संपूर्ण सिंह गुलजार। ये गुलजार की खूबसूरत सी लिखी हुई नज्म हमने आपके गोश गुजार की। इंतजार हम कर रहे हैं ब्रेक का, ब्रेक तो फिलहाल अभी भी नहीं हुई है, क्यों नहीं हुई, चलिए हम आपको गीत ही सुना देते हैं इस दौरान, देखते हैं क्या बनता है। और ये खूबसूरत सा गीत आप तमाम सुनने वालों के लिए, लीजिए इस खूबसूरत से गीत को सुनिएगा।
1: बस इतनी शिकायत है, बस इतनी शिकायत है, समझा

जी बहुत ही खूबसूरत सा समीन करम आपने गीत सुना, उम्मीद करते हैं कि पसंद किया होगा। मोहम्मद रफ़ी की सुरीली मीठी खूबसूरत सी आवाज़। लीजिए फिलहाल एक और बहुत ही खूबसूरत सा आप गीत सुनिएगा। हमें तो ये गीत बहुत पसंद है, इसके बोल भी बहुत खूबसूरत हैं और आशा भोसले की खूबसूरत सी आवाज़। इस गीत को सुनिएगा।

जी समी ने कराम गीत ख़त्म हो गया, बहुत अच्छा सा गीत था, खूबसूरत गीत था, और उम्मीद करते हैं कि जिनके लिए पेश किया गया उन्होंने पसंद किया होगा। अब हम देख रहे हैं कि कमर्शियल ब्रेक का वक्त जो है फिर करीब है, देखते हैं कि अब ब्रेक जो है वो वक्त पे आती है या क्या होता है हमारे साथ। बहरहाल अजरा साहिबा आप भी प्रोग्राम में शामिल हुई, रिहाना साहिबा आप शामिल हुई, काशफा साहिबा आपने गीत की फरमाइश की, आपका गीत हमने क्यों कर रखा है। इस कमर्शियल ब्रेक के बाद काशफा साहिबा आपके लिए वो गीत हम पेश करेंगे, और अजरा साहिबा आपके लिए, आपकी जानिब से आपके तमाम दोस्तों के लिए गीत हम पेश करेंगे, थोड़ा सा बस इंतज़ार कीजिएगा। समीरा साहिबा आपका गीत भी हम क्यों कर रहे हैं, वो जो गीत था वो तो क्या कहिए कि उसका ओरिजिनल वर्जन नहीं था और हमें पसंद नहीं है। यकीन कीजिए कि कोई ऐसा गीत लगाएं कि जो ओरिजिनल ना हो, क्योंकि हमें ओरिजिनलिटी जो है ना वो ज़्यादा पसंद है, सच बात जो ये है। बहरहाल हम कोशिश करेंगे कि उसका ओरिजिनल ढूंढ के समीरा साहिबा आपके लिए पेश करें। और रुखसाना साहिबा बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश, आप फ़ोन करने की कोशिश कर रही हैं लेकिन आपने कहा कि लाइंस बहुत बिजी हैं। जी हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह आज लाइंस वाकईतन बहुत बिजी हैं। बहुत शुक्रिया आप तमाम सुनने वालों का जो लाइन बिजी रखते हैं। तो आप हमें रिंग कर सकती हैं तकरीबन 5 मिनट के बाद, 5 बल्कि 2-4 मिनट के बाद आप रिंग कर सकती हैं। हम देखेंगे कि अगर वो क्या कहिए कि अगर ब्रेक जो है वो टाइम पे आई तो फिर हम आपसे बात भी कर पाएंगे। बहरहाल बहुत शुक्रिया, बहुत नवाजिश प्रोग्राम सुनने के लिए, तहे दिल से हम आप सबके मशकूर ममनून हैं। अभी हम बस ब्रेक का ही वेट कर रहे हैं, देखते हैं ब्रेक आई है तो चलते हैं एक ब्रेक की जानिब। जी अभी तक ब्रेक क्यों नहीं हुई, बहुत बहुत मशकूर हैं हम किसके, जी हाँ महबूब इलाही साहब आपके, बड़ी नवाजिश बहुत शुक्रिया। हमारे कोलीग भी हैं, हमारे बहुत पुराने लिसनर भी हैं, साथी भी हैं, आपने फ़ोन किया, तहे दिल से आपके मशकूर ममनून। हालांकि आपसे बात नहीं हो पाई क्योंकि ऑन एयर हमें जाना था, और आपने मसला भी एक छोटा सा यहाँ पे जो टेक्निकल इशू हो रहा था वो भी आपने हल कर दिया, उसके लिए तो हम जज़ाकल्लाह खैर ही कह सकते हैं। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत नवाजिश कि आपने वो बताया और उससे हमारा जो मसला जो भी था यहाँ पे वो हल हो गया। देखते हैं ब्रेक क्यों हुई है या नहीं। जी नहीं, कुछ थोड़ा मसला है, गड़बड़ है कुछ सिस्टम में, ब्रेक अभी भी क्यों नहीं हो पाई है। तो चलिए फिर हम ऐसा करते हैं, वक्त साया किए बगैर चलते हैं इस खूबसूरत से गीत की जानिब। काशफा साहिबा आपने इस गीत की फरमाइश की थी, पहली मर्तबा हम इस गीत को जो है ना वो सुन रहे हैं, तो देखते हैं कि ये गीत जो है कैसा है, आपके साथ साथ मिलके हम भी सुनते हैं। तो लीजिए इस गीत को सुनिएगा काशफा साहिबा, आपकी फरमाइश।

जी काशफा साहिबा, बहुत जबरदस्त पसंद आपकी। हमने भी पहली मरतबा ये कलाम सुना, वैसे पढ़ा हुआ था बहुत पहले से, बाबा बुल्ले शाह का कलाम है और किनका साथ, लेकिन सुना उसको जो है ना, ये वाला वर्जन हमने नहीं सुन रखा था, ये हमने आज सुना है। और सच बात है, हंसी भी आ रही थी, क्योंकि हमारे अशफाक साहब जो हैं वो अक्सर यही कहा करते हैं कि गुस्से में मत आया कीजिए, ज़रा आराम से सुकून से रहा कीजिए। तो बात यही है ना कि इंसान जब घर में होता है तो वो अपनी क्या कहिए कि असल शक्ल में होता है, और ये हकीकत है। हम सब के ना दो दो तीन तीन चेहरे होते हैं, अपने घर वालों के लिए और अपने बाहर वालों के लिए, दोस्तों में हम होते हैं तो हम बिल्कुल एक और शख्सियत होते हैं। हम जब अपने किसी बुजुर्गों के सामने बैठते हैं तो फिर हम एक और किस्म की शख्सियत होते हैं। तो इंसान के बहुत से रूप होते हैं, बहुत से रंग होते हैं, वो अपने उस रूप अपने उस रंग के साथ अपने आप को पेश करता है। और घर में खसूसन जब आप होते हैं, घर आपका अपनी एक छोटी सी सल्तनत होती है, उसमें अगर आपका हुक्म चलता है तो फिर आप अपने ही अपनी जोन में रहते हैं जिसे कहिए, या आप अपनी जो एक आपकी नेचर बन जाती है बाद में, पहले तो नहीं होती, इंसान वक्त के साथ साथ हालात के साथ साथ बदलता रहता है, उसमें चेंजेस आती हैं, बाज़ोकात अच्छी चेंजेस आती हैं, बाज़ोकात बुरी, वो डिपेंड करता है कि उसके सिचुएशन, उसका जो हालात व वाक़ियात हैं वो क्या थे। बहरहाल लंबी बात नहीं करते, आप हमारी आवाज़ भी सुन के आज बोर ही हो रहे होंगे, तो लीजिए ये बहुत ही खूबसूरत सा सॉन्ग हमारी जानिब से, किसके लिए जी, समीरा साहिबा आपके लिए खसूसन, और रेहाना साहिबा आप भी प्रोग्राम को एंजॉय कर रही हैं, आपके लिए भी ये पुराना खूबसूरत सा सॉन्ग है, तो लीजिए इसको एंजॉय कीजिएगा, सुनिएगा।

जी हाँ समीना साहिबा और रेहाना साहिबा, उम्मीद करते हैं ये आपने गीत पसंद किया होगा। किशोर कुमार नहीं, मोहम्मद रफी की खूबसूरत सी आवाज में था। अब जो गीत है आने वाला वो हम अजरा साहिबा आपके नाम कर रहे हैं, खसूसी तौर पर आपकी जानिब से आपकी जितनी भी दोस्तें हैं उन सब के नाम कर रहे हैं, उम्मीद के साथ कि वो इसे पसंद करेंगी। और चौधरी महबूब इलाही साहब, आप प्रोग्राम में तशरीफ लाए थे, बहुत शुक्रिया आपकी, क्या कहिए कि हौसला अफजाई का भी, साथ ही साथ आपके जो काइंड कंसर्न्स हैं, थैंक यू सो वेरी मच। और सबसे बढ़कर ये जज़ाकअल्लाह खैर कि आपने वो जो टेक्निकल इशू था छोटा सा, वो आपने हमारा मसला हल कर दिया, बहुत बॉदर कर रहा था। और आप जिसे कहते हैं ना, बाज़ूकात इंसान इसी तरह से रहमत का फरिश्ता बन जाता है, आपकी अल्लाह ताला इस तरह से मदद करते हैं कि आपको कुछ नज़र नहीं आ रहा होता, खुद आपने हाथ पांव मार लिए, अपनी कोशिश कर ली, मसला हल नहीं हो रहा, लेकिन एकदम से अचानक से ऐसा कोई शख्स आपके पास आता है कि वो आपका वही मसला चुटकी बजाते जिसे कहते हैं ना हल कर देता है। तो चौधरी महबूब इलाही साहब, जज़ाकअल्लाह खैर, बहुत शुक्रिया, बहुत नवाजिश आपकी, आपने वो मसला हल कर दिया। लीजिए ये खूबसूरत सा गीत महबूब इलाही साहब आपके लिए भी, आपकी जानिब से जितने भी आपके दोस्त अहबाब हैं उन सब के लिए।

0: मैंने सोचा था हमारी ये जुदाई भी थोड़े ही समय के लिए है।
1: सभी ने कराम खूबसूरत सा आपने पुराना गीत सुना। लीजिए अब जरा चलते हैं एक नए गीत की तरफ, यकीनन आप इसे पसंद करेंगे।

जी सर, मेरे ख्याल में ये नन्ही सी परी हवा जो है, ये प्यारी सी बेटी के लिए खूबसूरत सा प्यारा सा अपनी तरफ से हमने गीत अच्छा सा पेश किया, बहुत सी दुआओं बहुत सी नेक तमन्नाओं के साथ। अल्लाह करे कि, वो कहते हैं ना, तुम जियो हजारों साल, तो हवा बेटा आप जिए हजारों साल और आप अपने नाना दादा के लिए, नाना नानी के लिए, दादा दादी के लिए, सब के लिए, पूरी फैमिली के लिए, खसूसन अपने पेरेंट्स के लिए वही बात है कि सदका जारिया बने और अल्लाह पाक आपका बेहतरीन नसीब करे। किसी किस्म का भी इम्तिहान में अल्लाह करे कि आपको ऐसे में ना डाले जो आपके लिए बहुत मुश्किल हो। हमारी तो बस यही दिली दुआ है, दिली तमन्ना है। अब बहुत शुक्रिया रुखसाना साहिबा, आपने शुक्रिया अदा किया। कोई ऐसी बात नहीं, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो का काम ही यही है कि वो आप सबकी खुशियों में शरीक हो। अगर कोई मसले में है, तकलीफ में है, बीमार है, तो हम उनके लिए दुआ करते हैं। और जैसा कि आज आपने, हालांकि हमारी तबीयत बहुत ख़राब थी, लेकिन आपने हमें मसरूफ रखा, अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया अपने उन तमाम सामईन कराम का कि कल चूंकि प्रोग्राम नहीं कर सके टेक्निकल रीजंस की वजह से, और आपने हमारी कमी महसूस की। हमें बहुत से लोगों की आज कॉल्स मौसूल हुई, आपने कमी भी महसूस की और आपने फिर हालचाल भी पूछा। तो यही बात है ना कि एक रिश्ता होता है, वो कहते हैं ना टू वे ट्रैफिक होती है। अगर हम आपके लिए यहाँ पे आते हैं, आपके लिए प्रोग्राम पेश करते हैं, तो आप सामेईन भी प्रोग्राम को सुनते हैं, पसंद करते हैं, और फिर जब आप शामिल हो जाते हैं तो यकीन कीजिए कि प्रोग्राम में चार चांद लग जाते हैं और फिर हमें भी एहसास नहीं होता कि ये इतना टाइम कहाँ गुजर गया, पता ही नहीं चलता। तो इसीलिए, हालांकि तबीयत ठीक नहीं थी, लेकिन हमने सोचा कि नहीं, आना चाहिए। अपना जो फर्ज, जो ड्यूटी होती है, वो निभानी पड़ती है, निभानी चाहिए भी। हमें एक मिसाल जरूर बताएंगे आपको, हकीकत है, इन लोगों से सबक सीखते हैं हम, कि एक दफा हम हॉस्पिटल में थे तो वहां पे वो जो नर्स थी, वो बेचारी बहुत, जैसे कहते हैं ना, लंगड़ा के चलना, तकरीबन एक टांग पे वो उसको घसीट घसीट के वो उसको चल रही थी। और हमने उसे पूछ लिया, जब वो हमारी फाइल लेके आई और बात हुई, तो हमने उसे पूछा कि आपको क्या हुआ, तो वो नर्स ने खुद बताया कि वो सीढ़ियों से गिर गई थी, घर में स्लिप हो गई थी, उनकी कमर में चोट आई, उनकी जाहिर है टांग में भी चोट आई होगी। तो फिर हमने कहा कि आप छुट्टी ले लेती या कुछ, तो उन्होंने कहा कि ऐसे ही घर बैठ के क्या करना, काम जरूरी होता है, जब तक चलता है गुजारा चलते रहना चाहिए। तो आप जरा सोचिए कि वो नर्स जो सीढ़ियों से गिरी थी, उनकी इतनी चोट आई थी कमर में और पाँव में, उसके बावजूद उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और वो अपना, हालांकि काम भी चलने का, नर्स का काम कभी इधर कभी उधर, कभी ये फाइल कभी उस पेशेंट को देख या कुछ, तो बड़ी हिम्मत की बात है। हमने भी उन्हीं से हिम्मत लेते हैं, ऐसे लोगों ही से, कि जो लोग, छोटी मोटी तकलीफ आती रहती है, हर हर इंसान के साथ आती है, तो उसको इतना बड़ा खुद सर पे अगर ले लेंगे तो फिर वो और तकलीफ बड़ी हो जाएगी। तो बेहतर है कि उसको आप मुख्तसर ही रहने दें, जितनी तकलीफ है बस उतनी ही रहने दें। और तकलीफें, आपको पता है कि जो बीमारी होती है खसूसन, ये बहुत से हमारे गुनाह धुल जाते हैं उससे। अल्लाह ताला हमें माफ़ फरमाए, अल्लाह ताला, ये भी उसका करम होता है। कहते हैं ना, बुखार होना, जुकाम होना आपको कई और बीमारियों से बचाता है, तो इससे बड़ा फर्क पड़ता है। बहरहाल लीजिए, अब ये खूबसूरत सा गीत सुनिएगा, थोड़ा सा मूड भी चेंज करते हैं। और जनाब महबूब इलाही साहब, आपसे माजरत, इंतहाई माजरत, हमने कह दिया कि जी चौधरी महबूब इलाही, आपने फरमाया कि आप चौधरी, आपकी ज़ात नहीं है, तो बस नामालूम क्यों ऐसे ही जहन से बात निकल गई ज़बान से, तो हम माजरत चाहते हैं। महबूब इलाही साहब, आप प्रोग्राम में दोबारा शामिल हुए, बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश, बहुत अच्छी पर्सनैलिटी हैं आप, इंसान लोगों के काम आने वाली, यानी बहुत अच्छे इंसान हैं बेसिकली। जितना हम आपको इतने अरसे से जानते हैं, आवाज ही का रिश्ता है, मुलाकात तो कभी नहीं हुई है, लेकिन उसके बावजूद यकीन कीजिए कि लगता यही है, इंसान अपनी जो बातचीत करता है, इंसान का जो रवैया होता है दूसरों के साथ, उससे ही पता चल जाता है कौन किस तरह का शख्स है। तो महबूब इलाही साहब, पहले तो माजरत कि हमने आपको चौधरी कह दिया, आइंदा जरूर एहतियात करेंगे, वहर हाल इंसान है, भूल चूक हो जाती है, अगर आइंदा भी कभी हुई तो पेश की उसके लिए माजरत। तो महबूब इलाही साहब, ये गीत आपके लिए भी, आपकी जानिब से जितने आपके दोस्त अहबाब हैं उन सब के नाम।

जी समीनी खराब है का आपने बड़ा सुरीला मीठा सा बहुत क्या कहते हैं लो टोन में गीत सुना, और ये गीत जो था ये आपने बहुत हाई टोन में सुना, तो अच्छा लगा समीना साहिबा, बहुत शुक्रिया। आपको भी ये गीत बहुत पसंद आया, मजे का गीत था ना, इसीलिए हमने पेश किया कि चलिए थोड़ा सा मूड एक जैसा बिल्कुल नहीं रखना चाहिए, थोड़ा सा बदलना भी चाहिए। लीजिए अब ये गीत तो आपको लाजिमन बहुत पसंद आएगा क्योंकि लता की खूबसूरत सी आवाज में है, और रेहाना साहिबा आप ही पुराने गीतों की बहुत दिलदादा है, तो ये खूबसूरत सा गीत रेहाना साहिबा आपके लिए भी।

जी सामी ने कहा ना, सियालम शौक का देखा ना जाए, हमेशा के लिए मुझसे बिछड़ जा, ये मंजर बारहा देखा ना चाहे। अहमद फराज की बहुत खूबसूरत सी गजल, और किसकी आवाज़ थी जी, बहुत पुरानी हमारी सिंगर है ताहिर सैयद जी, हाँ, इनकी खूबसूरत सी क्या कहिए कि आवाज़ में आपने सुनी, यकीनन आपने पसंद की होगी। और सामीन कराम एक और बहुत खूबसूरत सा गीत तमाम बेटियों के लिए, तमाम जो वालिद हजरात हैं उन सब की तरफ से हम इस गीत को पेश करेंगे इस उम्मीद के साथ कि वो इसे पसंद करेंगे। चौधरी रुखसार साहब, प्रोग्राम में आप दोबारा शामिल हुए, बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश आपके साथ साथ रहने की, आपकी दुआओं आपके खलूस के तहे दिल से हम मशकूर ममनून हैं। चौधरी रुखसार साहब, ये खूबसूरत सा गीत आपके लिए भी, आपकी जानिब से आपकी अगर आल औलाद है और इंशाल्लाह होगी उन सब के लिए, तो लीजिए इस खूबसूरत से हम गीत को सुनते हैं।

0: जी हाँ, सामीन बच्चियों को यही कहा जाता है, परदेसी चिट्ठियां हैं, अपने घर से चिड़िया भी कहा जाता है, उड़ के उन्होंने जाना है दूसरों के घरों में, और दूसरों के घरों में जाके उनको बसाना है। ये कह लीजिए कि रोज़े अजल से ये दस्तूर चला आ रहा है और ऐसा ही रहना भी चाहिए। ये जो आजकल के जो हालात हो रहे हैं कि जी बच्चियों को शादी नहीं करनी चाहिए, इंडिपेंडेंट हो रहे हैं बच्चे बच्चियां, घर बसाने की क्या ज़रूरत है, फजूल में टेंशनें सामने आती हैं, ये होता है वो होता है, ठीक है छोटा मोटा तो ज़रूर हर घर में कुछ ना कुछ चल रहा होता है, लेकिन इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि आप जो ये कुदरत ने बनाया निज़ाम उसमें आप दखल अंदाजी करें और उसको छोड़ के आप खुद अपना रास्ता इख्तियार करें। इस पर बात बहुत ज़्यादा होगी, बात हो सकती है बड़ी लंबी बात हो सकती है, ज़रूर करेंगे। आज चूंकि आप जानते हैं इतनी गला इजाज़त नहीं दे रहा लंबी बात करने की, इसलिए हम नहीं करेंगे, लेकिन इंशाल्लाह अपने आइंदा वाले किसी प्रोग्राम में इस टॉपिक के ऊपर ज़रूर बात होगी। लीजिए ये खूबसूरत सा एक और गीत सुनिएगा सामीन कराम, उम्मीद करते हैं इसे भी आप बहुत पसंद करेंगे।
1: इतनी मेहरबानी और कीजिए कि दिल से निकली हुई शायरी की कुछ बूंदें बरसा दीजिए, तभी रंगीन महफिल में बहारें आ जाएंगी।
2: इस मौके के लिए मेरे पास कोई कला नहीं है।
1: वाह साहब वाह वाह वाह वाह वाह, सुना साहबान, हमारे शायरे आजम फरमा रहे हैं
3: इस मौके के लिए इनके पास कोई कला नहीं है।
4: नहीं साहब,
1: अजी अपने चाहने वालों को आप कुछ भी सुना दीजिए, हम समझेंगे कि आपने हमारी शादी का तोहफा दे दिया।

0: खुश रहे।
1: सभी ने कहा ब्रेनफर्ड एशियन रेडियो की भी यही दुआ है, यही कोशिश होती है कि आप सब खुश रहें, प्रोग्राम सुने, आपको अच्छा लगे। जुनेद साहब बहुत शुक्रिया, बहुत नवाजिश प्रोग्राम में आप शामिल हुए, गीत आपको बहुत पसंद आए, तहे दिल से हम आपके मशकूर हैं। आइंदा भी प्रोग्राम सुनते रहिएगा और इसी तरह से कोशिश कीजिएगा शामिल होने की भी। एक आध दफ़ा पहले भी आप प्रोग्राम में शामिल हुए हैं, अच्छा लगा था आपसे बात करके। तो लीजिए अब एक और खूबसूरत सा गीत सुनते हैं और ज़रा सोचिएगा सुन के कि इस एक गीत में कितनी फिल्मों के नाम लिए गए हैं। सीरियसली आप इस गीत को गौर से सुनिएगा और फिर सोचिएगा कि कितने नाम हैं जो इसमें लिए गए हैं बॉलीवुड की फिल्मों के। लीजिए सुनिए।

0: चोर
1: भूल गए
2: जाने मेरा नाम
1: अच्छा
2: चोरी मेरा काम जाने मेरा नाम और चोरी मेरा काम राम और श्याम
1: बंडल बाल
2: लड़के मिलन गीत गाता चल
1: बेशरम
2: चार का मौसम
1: बेशरम

झूला चंदन कंगन बंधन झूला बंधन झूला कंगन झूला चंदन झूला झूला झूला दिल दिया दर्द लिया जनक जनक पायल बाजे चम चमा चम गीत गाया पत्थरों में सरगम।

जी सभी ने का नाम ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो आप पे, आपने बहुत खूबसूरत सा गीत सुना जो आप सुन रहे हैं 1413 AM पे ऑनलाइन भी और डैब के जरिए और साथ साथ अपने स्मार्ट ऐप के जरिए। हमारा जो स्मार्ट ऐप है फोन पे फ्री ऑफ कॉस्ट आप डाउनलोड कीजिए और हमारी नसीहत से लुत्फानंदोज हो सकते हैं। तहे दिल से मशकूर व ममनून है उन तमाम कॉलर्स का, खसूसी तौर पर जिन्होंने आज से हमें बहुत बिजी रखा, मसरूफ रखा, लेकिन हकीकत यह है कि हमारा वक्त बड़ा अच्छा कट गया, बड़ी आसानी के साथ कट गया, पता ही नहीं चला कि कितना वक्त है। हालांकि जाहिर है आप हमारे साथ साथ रहे, ये भी एक साथ निभाने का तरीका होता है, जरिया होता है। तो बहुत शुक्रिया, तहे दिल से मशकूर ममनून है हमेशा की तरह जनाबा समीरा साहिबा, आप तशरीफ लाई, जरका साहिबा आप आई, रुखसाना साहिबा आप तशरीफ लाई और रिहाना साहिबा आपने फोन किया था तशरीफ लाई आप भी, और साथ ही साथ जनाब चौधरी रुखसार साहब, हमेशा की तरह आप दो बार लास्ट में शिरकत करते हैं प्रोग्राम के आगाज में और प्रोग्राम के आखिर में। बहुत मशकूर और ममनून हैं हम आपकी दुआओं आपके खलूस के। साथ ही साथ जनाब जुनेद साहब आप प्रोग्राम में शामिल हुए, बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश। समीरा साहिबा आप भी दो मरतबा तीन मरतबा उनके प्रोग्राम में शामिल हुई, तमाम प्रोग्राम आपने सुना, हमारे साथ साथ रही, तहे दिल से हम आपके मशकूर और ममनून हैं। महबूब इलाही साहब आपने भी प्रोग्राम में शिरकत की, दो बार शिरकत की, बहुत शुक्रिया आपका भी, आपकी भी बहुत नवाजिश। ये खूबसूरत सा गीत खसूसी तौर पर आप तमाम कॉलर्स के लिए, इंशाल्लाह आइंदा हफ्ते आपसे मुलाकात रहेगी, तब तक के लिए हमारा और आपका अल्लाह हमी और नासिर, अल्लाह हाफिज़।

0: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
1: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
0: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
1: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
2: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।

0: अजान का वक्त हुआ चाहता है इस अजान के लिए हमें तावन हासिल है कूपर हॉल सिलिस्टर्स लिस्टर हिल्स साइंस पार्क कैंपस रोड ब्रेडफोर्ड BD71HR
1: अजान दे गई हजरत बिलाल की हस्ती अजान दे गई हजरत बिलाल की हस्ती नमाज पढ़ गए दुनिया में करबला वाले सामीन ब्रेडफोर्ड और इसके मुजाफात में अजान का वक्त हुआ चाहता है।

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: You're listening to Bedford Asian Radio on 1413 AM.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका, पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेश है खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक, आटा चावल दालें मसाला जात, रोजाना ताज़ा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे, फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की ख्वारी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबी रोड, ब्रेडफोर्ड, BD88JL। बुखारी पसंद आपकी और हमारी बुखारी।
6: उफ, कितनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे, क्या ही चॉइस है आपका।
7: ये चॉइस हमारा नहीं, ये तो कमाल है, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का,
6: जो कि पायदार, मजबूत, खूबसूरत डबल एंटरप्रेग्लेस विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद।

0: लगाते हैं
1: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं।
0: फर्स्ट चॉइस विंडोज एंड डोर्स यॉर्कशायर
1: 106 लिस्टर हिल्स ब्रैडफोर्ड BD71JL।
0: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए, आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
1: 01274317644।
2: क्वालिटी वैल्यू स्टाइल एंड सिक्योरिटी योर नंबर वन चॉइस फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर।
1: दुल्हन वो जो पिया मन भाई,
3: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
1: नित नए डिजाइन के सेट, चूड़ियां कंगन कांटे,
3: बालियां अंगूठियां और हार,
1: जो दुल्हन करे सिंगार,
3: आज ही मामू काके की दुकान,
1: खालिस सोने की पहचान,
3: पाकिस्तान ज्वेलर से शरीफ लाइए
1: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
3: आपकी शान
1: हमारी आन,
3: क्वालिटी की पहचान,
1: पाकिस्तान ज्वेलर्स 1 Duckworth Lane Bradford BD95ER 01274914142
3: पाकिस्तान ज्वेलर्स। अरे बेटी की शादी करीब आ रही है, समझ नहीं आ रही कि जेवर कहाँ से लूँ।
4: अरे भोली, तुम्हें नहीं पता कि सोफी बहन ने ऑकलैंड पर सोफी ज्वेलर्स के नाम से गोल्ड जेवरात की दुकान खोल दी है।
3: सोफी ज्वेलर्स?
4: सोफी नहीं, सोफी, नित नए डिजाइन के जेवरात, जिनकी क्या है बात, इंश्योरेंस और वैल्यूएशन का भी इंतजाम, लेडी स्टाफ।
3: सोफी ज्वेलर्स 121 ऑकलैंड BD94QU 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
5: ना ही बच्चों का कोई सेफ मुस्तकबिल ना हमारा, कब तक ऐसे ही करेंगे गुजारा।
1: अरे सेफ पे राइडर जाएंगे, ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर बनके खूब पैसे कमाएंगे, बच्चों को ड्राइविंग भी सिखाएंगे।
5: बस ट्रक फोकलिफ्ट टैक्सी लाइसेंस, हम है आपको सब कुछ सिखाने को तैयार।
1: 30 साल ब्रेडफोर्ड का सबसे बड़ा पुराना और काबिल एतमाद नाम सेफ पे राइडर।
5: DSA ऑडिट अप्रूव्ड इंस्ट्रक्टर्स, ऑटोमेटिक एंड मैनुअल कार्स, ऑनलाइन थ्योरी क्लासेस की सहूलत, आज ही विजिट कीजिए
1: 33 Wetley Lane Bradford 01274201679।
5: safewayrider.co.in UK। सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
1: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट के स्पेशल ऑफर का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली £299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली £99।
5: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स लिस्टेड डायरेक्ट ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग BD3ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।

0: Master Jewelers, 93 Hawson Grange Road, Bradford 7, 01274-414-760.
1: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
2: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पल्स जाने का इरादा है।
1: जी हाँ, पल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
2: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए। आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, पल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रेडफोर्ड, BD6 1DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
3: ब्रेडफोर्ड में फर्नीचर का सबसे खूबसूरत शोरूम लव फर्नीचर।
4: फर्नीचर तो आप घर घर देखते हैं, मगर जो देखते ही पसंद आ जाए वो है लव फर्नीचर, जहाँ पर ऑर्थोपेडिक डबल बेड सिर्फ 100 pounds से, जर्मन वार्डरोब, डाइनिंग टेबल, कॉफी टेबल, रग्स, कारपेट, मैट्रेसेस की वसी वैरायटी।
5: ओपन 7 डेज, 10 till 6, फ्री डिलीवरी ऑल ओवर वेस्ट यॉर्कशायर। लव फर्नीचर, कार्लाइल रोड, ब्रेडफोर्ड, अपोजिट बार्कलेज बैंक, फोन ब्रेडफोर्ड 9627229622।
4: लव फर्नीचर, फर्नीचर यू लव।
6: यू आर लिसनिंग टू
7: Bradford Asian Radio on 1413 AM.

0: You're listening to Breakfast Asian Radio on 14:13 AM.
1: And the winner is
2: Your business being heard on the radio.
3: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
4: उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे, क्या ही चॉइस है आपका।
5: ये चॉइस हमारा नहीं, ये तो कमाल है, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का,
4: जो कि पायदार, मजबूत, खूबसूरत डबल एंट्रेपल ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
5: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं।
4: फर्स्ट चॉइस विंडोज एंड डोर्स यॉर्कशायर,
5: 106 लिस्टर हिल्स, ब्रैडफोर्ड, BD71JL।
4: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए, आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
5: 01274317644।
6: फॉर क्वालिटी, वैल्यू, स्टाइल एंड सिक्योरिटी, योर नंबर वन चॉइस, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर।
5: आओ, असल सोने के जेवरात के लिए दुबई चले।
7: मगर दुबई का टिकट तो हमने लिया ही नहीं।
5: अरे पगली, अब दुबई ब्रैडफोर्ड में ही आ गई। जी हाँ, दुबई ज्वेलर्स ने व्हाइट एबे रोड पर पेट्रोल स्टेशन के पास खूबसूरत जेवरात का शानदार शोरूम खोल दिया है।
7: झिलमिल करते कांटे, बालियां, कंगन, गले के हार 22 और 24 कैरेट गोल्ड में तैयार।
5: टॉप क्वालिटी, बेहतरीन सर्विस, ओपन 7 डेज।
7: 30 वेटले हिल ब्रैडफोर्ड, BD8 8NG, फोन 01274477257। दुबई ज्वेलर्स,
5: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका। पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक, आटा, चावल, दालें, मसाला जात, रोजाना ताज़ा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे, फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की खुआरी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर, नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबी रोड, ब्रैडफोर्ड, BD8 8JL। बुखारी, पसंद आपकी और हमारी बुखारी।
8: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
7: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ 3 दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रैडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे।
5: मिलान दुल्हा हाउस, 8183 व्हाइट एबे रोड, ब्रैडफोर्ड, BD8 8DR। टेलीफोन 07885428349। अदर ब्रांच, द मुगल एम्पोरियम, 1304 लीड्स रोड, ब्रैडफोर्ड।
7: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
5: तुम्हें पता है भाभी ने बॉबीज कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
7: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट, लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डाइट, ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3 ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।
9: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
5: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पल्स जाने का इरादा है।
9: जी हाँ, पल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
5: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए। आज ही तशरीफ लाइए, ओपन 7 डेज। पल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रैडफोर्ड, BD6 1DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
10: Do you know there are 170,000 new cases of cancer each year in Pakistan? Do you know that Imran Khan Cancer Appeal provides free cancer treatment to 75% of its patients? Do you know that the third specialist Shaukat Hanum Cancer Hospital is being built in Karachi? We need your support more than ever now. Please donate today by calling 01274 424444 or donate online at ikca.org.uk.
0: You're listening to
1: Breakfast Asian Radio on 14:13 AM.

ये ब्रॉडकास्टिंग रेडियो की आवाज है 1413 मीडियम वेव पर यॉर्कशायर की ससीन वादी में दुनिया के चार कोनों में इस वक्त इसे सुना जा रहा है ऑनलाइन www.bradfordasianradio.co.uk पर। इसके अलावा हमारे वो अहबाब जिनका फेसबुक अकाउंट है, मेरा पेज है RJ रिफत अब्बास, इस पे तशरीफ लाइए, एक मरतबा लाइक कर लें और फिर आप हमारी लाइव नशियात में शामिल हो पाएंगे। साथ ही साथ हमारे वो अहबाब जो हमें आयरलैंड, स्कॉटलैंड या इंग्लैंड के किसी भी शहर में सुन रहे हैं और आज की इस महफिल गजल उसने छेड़ी की जीनत और तौकीर बढ़ाना चाहें, हम उन्हें दिल की तमाम तर गहराइयों से खुश आमदीद कहेंगे अपने स्टूडियो के टेलीफोन नंबर 01274306677 पर।

मेरी आमद के साथ ही मेरे चाहने वालों की, मोहब्बत करने वालों की, प्यार करने वालों की आमद का सिलसिला शुरू हो जाता है। मेहमानान गिरामी तशरीफ ला चुके हैं, लेकिन उनका तारुफ हम कराते हैं हसबे रिवायत एक हसीन गीत के तोहफे के बाद, जिसे हम किया करते हैं नाम अपने उन तमाम सामईन और नाजरीन के, कि जिनकी आमद हमारे प्रोग्राम को चार चांद लगाती है और इसकी इज्जत और तौकीर में इजाफा करती है।

ये खूबसूरत गीत से, और उसके बाद हम अपने मेहमानान गिरामी का तारुफ आपसे कराएंगे। तो आइए चलते हैं उस हसीन गीत के तोहफे की जानिब, जो आप सबकी मोहब्बत हो, चाहत हो और प्यार के नाम है।

और दोस्तों ये था तोहफा हमारी उन तमाम सामीन और नाजरीन के नाम की जिनकी आमद हमारे प्रोग्राम को चार चांद लगाती है। माशाल्लाह रौनकों का आगाज हो चुका है, मेहमानान गिरामी तशरीफ ला चुके हैं। आइए पहले उनसे आपका तारुफ करा दें। सर फहरिस्त हैं रियासत साहब, हडिसफील्ड की हसीन फजाओं से हमारे दरमियान मौजूद हैं और अहल खाना के हमरा कहीं निकलने की तैयारी कर रहे हैं और तोहफा जल्द ही वसूल करना चाहते हैं। ज़रूर सर आँखों पर। हम कमर्शल के वक्फे के बाद आपको आपके तोहफे के साथ रुख्सत करेंगे। तशरीफ लाए हैं वक़ार मियाँ, आप इस वक्त वेकफील्ड से हमारे हमराह हैं और आज लंदन जाने की तैयारी किए बैठे हैं और इस वक्त अहल खाना के हमराह लंच कर रहे हैं। रियाज साहब तशरीफ लाए हैं ब्रैडफोर्ड की ससीन वादी से। सुमेरा बिटिया तशरीफ लाई हैं ब्रैडफोर्ड 3 से। डॉक्टर माहरुख साहिबा तशरीफ ला चुकी हैं ब्रैडफोर्ड की ससीन वादी से। भगत सिंह साहब लीज से हमारी बज़्म में तशरीफ ला चुके हैं। चौधरी रुखसार अहमद साहब मैनचेस्टर के सनती शहर से हमारे हमराह मौजूद हैं। परदेसी मजीद साहब तशरीफ ला चुके हैं खारिया गुजरात पाकिस्तान से। और बलूचिस्तान से हमारे हमराह मौजूद हैं याकूब मजारी साहब। आप तमाम अहबाब को मैं दिल की तमाम तर गहराइयों से खुश आमदीद कहता हूँ और साथ ही साथ आपका मोहब्बत भरा सलाम प्यार और ढेरों दुआओं का तोहफा तमाम सुनने वालों के नाम कर रहा हूँ। मैं बेइंतहा शुक्रगुजार हूँ चौधरी रुखसार अहमद साहब का, जिस मोहब्बत से आप मेरी आमद का इजहार करते हैं और मोहब्बत का इजहार मुझसे करते हैं और मुंतजर रहते हैं, इसके लिए हम तहे दिल से आपके शुक्रगुजार हैं। साथ ही साथ मैं बेइंतहा शुक्रगुजार हूँ, आज गर्मी तो है आपको पता है, फुल फैन चल रहा है, खिड़की खोल रखी है, दरवाज़ा खुला हुआ है और मैं कंट्रोल में है फ़जा जो है यहाँ की इस वक्त, और ज़्यादा गर्मी का एहसास नहीं हो रहा। ठंडा पानी भरा हुआ रखा है, जब ज़रूरत हो पी लेते हैं चौधरी साहब ने। और इस खूबसूरत माहौल को जो मैंने आपको बताया इस वक्त स्टूडियो में हसीन बनाने के लिए फूलों का एक हसीन गुलदस्ता भेजा है जिसमें उनकी पी लेते हैं चौधरी साहब ने। और इस खूबसूरत माहौल को जो मैंने आपको बताया इस वक्त स्टूडियो में हसीन बनाने के लिए फूलों का एक

0: अल्लाह ताला आपको खुश रखे, सेहत से रखे, इस फूलों के गुलदस्ते में आपकी प्यार की महक और फूलों की खुशबू ने हमारे प्रोग्राम को चार चांद लगा दिए हैं, पूरा स्टूडियो महक उठा है। याकूब मजारी साहब बलूचिस्तान से तशरीफ लाए हैं, उन्होंने बेइंतहा मोहब्बत से नवाजा है हमें, हम उनके भी शुक्रगुजार हैं। अल्लाह ताला आपको भी खुश रखे, सेहत से रखे। भगत सिंह साहब मौजूद हैं, आगाज़ प्रोग्राम में ही तशरीफ ले आए हैं और कहते हैं कि मेरे जानिब से तमाम सामईन और नाज़रीन की खिदमत में खुसूसी तौर पर मोहब्बत और अकीदत से भरपूर सलाम पेश कर दें। परदेसी मजीद साहब तशरीफ लाए हैं और हमेशा की तरह आपको पता है कि परदेसी मजीद साहब जब खारियां गुजरात से तशरीफ लाते हैं, मैं उनका पैगाम सामने लाने की कोशिश कर रहा हूं। आ जाओ भाई, आ जाओ, आ जाओ। ये आ गया। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल हैं आपके? मेरी जानिब से तमाम सामईन और नाज़रीन की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। चाचू जान, भतीजे जान, हमने आपका मोहब्बत भरा सलाम तमाम सामईन और नाज़रीन तक पहुंचा दिया है। अल्लाह तुम्हें खुश रखे, सेहत से रखे, अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। कहते हैं कि यहाँ खारिया में रात 11 बजे की बारिश लगी हुई है जी, बगैर वक्फे के अब भी तेज बारिश का सिलसिला जारी है। भाई मुबारक हो, इससे तो मौसम खारिया का बेइंतहा खुशगवार हो गया होगा। यहाँ तो मौसम खुश्क है और बारिश की कमी बड़ी शिद्दत से महसूस की जा रही है। ये सब ऊपर वाले का निज़ाम है, कहीं ज़रूरत है तो बारिश नहीं हो रही, कहीं बारिश है तो वो लोग कहते हैं कि बहुत ज़्यादा हो रही है, हमारे लिए तकलीफ का बाइस है। इंसान किसी हाल में खुश नहीं रहता। बहरहाल हम तो बहुत खुश हैं कि हमारे चाहने वाले हमारे साथ तशरीफ ला चुके हैं। आप सबको दिल की गहराइयों से खुश आमदीद कहते हुए हम बढ़ रहे हैं कमर्शल के वक्फे की जानिब। कमर्शल के बाद हम आपको लिए चलेंगे हर फील की हसीन फ़जाओं में, जहाँ जनाब रियासत साहब जो सबसे पहले आज तशरीफ़ लाए हैं हमारी बद में, अपने अहल खाना के हमराह मौजूद हैं और उन्होंने एक बहुत खूबसूरत गीत पसंद किया। बहुत दिनों बाद हवा के दोष पर लोग इसे सुन पाएंगे। गीत कौन सा है ये तो आपको पता ही होगा, खान साहब मेहंदी हसन खान साहब की आवाज़ उसमें यकीनन शामिल होगी, जो रियासत साहब के मोस्ट फेवरेट हैं।
1: Your business being heard on the radio.
2: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
3: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका, पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक, आटा चावल दालें मसाला जात, रोजाना ताज़ा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे, फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की खुआरी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबी रोड ब्रेडफोर्ड BD88JL। बुखारी पसंद आपकी और हमारी बुखारी।
4: उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे, क्या ही चॉइस है आपका?
5: ये चॉइस हमारा नहीं, ये तो कमाल है, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का,
4: जो कि पायदार, मजबूत, खूबसूरत डबल एंटर ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
5: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं।
4: फर्स्ट चॉइस विंडोज एंड डोर्स यॉर्कशायर,
5: 106 लिस्टर हिल्स ब्रेडफोर्ड BD71JL।
4: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए, आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
5: 01274317644।
6: फॉर क्वालिटी, वैल्यू, स्टाइल एंड सिक्योरिटी, योर नंबर वन चॉइस, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर।
7: दुल्हन वो जो पिया मन खाए,
8: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
7: नित नए डिजाइन के सेट, चूड़ियां, कंगन, कांटे,
8: बालियां, अंगूठियां और हार,
7: जो दुल्हन करे सिंगार,
8: आज ही मामू काकी की दुकान,
7: खालिस सोने की पहचान,
8: पाकिस्तान ज्वेलर्स से शरीफ लाइए
7: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
8: आपकी

0: दुकान,
1: हमारी आन,
0: क्वालिटी की पहचान।
1: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 डुकवर्ट लेन, ब्रेडफोर्ड, PD95BR 01274491442।
0: पाकिस्तान ज्वेलर्स। अरे बेटी की शादी करीब आ रही है, समझ नहीं आ रही कि जेवर कहाँ से लूँ।
2: अरे भोली, तुम्हें नहीं पता कि सोफी बहन ने ऑकलैंड पर सोफी ज्वेलर्स के नाम से गोल्ड जेवरात की दुकान खोल दी है।
0: सोफी ज्वेलर्स?
2: सोफी नहीं, सोफी। नित नए डिजाइन के जेवरात, जिनकी क्या है बात, इंश्योरेंस और वैल्यूएशन का भी इंतजाम, लेडी स्टाफ।
0: सोफी ज्वेलर्स, 121 ऑकलैंड, BD94QU 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
3: Looking to start driving or building a strong career? With Safeway Rider, you can learn automatic or manual driving with trusted, friendly instructors. We offer theory classes online and in-class to help you pass first time. Need your taxi badge for West, North or South Yorkshire? We will guide you step by step. Want more? Train as a driving instructor with our audit-approved trainers or get your truck, bus or forklift license and grow your future. Safeway Rider. Call today at 01274-201-679 or visit safewayrider.co.uk. Safeway Rider, helping you secure your future.
0: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
4: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
0: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट लाइनो, और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डायरेक्ट, ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।

0: Master Jewelers, 93 Hotham Grange Road, Bradford 7, 414-760.
1: रिवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
2: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पेल्स जाने का इरादा है।
1: जी हाँ, पेल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
2: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए। आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, पेल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रेडफोर्ड, BD6 1DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
3: यू आर लिसनिंग टू
4: Bradford Asian Radio on 1413 AM.
5: You're listening to Bradford Asian Radio,
6: the Hindi Urdu music show on Bradford Asian Radio.

दोस्तों, आप सुन रहे हैं गजल उसने छेड़ी, जिसे आपकी खिदमत में पेश किया जा रहा है। हमने अपने तमाम सामईन का तारुफ तो आपसे करा ही दिया है और ये सब मौजूद हैं इस वक्त ब्रेडफर्ड एशियन रेडियो पर, जो 1413 मीडियम वेव पर यॉर्कशायर की ससीन वादी में और दुनिया के चार कोनों में ऑनलाइन सुना जा रहा है। कसीर तादाद मौजूद है ऑनलाइन। हम आप सबको भी दिल की गहराइयों से खुशामदीद कहते हैं और हम अपने इन नादीदा लिसनर्स और श्रोते मुजाहिदों के लिए एक खुसूसी गीत का तोहफा भी पेश करेंगे। आज से हम नया सेगमेंट 3 बजे शुरू कर रहे हैं, एक गीत दो आवाजें एक शायर। जी हाँ, इसमें हम क्या करेंगे ये तो आपको हम बाद में बताएंगे, क्योंकि हमारे यहाँ शौरा का आलम यह है कि जो बाकायदा मुशायरों में शिरकत करते हैं वो तो लोगों से बहुत मानूस हो जाते हैं और लोग उनसे मानूस हो जाते हैं और बड़ी इज्जत व तौकीर से नवाजे जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे शौरा जिन्होंने जरिया माश बना लिया और फिल्मी दुनिया में कदम रख लिया, उन्हें हम बावजूद इसके कि वो बे इंतहा खूबसूरत शायरी और बहुत हसीन अशार कहकर लोगों के दिलों में घर करते हैं, लेकिन लोग गीत तो सुनते हैं लेकिन उन्हें ये इल्म नहीं होता कि ये गीत तहरीर किसने किया और क्या इसने बेशुमार गीत ऐसे तहरीर किए हैं। तो ये खराज अकीदत समझ लीजिए उन शुआरा को जो फिल्मी शुआरा हैं और उन सिंगर्स को कि जिन्होंने कमाल किया एक गीत दो आवाजें। बहरहाल आज उस सब पर चलने से पहले हमने आपको बताया था कि हमें हडर्सफील्ड की हसीन फजाओं में जाना है। आप भी अगर हमें आयरलैंड, स्कॉटलैंड या इंग्लैंड के किसी भी शहर में सुन रहे हैं और हमारी बज़्म की रौनक बढ़ाना चाहें, हमारे स्टूडियो का टेलीफोन नंबर है 01274306677। तो अब हम हडर्सफील्ड की हसीन फजाओं में रियासत साहब आपकी तरफ आ रहे हैं। क्या हाल है आपके? आपको और आपके अहल खाना को हमारी जानिब से ढेरों मुबारकबाद, और मुबारकबाद इस बात की कि आपकी लंबा प्लान है छुट्टी मनाने का आपके। और दूसरा ये कि आप सब माशाल्लाह हमारे प्रोग्राम की जीनत और तौकीर बढ़ाते हैं, इसके लिए तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। अल्लाह ताला आपको और आपके अहल खाना को हमेशा अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। इसके बाद हम आपको लिए चलेंगे बलूचिस्तान के खूबसूरत पहाड़ी सिलसिले में, जहाँ मौजूद हैं याकूब मजारी साहब, उनका तोहफा उनकी नजर करेंगे। चलते हैं हडर्सफील्ड।

हमने माई भागी का वो गीत पसंद किया है जिसे दुनिया के चार कोनों में सुना गया और उसकी मकबूलियत और शोहरत का आलम ये था कि माई भागी जो नहायत सादा थी उन्हें बतौर खास दूसरे ममालिक में बुलाया गया और तन्हे तन्हा वो सादा खातून जिन्होंने कभी सिंह से बाहर नहीं निकली थी, बलूचिस्तान से बाहर नहीं निकली थी, उन्होंने दुनिया की इस गीत के हवाले से सैर कर ली। वो गीत हमने आपके लिए मुंतखब किया है और उसके बाद कौन है ये बाद में बताता हूँ, पहले चलते हैं उस गीत की जानिब जिसने मकबूलियत और शोहरत के तमाम रिकॉर्ड तोड़े और माई भागी के मकबूल तरीन गीतों में इसका शुमार हुआ। याकूब मजारी आपके और अली बख्श आपके नाम। इसके बाद हाँ हमें जाना है मैनचेस्टर, चौधरी रुखसात अहमद साहब का तोहफा।

दोस्तों, ये थी माई भागी जो आज हमारे दरमियान मौजूद नहीं, लेकिन इनकी खूबसूरत आवाज और अनोखे अंदाज ने लाखों दिलों में आज भी घर कर रखा है। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला इनके दर्जात को बुलंद फरमाए, जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए और मगफरत फरमाए। अब हम चल रहे हैं मैनचेस्टर के सनती शहर में। चौधरी रुखसार अहमद साहब, आपकी नज़र कर रहा हूँ इस खूबसूरत शेर के साथ। जानकर मिन जुमलाए खासान मैं खाना मुझे, मुद्दतो रोया करेंगे जामो पैमाना मुझे। खूबसूरत गीत, आपकी मोहब्बतों चाहतों और प्यार के नाम। आपने कहा कि आप आज भी जवान हैं, जब उन्होंने कहा कि जवानी का कोई गीत, तो दोस्तों जवानी कोई खास काबिल तारीफ बात नहीं है। एक शेर आपकी नज़र कर रहा हूँ कि जवानी, रुखसार साहब, जवानी दर हकीकत जामए इल्ज़ाम होती है, नज़र कितनी भी अच्छी हो मगर बदनाम होती है। और आपके लिए मैंने अपने बहुत ही प्यारे से दोस्त मुजीब आलम का एक दुगाना पसंद किया है, जिन्हें हम प्यार से अल्लाह बाबा कहा करते थे, जिसका कभी उन्होंने बुरा नहीं माना। आपकी मोहब्बतों और चाहतों के नाम।

0: और ये था वो गीत जिससे हमारे स्कूल की हसीन यादें बहुत वाबस्ता हैं। अब हम चल रहे हैं कमर्शियल की जानिब। कमर्शियल के बाद नया सेगमेंट एक शायर। एक गीत दो आवाजें लेकर आपकी खिदमत में हाजिर रहूंगा। मुलाकात होती है कमर्शियल के वक्फे के फौरन बाद। नए सेगमेंट एक गीत दो आवाजें एक शायर के साथ।
1: Radio on 14:13 AM.
2: And the winner is...
3: And the winner is...
4: And the winner is...
2: Your business being heard on the radio.
5: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
6: उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे, क्या ही चॉइस है आपका।
7: ये चॉइस हमारा नहीं, ये तो कमाल है, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का,
6: जो कि पायदार, मजबूत, खूबसूरत डबल एंट्रीपल ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
7: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं।
6: फर्स्ट चॉइस विंडोज एंड डोर्स यॉर्कशायर,
7: 106 लिस्टर हिल्स ब्रेडफोर्ड, BD71JL।
6: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए, आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
7: 01274317644।
8: फॉर क्वालिटी, वैल्यू, स्टाइल एंड सिक्योरिटी, योर नंबर वन चॉइस, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर।
7: आओ, असल सोने के जेवरात के लिए दुबई चले।
9: मगर दुबई का टिकट तो हमने लिया ही नहीं।
7: अरे पगली, अब दुबई ब्रेडफोर्ड में ही आ गई। जी हाँ, दुबई ज्वेलर्स ने व्हाइट एबे रोड पर पेट्रोल स्टेशन के पास खूबसूरत जेवरात का शानदार शोरूम खोल दिया है।
9: झिलमिल करते कांटे, बालियां, कंगन, गले के हार 22 और 24 कैरेट गोल्ड में तैयार।
7: टॉप क्वालिटी, बेहतरीन सर्विस, ओपन 7 डेज।
9: 30 वेटले हिल ब्रेडफोर्ड, BD8 8NG, फोन 01274477257। दुबई ज्वेलर्स,
7: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका। पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक। आटा, चावल, दालें, मसाला जात, रोजाना ताज़ा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे, फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की ख्वारी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर, नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबी रोड, ब्रेडफोर्ड, BD8 8JL। बुखारी, पसंद आपकी और हमारी बुखारी।
10: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
9: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ 3 दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रेडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे।
7: मिलान दुल्हा हाउस, 8183 व्हाइट एबे रोड, ब्रेडफोर्ड, BD8 8DR। टेलीफोन 07885 428 3499। अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम, 1304 लीड्स रोड, ब्रेडफोर्ड।
9: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
7: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
9: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट, लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डाइट, ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3 ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।
11: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
7: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पेल्स जाने का इरादा है।
11: जी हाँ, पेल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
7: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए। आज ही तशरीफ लाइए, ओपन 7 डेज। पेल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रेडफोर्ड, BD6 1DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
9: शादी आ गई है सर पर और कोई फोटोग्राफर नहीं है घर पर।
7: लगता है आपने AsianWeddingsUK.com का नाम नहीं सुना, जो आपकी शादी के चलते फिरते हसीन लम्हात हमेशा के लिए फोटोज और वीडियोस के जरिए महफूज करते हैं और फिल्म ऐसी बनाते हैं दूल्हा दुल्हन जैसी चाहते हैं।
9: डिजिटल क्वालिटी, तेज और दोस्ताना सर्विस, मेल और फीमेल फोटोग्राफर्स,
7: जिंदगी के यादगार दिन को यादगार तरीन बनवाइए।
9: आज ही मुबीन का नंबर मिलाइए
7: 07548419678।
9: AsianWeddingsUK.com, जिनकी आम सी फिल्म भी बॉलीवुड से नहीं है।
1: You're listening to Bradford Asian Radio on 14:13 AM.

दोस्तों, आज से हम एक नया सेगमेंट शुरू कर रहे हैं और इसका नाम है एक गीत दो आवाजें एक शायर। आज जिस शायर को हमने मुंतखब किया है वो मुशायरों में बहुत कम जाते थे, लेकिन उन्होंने हजारों गीत फिल्मों के लिए तहरीर किए और गीतों ने मकबूलियत और शोहरत के तमाम रिकॉर्ड तोड़े। लेकिन हमने आज के प्रोग्राम एक गीत दो आवाजें एक शायर में उनका वो शोहरे आफाक गीत शामिल किया है जिसने मकबूलियत और शोहरत के तमाम तर बुलंद गीतों को छुआ और आज भी उसी मोहब्बत प्यार और चाहत से वो गीत सुने जाते हैं। हमारे आज के शायर हैं तस्लीम फाजली। तस्लीम फाजली अदबी घराने से आपका ताल्लुक था, बे इंतहा कम उम्री से अशार कहना शुरू किए और याद रहे कि हिंदुस्तान में इनके बड़े भाई निदा फाजली भी मौजूद हैं। तस्लीम फाजली इस जहान फानी से रुख्सत हो गए, लेकिन हजारों गीत ऐसे छोड़ गए जो आज भी लाखों दिलों की धड़कन है। तस्लीम फाजली साहब का असल नाम जो था उसे तो लोग भूल गए, लेकिन हाँ, उनके इस खूबसूरत नाम तस्लीम फाजली को लोगों ने अपना लिया। असल उनका नाम था अजहर अनवर। कराची में मुकीम थे, फिल्म स्टार निशो के शदाई थे और लोगों का कहना यह है कि उनके जमाशुदा अशार मौजूद हैं और जो गीत उन्होंने तहरीर किए वो फिल्म स्टार निशो को ही जहन में रख के उन्होंने वो गीत तहरीर किए। मोहब्बत का आलम यह था कि अल्लाह ताला ने उन्हें जोड़ी की सूरत भी बना दी और उन्होंने निशो से लाइफ पार्टनर बनने का फैज भी हासिल किया। तस्लीम फाजली न सिर्फ खूबसूरत सॉन्ग राइटर थे यानी फिल्मी गीत निगार थे, बल्कि उन्होंने बहुत सी फिल्में भी तहरीर की, स्क्रीन राइटर भी रहे और बहुत से मजामीन भी तहरीर किए। तस्लीम फाजली साहब इस जहान फानी से 17 अगस्त 1982 को सिर्फ 35 साल की उम्र में कूच कर गए। आज वो हमारे दरमियान मौजूद नहीं, लेकिन उनके खूबसूरत गीत आज भी लोगों में बेइंतहा मकबूल हैं। निशो आज भी अपने खूबसूरत शायर और जीवन साथी को हमेशा जब भी याद करती हैं तो उनकी आंखें नम हो जाती हैं। उन्होंने 1971 में एक फिल्म आई और फिल्म का नाम था मेरे हुजूर। इस फिल्म में एक ऐसा गीत लिखा उन्होंने जिसने मकबूलियत और शोहरत के तमाम रिकॉर्ड तोड़े। इस गीत की बोल तो तस्लीम फाजली के थे, इसे मौसीकी से संवारा था एम अशरफ ने। एम अशरफ हमारे बड़े खूबसूरत नौजवान मौसीकार थे और उनके गीत भी अमर गीतों में शामिल हुए। आज हमने एक गीत दो आवाजों में तस्लीम फाजली का लिखा हुआ वो गीत जिसे मलका तरन्नुम नूरजहां और खां साहब मेहंदी हसन खां साहब ने गाकर अमर कर दिया मुंतखब किया है। यह हमारा नया सेगमेंट जिसमें न सिर्फ हम खराज अकीदत तस्लीम फाजली को पेश कर रहे हैं बल्कि उस अजीम मौसीकार को भी
क्योंकि गीत तो हम याद रखते हैं लेकिन हमें ये नहीं पता होता कि इसको किसने इस कदर खूबसूरत बनाया है। गीत की मौसीकी जो उसकी कमर कह लीजिए और कह लीजिए कि वो मकबूलियत शोहरत गीत तो हासिल कर लेता है लेकिन उनके गीत निगारों को और मौसीकारों को लोग भूल जाते हैं। सो हम खराज अकीदत पेश कर रहे हैं जनाब एम अशरफ तस्लीम फाजली मलकाए तरन्नुम नूरजहां और मौसीकी के आफ्ताब खां साहब मेहंदी हसन खां साहब को। ये चारों अहबाब आज इस दुनिया में मौजूद नहीं हैं। अल्लाह ताला इनके दर्जात को बुलंद फरमाए, जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए, मगफरत फरमाए। इनके दो शाहकार गीत आपकी नजरें तशरीफ ला रही हैं, मलकाए तरन्नुम नूरजहां उस गीत के साथ जिसने मकबूलियत और शोहरत के तमाम रिकॉर्ड तोड़े और लोगों को इल्म नहीं कि तहरीर किसने किया था। गीत के बोल हैं, हमारी सांसों में आज तक वो

और दोस्तों ये है वो गीत जिसे मलका तरन्नुम नूर जहां ने गाकर अमर कर दिया और फिर इस गीत को एक और खूबसूरत तरीन आवाज में रिकॉर्ड किया गया। आवाज थी खान साहब मेहंदी हसन खान साहब की। सो एक गीत दो आवाजें और एक से बढ़कर एक। अब हम चल रहे हैं ये याद दिलाते हुए कि तस्लीम फाजली को 1976-77-78 में कंटिन्यूसली 3 साल उनके खूबसूरत गीतों की मकबूलियत के एतबार से पाकिस्तान का सबसे बड़ा फिल्मी अवार्ड निगार अवार्ड से नवाजा गया। जैसा कि मैंने बताया कि 35 साल की उम्र में आप इस जहान फानी से कूच कर गए, लेकिन ये अमर गीत हमारे लिए छोड़ गए। अल्लाह उनके दर्जात को बुलंद फरमाए।

दोस्तों आप सुन रहे थे एक गीत दो आवाजें एक शायर। मैं आपको बता दूं कि ये खूबसूरत शायर तस्लीम फाजली जो 17 अगस्त 1982 को महज 35 साल की उम्र में हार्ट फेल हो जाने की वजह से हार्ट अटैक हुआ, बहुत सीवियर किस्म का, और इस जहां फानी से कूच कर गए। एक हसीन तोहफा और आप सबके लिए छोड़ गए थे जिसे बाद में दुनिया ने साहिबा के नाम से पहचाना। साहिबा तस्लीम फाजली की साहबजादी और निशो की इकलौती औलाद हैं। ये था हमारा आज का एक शायर दो आवाजें एक गीत, समझ लीजिए। तो अब हम चल रहे हैं आपको लेकर बर्नले। उम्मीद है कि नया सेगमेंट आपको पसंद आया होगा। आप भी अगर कोई खास गीत जो आपके जहन में हो जिसे दो फनकारों ने गाया हो तो हमें जरूर बताइएगा। हमारे पास तो खैर बड़ी तवील फहरिस्त मौजूद है जो सिलसिला अब जारी रहेगा एक गीत दो आवाजें एक शायर का, लेकिन अभी हम आपको लिए चल रहे हैं बर्नले, जहां मौजूद हैं हमारे मोहतरम शकील साहब, और उन्होंने मुत्तला किया है, सलाम तो हम उनका आप तक पहुंचा ही चुके हैं, उन्होंने मुत्तला फरमाया है कि आज मशहूर और खूबसूरत सिंगर अबरारुल हक की सालगिरह है, और सालगिरह के पुरमसरत मौके पर उन्होंने खराज तहसीन पेश करने के लिए अबरारुल हक को एक बहुत खूबसूरत गीत का इंतखाब किया है, और वो गीत हम अब बतौर तोहफा पेश कर रहे हैं जनाब अबरारुल हक साहब। आपको हमारी जानिब से, हमारे लाखों सुनने वालों की जानिब से सालगिरह की ढेरों मुबारकबाद। अल्लाह ताला ऐसी ढेरों सालगिरह आपको दिखाए और आप अपने खूबसूरत गीतों से हमें यूं ही नवाजते रहें। शकील साहब आपकी जानिब से बतौर खास अबरारुल हक साहब सालगिरह की ढेरों मुबारकबाद कबूल हो। ये रहा वो गीत जो खराज तहसीन और सालगिरह का तोहफा।

तो किसी वजह से कमर्शियल नहीं पहुंच पाए। बहरहाल जैसे ही सिलसिला शुरू होगा हम बता देंगे। गीत का आगाज हुआ लेकिन कोई बात नहीं, हमारी निगाह स्क्रीन पर है और आप सुन रहे हैं ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो 1413 मीडियम वेव पर यॉर्कशायर की ससीन वादी में दुनिया के चार कोनों में इस वक्त से ऑनलाइन www.bradfordasianradio.co.uk पर सुना जा रहा है। और अब हम चल रहे हैं उस गीत की जानिब जिसे हम नजर कर रहे हैं अपने उन सोते मुजाहिदों के नाम, नादीदा लिसनर्स के नाम जो हमें ऑनलाइन www.bradfordasianradio.co.uk

ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो .co.uk पर सुन रहे हैं। तो आइए चलते हैं और अपने नादीदा लिसनर श्रोते मुजाहिदों को उनकी आमद हमारे प्रोग्राम में बाई से तौकीर हुआ करती है। आपकी ये मोहब्बतें, चाहते और प्यार जो आप हमारे प्रोग्राम से रखते हैं और ऑनलाइन सुनकर इसकी इज्जत और तौकीर बढ़ाते हैं, आपकी मोहब्बतों के नाम।

0: दोस्तों आप सुन रहे हैं गजल उसने छेड़ी। इससे पहले कि हम ब्रेडफोर्ड 3 से आई हुई अपनी खूबसूरत प्यारी सी बिटिया सुमैरा का तोहफा उनकी कजन्स के नाम जो इस वक्त हमें मिडिल्सब्रा में सुन रही हैं करें, क्यों ना आपकी मुलाकात एक बहुत खूबसूरत सी शख्सियत से करा दें कि जिनकी आमद हमेशा हमारे प्रोग्राम के लिए बहार का झोंका होती है। जी हाँ, मैं जिक्र कर रहा हूँ जनाब शकील साहब हमारे हमराह मौजूद हैं। आइए उनसे मिलते हैं और देखते हैं कि आज वो हमारे सामईन और नाज़रीन के लिए क्या तोहफा लाए हैं। अस्सलाम वालेकुम।
1: जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
0: वाला इबादिल्लाहि सालेहीन। कैसे हैं शकील भाई?
1: जी अल्लाह की मेहरबानी, शुक्र है आपकी दुआएं। आप सुनाए कैसे हैं?
0: मैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा करम है।
1: तमाम सुनने वालों को मेरे तरफ से अस्सलाम वालेकुम।
0: वालेकुम अस्सलाम।
1: नमस्कार खालिद हमीद साहब, सूफी अब्दुल करीम साहब, निगार रिजवन की अलिया है, अयूब भाई है, नवीद भाई है, चौधरी रुखसार साहब है, चौधरी मुजफ्फर साहब है, तारिक तुफी साहब, लाशमी आसवाले है, मायू परवेज साहब है, तौसीफ अहमद है, मजीद भाई, वसीम शाह, लाशफ शाह नकवी साहब, महबूब लाई शाह साहब, सबको मेरे तरफ से अस्सलाम वालेकुम।
0: आपका मोहब्बत भरा सलाम तमाम सामीन और नाजरीन तक पहुंचा और आपके अहबाब तक पहुंचा।
1: शुक्रिया। तो ये अय्यूब कासिम है, एक उनकी गजल है।
0: अता कीजिए।
1: महफिले जीस्त में देखे हैं अंधेरे बरसों, महफिले जीस्त में देखे हैं अंधेरे बरसों,
0: वाह
1: तारे गिन गिन के किए हमने सवेरे बरसों,
0: वाह वाह वाह वाह।
1: शुक्रिया। रंजो गम इश्के सनम तिश्ना लगी नीम शबी, दिले नाजुक को ये हालात घेरे बरसों, हालात थे घेरे बरसों,
0: वाह वाह वाह वाह।
1: रंजो गम इश्के सनम तिश्ना लगी नीम शबी, दिले नाजुक को ये हालात थे घेरे बरसों,
0: भाई वाह वाह वाह वाह।
1: क्यों न हो खौफ ज़दा लोग निगाहबानों से, क्यों न हो खौफ ज़दा लोग निगाहबानों से, लूटते आए हैं सबको ये लटेरे बरसों,
0: क्या बात है, ये शेर अता कीजिए।
1: क्यों न हो खौफ ज़दा लोग निगाहबानों से, लूटते आए हैं सबको ये लटेरे बरसों, नामे उल्फत ही से अब होती है दिल को वहशत,
0: नामे उल्फत से, क्या खूबसूरत मिसरा है, वाह वाह वाह वाह।
1: नामे उल्फत ही से अब होती है दिल को वहशत, हमको डसती रही ये शाम सवेरे बरसों,
0: ये शाम सवेरे बरसों, वाह वाह वाह वाह।
1: शुक्रिया। कूचा यार में रुसवाई ने रहने न दिया, कूचा यार में रुसवाई ने रहने न दिया, दश्त सहरा में लगाते रहे फेरे बरसों,
0: दश्त सहरा में लगाते रहे फेरे बरसों, वाह वाह वाह वाह।
1: आखिरी शेर कहते हैं,
0: अता कीजिए।
1: ऊंचे महलों में उन्हें सुकून ना आया अय्यूब, ऊंचे महलों में उन्हें सुकून ना आया अय्यूब, चार तिनकों पे किए हमने बसेरे बरसों,
0: भाई वाह वाह वाह वाह, मकसद अता कीजिए, वाह वाह वाह वाह।
1: ऊंचे महलों में उन्हें सुकून ना आया अय्यूब, चार तिनकों पे किए हमने बसेरे बरसों,
0: क्या खूबसूरत इंतखाब है, वाह वाह वाह वाह।
1: शुक्रिया। तो एक गजल है जावेद जमील, इनका नाम है।
0: जी अता कीजिए।
1: कहते हैं दायम हो उसके हुसन की नुजहत खुदा करे,
0: क्या मिसरा है,
1: दायम हो उसके हुसन की नुजहत खुदा करे, और मुझ में ये जनों की लज्जत खुदा करे,
0: वाह वाह वाह वाह।
1: शुक्रिया। मुद्दत से कोई तीर न खंजर न संगो खिश्त,
0: मुद्दत से कोई तीर न खंजर न संगो खिश्त,
1: मुद्दत से कोई तीर न खंजर न संगो खिश्त, दुश्मन हो मेरा जिंदा सलामत खुदा करे,
0: بھائی واہ واہ واہ واہ بھائی واہ واہ واہ واہ شکیل بھائی عطا کیجیے واہ واہ واہ واہ کیا تجبیہات ہیں.
1: کوئی تیر نہ خنجر نہ سنگ و خشت دشمن ہو میرا زندہ سلامت خدا کرے.
0: واہ واہ واہ واہ
1: کیا پوشیدہ ہے گناہوں میں بربادیاں کے راز. پوشیدہ ہے گناہوں میں بربادیوں کے راز نازل ہو دل پہ حرف ندامت خدا کرے.
0: واہ واہ واہ واہ
1: کہتے ہیں اپنی اوروں کی سنتے نہیں ہیں لوگ. کہتے ہیں اپنی اوروں کی سنتے نہیں ہیں لوگ ہو جائے کاش شوق سماعت خدا کرے.
0: سنتے نہیں ہیں لوگ ہو جائے واہ واہ واہ عطا کیجیے.
1: کہتے ہیں اپنی اوروں کی سنتے نہیں ہیں لوگ ہو جائے کاش شوق سماعت خدا کرے. کہتے ہیں اہل دین کے تقوی ہی دین ہے.
0: کیا بات ہے کہتے ہیں اہل دین کے تقوی ہی دین ہے.
1: وہ جان جائیں کاش اقامت خدا کرے.
0: واہ واہ واہ واہ
1: کہتے ہیں اہل دین کے تقوی ہی دین ہے. وہ جان جائیں کاش اقامت خدا کرے. میری دعا یہی ہے شریک سفر کے ساتھ.
0: یہ ہے شریک سفر کے ساتھ.
1: آ جائے ہم کو حسن نظامت خدا کرے.
0: آمین آمین کیا بات ہے عطا کیجیے اسے پلیز.
1: میری دعا یہی ہے شریک سفر کے ساتھ آ جائے ہم کو حسن نظامت خدا کرے.
0: واہ واہ واہ واہ
1: تخلیق بلندی افکار کی عطا. سوری تخلیق ہے بلندی افکار کی عطا. آئے تیرے کلام میں رفعت خدا کرے.
0: آئے تیرے کلام میں رفعت خدا کرے. بھائی واہ واہ واہ عطا کیجیے.
1: تخلیق ہے بلندی افکار کی عطا. آئے تیرے کلام میں رفعت خدا کرے. ہر شخص کا سیکھ لے آداب پیار کے.
0: واہ واہ
1: ہر شخص کاش سیکھ لے آداب پیار کے. دل میں نہ ہو کسی کے قدورت خدا کرے.
0: آمین ثم آمین یہ شعر عطا کیجیے بہت خوبصورت شعر ہے.
1: ہر شخص کاش سیکھ لے آداب پیار کے. دل میں نہ ہو کسی کے قدورت خدا کرے. تو آخری شعر ہوتے ہیں
0: عطا کیجیے عطا کیجیے.
1: جاوید چھن سکتا ہے کیا کوئی کسی کا رزق.
0: واہ واہ واہ واہ کیا مشرا ہے واہ واہ واہ واہ.
1: جاوید چھن سکتا ہے کیا کوئی کسی کا رزق. جس شخص کی ہمیشہ کفالت خدا کرے.
0: واہ واہ واہ واہ واہ واہ واہ واہ واہ واہ.
1: جاوید چھین سکتا ہے کیا کوئی کسی کا رزق. جس شخص کی ہمیشہ کفالت خدا کرے.
0: خوبصورت اور مرصع کلام کے ساتھ آپ نے ہماری بزم کو چار چاند لگائے. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے صحت سے رکھے اپنے حفظ و امان میں رکھے. آمد کا بے انتہا شکریہ.
1: جوانی پہ ایک شعر سنا دوں گا.
0: ضرور سنائیے ضرور سنائیے.
1: جوانی میں عدم کے واسطے سامان کر غافل. جوانی میں عدم کے واسطے سامان کر غافل. مسافر شب سے اٹھتے ہیں جو جانا دور ہوتا ہے.
0: واہ واہ واہ بھائی کیا بات ہے کیا بات ہے. اور میں قمر جلالوی کا ایک شعر شکیل بھائی آپ کے نام کر رہا ہوں کہ پیری سخم نہیں ہے میری کمر میں قمر. میں جھک کے ڈھونڈتا ہوں جوانی کدھر گئی.
1: جوانی کدھر گئی ڈھونڈتے رہیں گے ہم
0: ڈھونڈتے رہیں گے. اللہ حافظ بھائی
1: شکریہ بہت بہت خدا حافظ.
0: اور آپ تھے جناب شکیل صاحب جو ہمارے ہمراہ موجود تھے بانڈے سے. آپ سن رہے ہیں غزل اس نے چھیڑی. میں ہوں رفعت عباس. سمیرا بٹیا آپ کا گیت ہم نے کیوں کیا ہوا ہے آپ کی پیاری پیاری کزنز کے نام. لیکن گھڑی کی جانب نگاہ گئی جو اشارہ کر رہی ہے کہ یہ گیت مکمل نہیں ہو پائے گا. اور آپ کو اس بات کا علم ہے بٹیا कि हम अपने प्रोग्राम में कभी अधूरा कोई गीत शामिल नहीं करते। सो थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, कमर्शियल के वक्फे के बाद हम इंशाल्लाह आपकी, ओहो मैं कह रहा हूँ ये गर्मी क्यों हो गई, मेरा पंखा ऑफ हो गया था, एकदम एहसास हुआ जैसे गर्मी हुई। सो अब हम ऐसा करते हैं, बढ़ते हैं कमर्शियल की जानिब, ये याद दिलाते हुए कि आप इस वक्त मौजूद हैं ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो की हसीन नशियात में, जो 1413 मीडियम वेव पर यॉर्कशायर की हसीन वादी में दुनिया के चार कोनों में इस वक्त से सुना जा रहा है www.bradfordasianradio.co.uk पर। साथ ही साथ हमारे वो अहबाब जो हमें आयरलैंड, स्कॉटलैंड या इंग्लैंड के किसी भी शहर में सुन रहे हैं, हम उन्हें दिल की गहराइयों से आज की इस बज़्म में खुशामदीद कहेंगे, जैसा कि जनाब रफाका साहब एडिनबरा से हमारी बज़्म में शामिल हो चुके हैं। अभी अभी हमें उनका पैगाम मिला है, हम आपको दिल की तमाम तर गहराइयों से रफाका साहब खुशामदीद कहते हैं और आपकी पसंद का गीत भी आपकी नज़र करेंगे। कमर्शियल के वक्फे के बाद तो हमें मिडिल्सब्रा पहुंचना है, जहां हम अपनी बिटिया सुमैरा से वादा कर बैठे हैं कि हम आपकी प्यारी प्यारी कजन्स के नाम आपकी पसंद का गीत लेकर हाजिर रहेंगे। तो मुलाकात होगी कमर्शियल के वक्फे के बाद। आप बताइएगा आपके यहाँ गर्मी का क्या अहवाल है? यहाँ तो अल्हम्दुलिल्लाह टेम्परेचर 22 सेंटीग्रेड है इस वक्त और धूप निकली हुई है वॉल टू वॉल, जो बड़ी खुशाइन बात है। आपके यहाँ मौसम कैसा है बताइएगा? और शकील साहब आपके लिए मोहब्बत भरा सलाम परदेसी मजीद साहब ने भेजा है और कहते हैं कि वाह वाह वाह वाह वाह वाह क्या खूबसूरत इंतखाब था। परदेसी मजीद साहब अल्लाह आपको सलामत रखे, आप शुरू से आखिर तक हमारे प्रोग्राम की ज़ीनत तौकीर बढ़ाते रहते हैं। बढ़ते हैं कमर्शियल के वक्फे की जानिब, मुलाकात होगी कमर्शियल के वक्फे के फौरन बाद।

0: on 1413 AM.
1: And the winner is
2: Your business being heard on the radio.
3: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed, so find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
4: उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे, क्या ही चॉइस है आपका।
5: ये चॉइस हमारा नहीं, ये तो कमाल है, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का,
4: जो कि पायदार, मजबूत, खूबसूरत डबल एंटीपर ग्लेस विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
5: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं।
4: फर्स्ट चॉइस विंडोज एंड डोर्स यॉर्कशायर, 106
5: लिस्टर हिल्स, ब्रैडफोर्ड, BD71JL।
4: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए, आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
5: 01274317644।
6: फॉर क्वालिटी, वैल्यू, स्टाइल एंड सिक्योरिटी, योर नंबर वन चॉइस, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर।
5: आओ, असल सोने के जेवरात के लिए दुबई चले।
7: मगर दुबई का टिकट तो हमने लिया ही नहीं।
5: अरे पगली, अब दुबई ब्रैडफोर्ड में ही आ गई। जी हाँ, दुबई ज्वेलर्स ने व्हाइट एबे रोड पर पेट्रोल स्टेशन के पास खूबसूरत जेवरात का शानदार शोरूम खोल दिया है।
7: झिलमिल करते कांटे, बालियां, कंगन, गले के हार 22 और 24 कैरेट गोल्ड में तैयार।
5: टॉप क्वालिटी, बेहतरीन सर्विस, ओपन 7 डेज।
7: 30 वेटले हिल, ब्रैडफोर्ड, BD8 8NG, फोन 01274477257। दुबई ज्वेलर्स,
5: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका। पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक। आटा, चावल, दालें, मसाला जात, रोजाना ताजा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे, फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की खुआरी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर, नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबी रोड, ब्रैडफोर्ड, BD8 8JL। बुखारी, पसंद आपकी और हमारी बुखारी।
8: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
7: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ 3 दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रैडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे।
5: मिलान दुल्हा हाउस, 81-83 व्हाइट एबे रोड, ब्रैडफोर्ड, BD8 8DR। टेलीफोन 07-885-428-349। अदर ब्रांच, द मुगल एम्पोरियम, 1304 लीड रोड, ब्रैडफोर्ड।
7: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
5: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
7: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट, लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डाइट, ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3 ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।
9: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
5: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पल्स जाने का इरादा है।
9: जी हाँ, पल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
5: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए। आज ही तशरीफ लाइए, ओपन 7 डेज। पल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रैडफोर्ड, BD6 1DA। फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
10: हिसाबे उम्र का इतना सा गोशवारा है, तुम्हें निकाल के देखा तो सब खसारा है। मैं महमूद रिज़वी अकाउंटेंट्स। जी हाँ, छोटे से छोटे टैक्सी अकाउंट से लेकर बड़ी से बड़ी कंपनी के अकाउंट्स बनवाने के लिए काबिल एतमाद नाम महमूद रिज़वी अकाउंटेंट्स। ऑडिट एंड अकाउंटेंसी, टैक्सेशन, VAT, बुककीपिंग, पेरोल, फंडरेजिंग, कंपनी फॉर्मेशन, मॉर्गेजेस। अकाउंट्स के किसी भी मसले के लिए ना हो परेशान, क्योंकि आपकी मुश्किल करेंगे आसान महमूद रिज़वी चार्टर्ड सर्टिफाइड अकाउंटेंट्स। महमूद रिज़वी, ग्रेट हॉटन रोड, ऑन ब्रैडफोर्ड, 424453। महमूद रिज़वीज।
11: You're listening to
0: Bradford Asian Radio on 1413 AM.
12: You're listening to Bradford Asian Radio,
13: the Hindi Urdu music show on Bradford Asian Radio.
14: और दोस्तों, आप सुन रहे हैं गजल उसने छेड़ी। मैं हूँ रिफत अब्बास, आपका हमारा साथ है 5 बजे तक। हमारी नशियात 1413 मीडियम वेव पर यॉर्कशायर की सस्तीन वादी में दुनिया के 4 कोनों में इस वक्त इसे ऑनलाइन सुना जा रहा है www.bradfordasianradio.co.uk पर। हस्बे वादा, अब हम आपको लिए चल रहे हैं मिडिल्सब्रा, جہاں بریڈفورڈ 3 سے ہماری بٹیا باورچی خانے کی رانی سمیرا نے اپنی پیاری پیاری کزنز کے نام اس گیت کو سننا چاہا ہے۔

तो आप लोग हैरान हो रहे होंगे एक बात पर कि वकार मियां का गीत हमने क्यों नहीं लगाया, वो तो लंदन से धारने वाले थे। हुआ ये कि उनकी वो मीटिंग कैंसिल हो गई और वो घर पर इत्मीनान के साथ अपने अहल खाना के हमरा बैठे प्रोग्राम से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। कहते हैं कि रिफत भाई अब हमारा तोहफा पेश ही कर दीजिए। लीजिए साहब, हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या, ये तो आपका मीटिंग का कैंसिल हो जाना हमारे लिए तो बहुत ही खुशी का बाइस है कि इस बहाने आपको अपने अहले खाना के हमरा वक्त गुजारने का ज़्यादा मौका मिलेगा। बहरहाल अल्लाह ताला आपको और आपके अहले खाना को हमेशा अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, सेहत से रखे और नजरे बच से बचाए। आपकी पसंद लेकर हाजिर हूँ, कबूल फरमाइए।

अजीज़ अभी अभी परदेसी मजीद साहब फूल गुलाब के लेकर आए हैं हमारी बज़्म के लिए। ये मैंने यहाँ सजा दिए हैं और खुशबू से स्टूडियो महक रहा है। अब हम कल बिल्कुल आखिरी लम्हात में हमारे मोहतरम लिसनर ए डी चौधरी साहब तशरीफ लाए थे और हमेशा की तरह वो महव सफ़र थे M62 पर, जैसे कि आज हैं, लेकिन बहुत ताखीर से आमद की बुनियाद पर हम उनका गीत शामिल ना कर सके थे। हमने उनसे माज़रत कर ली थी हवा के दोष पर, लेकिन आज कल की गलती को जहन में रखते हुए ए डी चौधरी साहब हमारी बज़्म में तशरीफ ला चुके हैं। मोटरवे M62 पर महव सफ़र हैं। हमारी ढेरों दुआएं उनके साथ हैं। अल्लाह ताला आपको खैर वाफियत के साथ मंजिल मकसूद तक पहुंचाए। आपकी पसंद लेकर हाजिर हैं। आमद का बे इंतहा शुक्रिया ए डी चौधरी साहब। तोहफा हाजिर है, कबूल कीजिए। मौसम भी बहुत खुशगवार है, मज़ा आ रहा होगा ड्राइव करने में भी।

आइए दोस्तों, अब हम आपको लेकर चल रहे हैं डंकास्टर सिटी, जहां पर सिराज मुनी साहब खासे दिनों की गैर हाजिरी के बाद हमारी बद में आए हैं। आपकी आमद बाई से सद इफ्तार है। अल्लाह करे कि आप खैर आफियत से और सेहत से हों। आपकी आमद इस बात की दलील है कि सेहत माशाल्लाह ठीक है। आपका तोहफा लेकर हाजिर हूँ, कबूल फरमाइए।

0: 行吗？
1: दूसरे वक्त हुआ जा रहा है कमर्शियल का। कमर्शियल के बाद हमारी काबिल एहतराम लिसनर डॉक्टर माहरुख साहिबा लंच ब्रेक पर तशरीफ ला चुकी हैं, और जैसा कि आपको इल्म है कि वो आगाज प्रोग्राम में ही तशरीफ ले आती हैं, लेकिन आपका तोहफा और अपना तोहफा वसूल करती हैं लंच ब्रेक में। सो कमर्शियल के बाद उनका तोहफा उनकी नजर करेंगे और फिर एक खूबसूरत मेहमान से मुलाकात भी कराएंगे, वादा रहा।
2: Your business being heard on the radio.
3: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
4: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका, पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक, आटा चावल दालें मसाला जात, रोजाना ताज़ा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे, फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की ख्वारी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबी रोड ब्रेडफोर्ड BD88JL। बुखारी पसंद आपकी और हमारी बुखारी।
5: उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे, क्या ही चॉइस है आपका।
4: ये चॉइस हमारा नहीं, ये तो कमाल है, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का।
5: जो कि पायदार, मजबूत, खूबसूरत डबल एंट्रेपल ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
4: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं।
5: फर्स्ट चॉइस विंडोज एंड डोर्स यॉर्कशायर,
4: 106 लिस्टर हिल्स ब्रेडफोर्ड BD71JL।
5: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए, आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
4: 01274317644।
6: फॉर क्वालिटी, वैल्यू, स्टाइल एंड सिक्योरिटी, योर नंबर वन चॉइस, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर।
4: दुल्हन वो जो पिया मन भाई,
7: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
4: नित नए डिजाइन के सेट, चूड़ियां, कंगन, कांटे,
7: बालियां, अंगूठियां और हार,
4: जो दुल्हन करे सिंगार,
7: आज ही मामू काके की दुकान,
4: खालिस सोने की पहचान,
7: पाकिस्तान ज्वेलर से शरीफ लाइए
4: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
7: आपकी शान
4: हमारी आन,
7: क्वालिटी की पहचान,
4: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 Duckworth Lane ब्रेडफोर्ड BD95ER 01274491442।
7: पाकिस्तान ज्वेलर्स। अरे बेटी की शादी करीब आ रही है, समझ नहीं आ रही कि जेवर कहाँ से लूँ।
8: अरे भोली, तुम्हें नहीं पता कि सोफी बहन ने ऑकलैंड पर सोफी ज्वेलर्स के नाम से गोल्ड जेवरात की दुकान खोल दी है।
7: सोफी ज्वेलर्स?
8: सोफी नहीं, सोफी, नित नए डिजाइन के जेवरात, जिनकी क्या है बात, इंश्योरेंस और वैल्यूएशन का भी इंतजाम, लेडी स्टाफ।
7: सोफी ज्वेलर्स, 121 ऑकलैंड BD94QU 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
9: ना ही बच्चों का कोई सेफ मुस्तकबिल, ना हमारा, कब तक ऐसे ही करेंगे गुजारा।
4: अरे सेफ राइडर जाएंगे, ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर बनके खूब पैसे कमाएंगे, बच्चों को ड्राइविंग भी सिखाएंगे।
9: बस ट्रक, फोकलिफ्ट, टैक्सी लाइसेंस, हम हैं आपको सब कुछ सिखाने को तैयार।
4: 30 साल ब्रेडफोर्ड का सबसे बड़ा पुराना और काबिल एतमाद नाम, सेफ राइडर।
9: DSA ऑडिट अप्रूव्ड इंस्ट्रक्टर्स, ऑटोमेटिक एंड मैनुअल कार्स, ऑनलाइन थ्योरी क्लासेस की सहूलत, आज ही विजिट कीजिए
4: 33 Wetley Lane ब्रेडफोर्ड 01274201679।
9: UK। सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
4: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स

0: Master Jewelers, 93 Horton Grange Road, Bradford 7, 01274-414-760.
1: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
2: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पेल्स जाने का इरादा है।
1: जी हाँ, पेल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
2: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए। आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, पेल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रेडफोर्ड, BD6 1DA, फोन 01274-306-567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन। अरे, ये पूरे ब्रेडफोर्ड में क्या है शोर?
3: आपको नहीं पता, ऑफर्स इन मेनी होम स्टोर, रोजाना ताज़ा सब्जियाँ, फल, फ्रूट, सलाद, मीट, चिकन, आटा, दाल, चावल और मसाला, क्वालिटी में सबसे आला और सर्विस में सबसे बाला।
2: हर सम्त मचा है जिसका शोर, वो है मैनिंगम सुपर स्टोर। मैनिंगम सुपर स्टोर, कार्लाइल रोड, ब्रेडफोर्ड, BD8 8AX, फोन ब्रेडफोर्ड 4955555। हफ्ते के सातों दिन आपकी खिदमत में पेश पेश, मैनिंगम सुपर स्टोर।
3: मैनिंगम सुपर स्टोर।
4: You're listening to
5: Bradford Asian Radio on 1413 AM.
6: और दोस्तों, अब वक्त हुआ है हमारी काबिलियत एहतराम लिसनर डॉक्टर माहरुख साहिबा लंच ब्रेक पर हैं, और आपके लिए आज वो हजरत नासिर काजमी का ये खूबसूरत कलाम अदब के शहजाइयों और शेर के मतवालों के नाम लाई हैं। दिल में एक लहर सी उठी है अभी, कोई ताज़ा हवा चली है अभी, कुछ तो नाजुक मिजाज हैं हम भी, और ये चोट भी नई है अभी, शोर बरपा है खानाए दिल में, कोई दीवार सी गिरी है अभी, और शहर की बेचराग गलियों में जिंदगी तुझको ढूंढती है अभी, भरी दुनिया में जी नहीं लगता, जाने किस चीज की कमी है अभी, दिल में एक लहर सी उठी है अभी, कोई ताज़ा हवा चली है अभी। डॉक्टर साहब, आपकी आमद का हमेशा की तरह दिल की गहराइयों से शुक्रगुजार हैं कि आप अपनी कीमती मसरूफियात में से वक्त निकाल कर हमारे प्रोग्राम की जीनत तौकीर बढ़ाती हैं। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, सेहत से रखे, सलामत रखे। आमद का दिल की गहराइयों से शुक्रिया। पेश खिदमत है आपकी पसंदीदा गजल आपके नाम, कबूल कीजिए।

0: वो आ गई थी कहने की नवीद को सुना दीजिए
1: जी। सुनिए अब सैफ सैफुद्दीन सैफ साहब, एक और आपकी नजर करता हूँ, इसी पे एंड करते हैं कि मस्जिदो नंबर कहाँ, मै खारो मै खाने कहाँ, मस्जिदो मेंबर कहाँ, मै खारो मै खाने कहाँ, कैसे कैसे लोग आ जाते हैं समझाने कहाँ, ये कहाँ तक फैलती जाती हैं दिल की वसतें, ये कहाँ तक फैलती जाती हैं दिल की वसतें, हसरतो देखो सिमट आए हैं वीराने कहाँ।
0: वाह वाह वाह,
1: मैं बहुत बच बच के गुजरा हूँ गमे अय्याम से। रिफत भाई मैं बहुत बच बच के
0: जी जरा सा मुख्तसर कर दीजिए, इसलिए कि मुझे क्लोजिंग करनी है प्रोग्राम की। नवीद भाई बुरा ना मानिएगा
1: जी। लुट गए तेरे तसव्वुर से परे परी खाने कहाँ, ये भी तेरे गम का एक बदला हुआ अंदाज है, मैं कहाँ वरना गमे दौरा कहाँ।
0: वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह, बहुत बहुत शुक्रिया नवीद।
1: चले चले वक्त के लिए इसको आइंदा किसी शो पे उठा रखते हैं, ये जरूर आपकी नजर करूंगा
0: इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अल्लाह आपको सलामत रखे, सेहत से रखे,
1: बहुत शुक्रिया।
0: यार जिंदा सोबत बाकी
1: इंशाल्लाह, दुआ में याद रखिए, अपना ख्याल रखिए, तमाम दोस्तों को सलाम, अल्लाह हाफिज।
0: तो जी तो चाहता था कि नवीद से ढेर सारी और बातें हों, लेकिन वक्त की तंगी और ये वादा हमने किया है रियाज साहब तुहाडा कलाम मैं क्यों करके रखे है तो तुहाडी नज़र कर रहे हैं, तुहानूं मेरी पंजाबी पसंद है इस करके मैं पंजाबी गल कर रहे हैं। इसके साथ ही मैं अपने तमाम सुनने वालों से इजाजत का तलबगार हूँ, उनका जो फर्ज है वो अहले सियासत जाने, मेरा पैगाम मोहब्बत है जहां तक पहुंचे, मोहब्बतों के पैगंबर रिफत अब्बास को इजाजत दीजिए। आपका हमारा हम सब का अल्लाह हाफिज़ो नासिर। रियाज साहब आपके तोहफे के साथ प्रोग्राम का इख्तिताम हो रहा है, आमद का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़, शब्बा खैर।

0: 14:13 AM.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे, क्या ही चॉइस है आपका।
6: ये चॉइस हमारा नहीं, ये तो कमाल है, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का,
5: जो कि पायदार, मजबूत, खूबसूरत डबल एंट्रेपल ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
6: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं।
5: फर्स्ट चॉइस विंडोज एंड डोर्स यॉर्कशायर,
6: 106 लिस्टर हिल्स ब्रैडफोर्ड, BD71JL।
5: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए, आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
6: 01274317644।
7: फॉर क्वालिटी, वैल्यू, स्टाइल एंड सिक्योरिटी, योर नंबर वन चॉइस, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर।
6: आओ असल सोने के जेवरात के लिए दुबई चले।
8: मगर दुबई का टिकट तो हमने लिया ही नहीं।
6: अरे पगली, अब दुबई ब्रैडफोर्ड में ही आ गई। जी हाँ, दुबई ज्वेलर्स ने व्हाइट एबे रोड पर पेट्रोल स्टेशन के पास खूबसूरत जेवरात का शानदार शोरूम खोल दिया है।
8: झिलमिल करते कांटे, बालियां, कंगन, गले के हार 22 और 24 कैरेट गोल्ड में तैयार।
6: टॉप क्वालिटी, बेहतरीन सर्विस, ओपन 7 डेज।
8: 30 वेटली हिल ब्रैडफोर्ड, BD8 8NG, फोन 01274477257। दुबई ज्वेलर्स,
6: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका। पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक, आटा, चावल, दालें, मसाला जात, रोजाना ताज़ा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे, फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की ख्वारी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर, नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबी रोड, ब्रैडफोर्ड, BD8 8JL। बुखारी, पसंद आपकी और हमारी बुखारी।
9: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
8: अरे दूल्हा जब शेरवानी मिलान दूल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ 3 दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रैडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दूल्हे को शहजादा बना दे।
6: मिलान दूल्हा हाउस, 8183 व्हाइट एबे रोड, ब्रैडफोर्ड, BD8 8DR। टेलीफोन 07885428349। अदर ब्रांच, द मुगल एम्पोरियम, 1304 लीड रोड, ब्रैडफोर्ड।
8: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
6: तुम्हें पता है भाभी ने बोबीज कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
8: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट, लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड एट ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3 8DN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।
10: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
6: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज बेल्स जाने का इरादा है।
10: जी हाँ, बेल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
6: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए, आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, बेल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रैडफोर्ड, BD6 1DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
10: क्या आपकी आवाज़ खूबसूरत है? क्या आपने बोलने की जरूरत है? अगर ऐसी ही सूरत है तो ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो को आपकी जरूरत है। आज ही स्टूडियो नंबर 01274306677 पर कॉल कीजिए और अपनी आवाज सुनने वालों के दिलों तक पहुंचाइए और खुद को रेडियो स्टार बनाइए। याद रखिए, अगर आपको बड़ी बड़ी छोड़ने की आदत है तो ये आपके कल के बड़ा ब्रॉडकास्टर बनने की जमानत है। आज ही स्टूडियो नंबर 01274306677 पर कॉल कीजिए। ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो,
0: You're listening to Bradford Asian Radio on 14:13 AM.

0: Asian Radio on 1413 AM.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेश है खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर ऑल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक आटा चावल दालें मसाला जात रोजाना ताजा सब्जियां और फल फ्रूट हलाल गोश्त और चूजे फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले बचिए इधर उधर की ख्वारी से शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से बुखारी सुपर स्टोर नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक व्हाइट एबी रोड ब्रेडफोर्ड BD88JL बुखारी पसंद आपकी और हमारी बुखारी
6: उफ इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे क्या ही चॉइस है आपका
7: ये चॉइस हमारा नहीं ये तो कमाल है फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का
6: जो कि पायदार मजबूत खूबसूरत डबल एंटरप्राइज ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
7: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं
6: फर्स्ट चॉइस विंडोज एंड डोर्स यॉर्कशायर
7: 106 लिस्टर हिल्स ब्रेडफोर्ड BD71JL
6: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
7: 01274317644
8: फॉर क्वालिटी वैल्यू स्टाइल एंड सिक्योरिटी योर नंबर वन चॉइस फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर
9: दुल्हन वो जो पिया मन भाई
10: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए
9: नित नए डिजाइन के साथ चूड़ियां कंगन कांटे
10: बालियां अंगूठियां और हार
9: जो दुल्हन करे सिंगार
10: आज ही मामू काके की दुकान
9: खालिस सोने की पहचान
10: पाकिस्तान ज्वेलर्स तशरीफ लाइए
9: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए
10: आपकी शान
9: हमारी आन
10: क्वालिटी की पहचान
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स 1 Dufferin Lane ब्रेडफोर्ड BD95ER 01274491442
10: पाकिस्तान ज्वेलर्स अरे बेटी की शादी करीब आ रही है समझ नहीं आ रही कि जेवर कहाँ से लूँ
11: अरे भोली तुम्हें नहीं पता कि सोफी बहन ने ऑकलैन पर सोफी ज्वेलर्स के नाम से गोल्ड जेवरात की दुकान खोल दी है
10: सोफी ज्वेलर्स
11: सोफी नहीं सोफी नित नए डिजाइन के जेवरात जिनकी क्या है बात इंश्योरेंस और वैल्यूएशन का भी इंतजाम लेडी स्टाफ
10: सोफी ज्वेलर्स 121 ओकलेन BD94QU 01274056014 सोफी ज्वेलर्स
12: Looking to start driving or building a strong career with Safeway Rider, you can learn automatic or manual driving with trusted, friendly instructors. We offer theory classes online and in-class to help you pass first time. Need your taxi badge for West, North or South Yorkshire? We will guide you step by step. Want more? Train as a driving instructor with our audit-approved trainers or get your truck, bus or forklift license and grow your future. Safeway Rider. Call today at 01274-201-679 or visit safewayrider.co.uk. Safeway Rider, helping you secure your future.
13: सुनिए जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे
14: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स
13: खूबसूरत कारपेट्स लैमिनेट लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ बॉबीज कारपेट्स लिस्टेड एट ट्रैफिक लाइट्स ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग्स BD3ADN बॉबी आइए भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए नंबर मिलाइए 07414260

0: Master Jewelers, 93 Hotham Grange Road, Bradford 7, 414-760.
1: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
2: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पल्स जाने का इरादा है।
1: जी हाँ, पल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
2: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए। आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, पल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रेडफोर्ड, BD6 1DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
3: ब्रेडफोर्ड में फर्नीचर का सबसे खूबसूरत शोरूम लव फर्नीचर।
4: फर्नीचर तो आप घर घर देखते हैं, मगर जो देखते ही पसंद आ जाए वो है लव फर्नीचर, जहाँ पर ऑर्थोपेडिक डबल बेड सिर्फ 100 pounds से, जर्मन वार्डरोब, डाइनिंग टेबल, कॉफी टेबल, रग, कारपेट, मैट्रेसेस की वसी वैरायटी।
5: ओपन 7 डेज, 10 to 6, फ्री डिलीवरी ऑल ओवर वेस्ट यॉर्कशायर। लव फर्नीचर, कार्लाइल रोड, ब्रेडफोर्ड, अपोजिट बार्कलेंस बैंक, ऑन ब्रेडफोर्ड, 9627229622।
4: लव फर्नीचर, फर्नीचर यू लव।
6: You're listening to Bradford Asian Radio on 1413 AM.
7: You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.

0: Old Asian Radio on 1413 AM.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: उफ़, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे, क्या ही चॉइस है आपका।
6: ये चॉइस हमारा नहीं, ये तो कमाल है, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का,
5: जो कि पायदार, मजबूत, खूबसूरत डबल एंट्रेपल ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
6: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं।
5: फर्स्ट चॉइस विंडोज एंड डोर्स यॉर्कशायर,
6: 106 लिस्टर हिल्स ब्रेडफोर्ड, BD71JL।
5: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए, आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
6: 01274317644।
7: फॉर क्वालिटी, वैल्यू, स्टाइल एंड सिक्योरिटी, योर नंबर वन चॉइस, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर।
6: आओ असल सोने के जेवरात के लिए दुबई चले।
8: मगर दुबई का टिकट तो हमने लिया ही नहीं।
6: अरे पगली, अब दुबई ब्रेडफोर्ड में ही आ गई। जी हाँ, दुबई ज्वेलर्स ने व्हाइट एबे रोड पर पेट्रोल स्टेशन के पास खूबसूरत जेवरात का शानदार शोरूम खोल दिया है।
8: जी मिल करते कांटे, बालियां, कंगन, गले के हार 22 और 24 कैरेट गोल्ड में तैयार।
6: टॉप क्वालिटी, बेहतरीन सर्विस, ओपन 7 डेज।
8: 30 वेटली हिल ब्रैडफोर्ड, BD8 8NG, 4012744777। दुबई ज्वेलर्स,
6: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका। पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक, आटा, चावल, दालें, मसाला जात, रोजाना ताजा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे, फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की ख्वारी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर, नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबी रोड, ब्रेडफोर्ड, BD8 8JL। बुखारी, पसंद आपकी और हमारी। बुखारी
9: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
8: अरे दूल्हा जब शेरवानी मिलान दूल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ 3 दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रेडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दूल्हे को शहजादा बना दे।
6: मिलान दूल्हा हाउस, 8183 व्हाइट एबी रोड, ब्रेडफोर्ड, BD8 8DR। टेलीफोन 07885428349। अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम, 1304 लीड रोड, ब्रेडफोर्ड।
8: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
6: तुम्हें पता है भाभी ने बोबीज कारपेट्स की स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
8: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट, लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डाइट, ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3 8DN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।
10: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
6: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पल्स जाने का इरादा है।
10: जी हाँ, पल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
6: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए। आज ही तशरीफ लाइए, ओपन 7 डेज। पल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रेडफोर्ड, BD6 1DA। फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
11: Do you know there are 170,000 new cases of cancer each year in Pakistan? Do you know that Imran Khan Cancer Appeal provides free cancer treatment to 75% of its patients? Do you know that the third specialist Shaukat Hanum Cancer Hospital is being built in Karachi? We need your support more than ever now. Please donate today by calling 01274 424444 or donate online at ikca.org.uk.
12: You're listening to
0: Bradford Asian Radio on 1413 AM.

0: Action Radio on 1413 AM.
1: And the winner is...
2: Your business being heard on the radio.
3: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
4: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ शोर होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक आटा चावल दालें मसाला जात रोजाना ताजा सब्जियां और फल फ्रूट हलाल गोश्त और चूजे फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले बचिए इधर उधर की ख्वारी से शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से बुखारी सुपर स्टोर नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक व्हाइट एबी रोड ब्रेडफोर्ड BD88JL बुखारी पसंद आपकी और हमारी बुखारी
5: उफ इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियां और दरवाजे क्या ही चॉइस है आपका
6: ये चॉइस हमारा नहीं ये तो कमाल है फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का
5: जो कि पायदार मजबूत खूबसूरत डबल एंटीपल ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
6: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं
5: फर्स्ट चॉइस विंडोज एंड डोर्स यॉर्कशायर
6: 106 लिस्टर हिल्स ब्रैडफोर्ड BD71JL
5: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
6: 01274317644
7: फॉर क्वालिटी वैल्यू स्टाइल एंड सिक्योरिटी योर नंबर 1 चॉइस फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर
8: दुल्हन वो जो पिया मन भाई
9: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए
8: नित नए डिजाइन के साथ चूड़ियां कंगन कांटे
9: बालियां अंगूठियां और हार
8: जो दुल्हन करे सिंगार
9: आज ही मामू काके की दुकान
8: खालिस सोने की पहचान
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स तशरीफ लाइए
8: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए
9: आपकी शान
8: हमारी आन
9: क्वालिटी की पहचान
8: पाकिस्तान ज्वेलर्स 1 Dufferin Lane ब्रेडफोर्ड BD95ER 01274491442
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स
10: अरे बेटी की शादी करीब आ रही है समझ नहीं आ रही कि जेवर कहां से लूं
11: अरे भोली तुम्हें नहीं पता कि सोफी बहन ने ऑकलैंड पर सोफी ज्वेलर्स के नाम से गोल्ड जेवरात की दुकान खोल दी है
10: सोफी ज्वेलर्स
11: सोफी नहीं सोफी नित नए डिजाइन के जेवरात जिनकी क्या है बात इंश्योरेंस और वैल्यूएशन का भी इंतजाम लेडी स्टाफ
10: सोफी ज्वेलर्स 121 ऑकलैंड BD94QU 01274056014 सोफी ज्वेलर्स
12: ना ही बच्चों का कोई सेफ मुस्तकबिल ना हमारा कब तक ऐसे ही करेंगे गुजारा
13: अरे सेफ राइडर जाएंगे ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर बनके खूब पैसे कमाएंगे बच्चों को ड्राइविंग भी सिखाएंगे
12: बस ट्रक फोकलिफ्ट टैक्सी लाइसेंस हम हैं आपको सब कुछ सिखाने को तैयार
13: 30 साल ब्रेडफोर्ड का सबसे बड़ा पुराना और काबिल एतमाद नाम सेफ राइडर
12: DSA ऑडिट अप्रूव्ड इंस्ट्रक्टर्स ऑटोमेटिक एंड मैनुअल कार्स ऑनलाइन थ्योरी क्लासेस की सहूलत आज ही विजिट कीजिए
13: 33 Wetland Lane ब्रेडफोर्ड 01274201679
12: UK सुनिए जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे
13: तुम्हें पता है भाभी ने बॉबीज कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स
12: खूबसूरत कारपेट्स लैमिनेट लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ बॉबीज कारपेट्स लिस्टेड लाइट ट्रैफिक लाइट्स ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग्स BD3ADN बॉबी आइए भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए नंबर मिलाइए 07414260078

0: अजान का वक्त हुआ चाहता है इस अजान के लिए हमें तावन हासिल है कूबर हॉल सोलिसिटर्स लिस्टर हिल साइंस पार्क कैंपस रोड ब्रेडफोर्ड BD71HR
1: अजान दे गई हजरत बिलाल की हस्ती अजान दे गई हजरत बिलाल की हस्ती नमाज पढ़ गए दुनिया में करबला वाले सामीन ब्रेडफोर्ड और इसके मुताफात में अजान का वक्त हुआ चाहता है
2: अल्लाह

0: Beautiful Asian Radio on 1413 AM.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेश है खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक आटा चावल दालें मसाला जात रोजाना ताजा सब्जियां और फल फ्रूट फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले बचिए इधर उधर की खुआरी से शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से बुखारी सुपर स्टोर नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक व्हाइट एबी रोड ब्रेडफोर्ड BD88JL बुखारी पसंद आपकी और हमारी बुखारी
6: उफ इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे क्या ही चॉइस है आपका
7: ये चॉइस हमारा नहीं ये तो कमाल है फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का
6: जो कि पायदार मजबूत खूबसूरत डबल एंट्रेपल ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
7: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं
6: फर्स्ट चॉइस विंडोज एंड डोर्स यॉर्कशायर
7: 106 लिस्टर हिल्स ब्रेडफोर्ड BD71JL
6: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
7: 01274317644
8: फॉर क्वालिटी वैल्यू स्टाइल एंड सिक्योरिटी योर नंबर वन चॉइस फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर
9: दुल्हन वो जो पिया मन खाए
10: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए
9: नित नए डिजाइन के साथ चूड़ियां कंगन कांटे
10: बालियां अंगूठियां और हार
9: जो दुल्हन करे सिंगार
10: आज ही मामू काके की दुकान
9: खालिस सोने की पहचान
10: पाकिस्तान ज्वेलर से शरीफ लाइए
9: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए
10: आपकी शान
9: हमारी आन
10: क्वालिटी की पहचान
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स 1 Dufferin Lane ब्रेडफोर्ड BD95ER 01274491442
10: पाकिस्तान ज्वेलर्स अरे बेटी की शादी करीब आ रही है समझ नहीं आ रही कि जेवर कहाँ से लूँ
11: अरे भोली तुम्हें नहीं पता कि सोफी बहन ने ऑफ लेन पर सोफी ज्वेलर्स के नाम से गोल्ड जेवरात की दुकान खोल दी है
10: सोफी ज्वेलर्स
11: सोफी नहीं सोफी नित नए डिजाइन के जेवरात जिनकी क्या है बात इंश्योरेंस और वैल्यूएशन का भी इंतजाम लेडी स्टाफ
10: सोफी ज्वेलर्स 121 ओक लेन BD94QU 01274056014 सोफी ज्वेलर्स
12: Looking to start driving or building a strong career? With Safeway Rider, you can learn automatic or manual driving with trusted, friendly instructors. We offer theory classes online and in-class to help you pass first time. Need your taxi badge for West, North or South Yorkshire? We will guide you step by step. Want more? Train as a driving instructor with our audit-approved trainers or get your truck, bus or forklift license and grow your future. Safeway Rider. Call today at 01274-201-679 or visit safewayrider.co.uk. Safeway Rider, helping you secure your future.
13: सुनिए जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे
7: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स
13: खूबसूरत कारपेट्स लैमिनेट लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ बॉबीज कारपेट्स लिस्टेड डायरेक्ट ट्रैफिक लाइट्स ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग BD3ADN बॉबी आइए भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए नंबर मिलाइए 07414260066

0: Master Jewelers, 93 Hotham Grant Road, Bradford 7, 414-760.
1: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
2: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पल्स जाने का इरादा है।
1: जी हाँ, पल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
2: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए। आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, पल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रेडफोर्ड, BD6 1DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन। अरे, ये पूरे ब्रेडफोर्ड में क्या है शोर?
3: आपको नहीं पता, ऑफर्स इन मेनी न्यू स्टोर, रोजाना ताजा सब्जियां, फल, फ्रूट, सलाद, मीट, चिकन, आटा, दाल, चावल और मसाला, क्वालिटी में सबसे आला और सर्विस में सबसे बाला।
2: हर सम्त मचा है जिसका शोर, वो है मैनिंगम सुपर स्टोर। मैनिंगम सुपर स्टोर, कार्लाइल रोड, ब्रेडफोर्ड, BD8 8।

0: एक्स फ्रॉम ब्रेडफोर्ड 4955555 हफ्ते के सातों दिन आपकी खिदमत में पेश पेश मैनिंगम सुपर स्टोर
1: मैनिंगम सुपर स्टोर
2: यू आर लिसनिंग टू ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो ऑन 1413 AM

0: Old Asian Radio on 1413 AM.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे, क्या ही चॉइस है आपका।
6: ये चॉइस हमारा नहीं, ये तो कमाल है, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का,
5: जो कि पायदार, मजबूत, खूबसूरत डबल एंट्रेपल ग्लेस विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
6: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं।
5: फर्स्ट चॉइस
6: 106 लिस्टर हिल्स ब्रेडफोर्ड BD71JL।
5: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए, आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
6: 01274317644।
7: क्वालिटी, वैल्यू, स्टाइल एंड सिक्योरिटी, योर नंबर वन चॉइस, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर।
8: Sheffield Mela CIC presents DeciFest Sheffield Mela 2026. Join us at Firth Park, Sheffield on Sunday, 2nd of August from 12 to 8pm. A family fun day for the whole family with fun fair, food stalls and Mela shopping. Featuring live performances from Lemba Husseinpuri, H. Dami, Ramit Sandhu, Summer Blake and much, much more. Sunday, 2nd of August at Firth Park, Sheffield. We'll see you there.
6: आओ असल सोने के जेवरात के लिए दुबई चले।
9: मगर दुबई का टिकट तो हमने लिया ही नहीं।
6: अरे पगली, अब दुबई ब्रेडफोर्ड में ही आ गई। जी हाँ, दुबई ज्वेलर्स ने व्हाइट एबे रोड पर पेट्रोल स्टेशन के पास खूबसूरत जेवरात का शानदार शोरूम खोल दिया है।
9: जी मिल करते कांटे, बालियां, कंगन, गले के हार 22 और 24 कैरेट गोल्ड में तैयार।
6: टॉप क्वालिटी, बेहतरीन सर्विस, ओपन 7 डेज।
9: 30 वेटली हिल ब्रेडफोर्ड BD8 8NG, फोन 01274477257। दुबई ज्वेलर्स,
6: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका। पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक। आटा, चावल, दालें, मसाला जात, रोजाना ताजा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे। फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की ख्वारी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर, नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबी रोड, ब्रेडफोर्ड, BD8 8JL। बुखारी, पसंद आपकी और हमारी। बुखारी
10: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
9: अरे दूल्हा जब शेरवानी मिलान दूल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ 3 दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रेडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दूल्हे को शहजादा बना दे।
6: मिलान दूल्हा हाउस 8183 व्हाइट एबे रोड, ब्रेडफोर्ड, BD8 8DR। टेलीफोन 07885428349। अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम, 1304 लीड रोड, ब्रेडफोर्ड।
9: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
6: तुम्हें पता है भाभी ने बोबीज कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
9: खूबसूरत कारपेट्स, लैमिनेट, लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बोबीज कारपेट्स, लिस्टेड टाइप, ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3 8DN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।
11: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
6: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पल्स जाने का इरादा है।
11: जी हाँ, पल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रम्स,
6: और इसके साथ साथ
12: खूब एशियन रेडियो 1413 AM एंड ऑनलाइन।

जी हाँ, जो सब जो मुजफ्फर साहब भी थे, फूनपारा और साचा साहब, चौधरी लखसार साहब भी सब से, ये बड़ा मोहब्बत है, इनकी प्यार है, और बहुत अच्छा लगता है चौधरी लखसार साहब, बात आपसे भी बात करके बहुत अच्छा लगा। और चौधरी मुजफ्फर साहब आपने भी बताया नहीं, वो बिजी था फ़ोन, वो कनेक्शन का मसला नहीं था। चौधरी रखसार साहब बात कर रहे थे, तो बहुत शुक्रिया आपका कॉल करने का भी। और चौधरी रखसार साहब आपसे भी बहुत प्यारी प्यारी बातें हुई, बहुत ही प्यार करने वाले हैं हमारे दोस्त भाई जनाब चौधरी रखसार साहब और चौधरी मुजफ्फर साहब भी। तो बहुत अच्छा लगता है जब साथ देते हैं, आप सुन रहे हैं और प्रोग्राम, और यही है महफिल जब जमती है तो सारे दोस्त मिल जाते हैं, सबसे मुलाकातें हो जाती हैं। तो आने वाला गीत जो है वो भी हम आपके नाम करते हैं जनाब चौधरी रखसार साहब, आइए सुनते हैं गीत, और साथ कियान फोन पर है तो उससे बात करते हैं।

0: इस प्यार से मेरी तरफ ना देखो, इस प्यार से मेरी तरफ ना देखो, प्यार हो जाएगा। बहुत ही खूबसूरत गीत आपने समाज फरमाया। वक्त हुआ चाहता है कमर्शियल ब्रेक का। सामिन मिलते हैं ब्रेक के उस पार, हमारे साथ रहिएगा। बहुत ही खूबसूरत गीत आपने समाज फरमाया। वक्त हुआ चाहता है कमर्शियल ब्रेक का। सामिन मिलते हैं ब्रेक के उस पार, हमारे साथ रहिएगा।
1: The winner is...
2: And the winner is...

0: 1300 6677।
1: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका, पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक, आटा चावल दालें मसाला जात, रोजाना ताज़ा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे, फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की ख्वारी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबी रोड ब्रेडफोर्ड BD88JL। बुखारी पसंद आपकी और हमारी बुखारी।
2: उफ़, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे, क्या ही चॉइस है आपका।
3: ये चॉइस हमारा नहीं, ये तो कमाल है, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का।
2: जो कि पायदार, मजबूत, खूबसूरत डबल एंट्रेपल ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
3: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं।
2: फर्स्ट चॉइस
3: 106 लिस्टर हिल्स ब्रेडफोर्ड BD71JL।
2: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए, आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
3: 01274317644।
4: क्वालिटी, वैल्यू, स्टाइल एंड सिक्योरिटी, योर नंबर वन चॉइस, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर।
1: दुल्हन वो जो पिया मन भाई,
5: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
1: नित नए डिजाइन के सेट, चूड़ियां, कंगन, कांटे,
5: बालियां, अंगूठियां और हार,
1: जो दुल्हन करे सिंगार,
5: आज ही मामू काके की दुकान,
1: खालिस सोने की पहचान,
5: पाकिस्तान ज्वेलर्स में शरीफ लाइए
1: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
5: आपकी शान
1: हमारी आन,
5: क्वालिटी की पहचान।
1: पाकिस्तान ज्वेलर्स 1 Duckworth Lane Bradford BD95ER 01274491442।
5: पाकिस्तान ज्वेलर्स।
6: अरे बेटी की शादी करीब आ रही है, समझ नहीं आ रही कि जेवर कहाँ से लूँ।
7: अरे भोली, तुम्हें नहीं पता कि सोफी बहन ने ऑकलैंड पर सोफी ज्वेलर्स के नाम से गोल्ड जेवरात की दुकान खोल दी है।
6: सोफी ज्वेलर्स?
7: सोफी नहीं, सोफी, नित नए डिजाइन के जेवरात, जिनकी क्या है बात, इंश्योरेंस और वैल्यूएशन का भी इंतजाम, लेडी स्टाफ।
6: सोफी ज्वेलर्स 1 Duckworth Lane BD94QU 01274056014।
5: सोफी ज्वेलर्स।
8: ना ही बच्चों का कोई सेफ मुस्तकबिल ना हमारा, कब तक ऐसे ही करेंगे गुजारा।
3: अरे सेफ पे राइडर जाएंगे, ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर बनके खूब पैसे कमाएंगे, बच्चों को ड्राइविंग भी सिखाएंगे।
8: बस ट्रक, फोकलिफ्ट, टैक्सी लाइसेंस, हम हैं आपको सब कुछ सिखाने को तैयार।
3: 30 साल ब्रेडफोर्ड का सबसे बड़ा पुराना और काबिल एतमाद नाम सेफ पे राइडर।
8: DSA ऑडिट अप्रूव्ड इंस्ट्रक्टर्स, ऑटोमेटिक एंड मैनुअल कार्स, ऑनलाइन थ्योरी क्लासेस की सहूलत, आज ही विजिट कीजिए
3: 33 Wetley Lane Bradford 01274201679।
8: saferaider.co.in UK। सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
3: तुम्हें पता है भाभी ने बोबीज कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
8: खूबसूरत कारपेट्स, लैमिनेट, लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बोबीज कारपेट्स, लिस्टेड एट ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग्स, BD3ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।

0: Master Jewelers, 93 Horson Grange Road, Bradford, Severn, 01274-414-760.
1: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी जा रहा है
2: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पल्स जाने का इरादा है।
1: जी हाँ, पल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रम्स,
2: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए। आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, पल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रेडफोर्ड, BD6 1DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
3: ब्रेडफोर्ड में फर्नीचर का सबसे खूबसूरत शोरूम लव फर्नीचर।
4: फर्नीचर तो आप घर घर देखते हैं, मगर जो देखते ही पसंद आ जाए वो है लव फर्नीचर, जहाँ पर ऑर्थोपेडिक डबल बेड सिर्फ 100 pounds से, जर्मन वार्डरोब, डाइनिंग टेबल, कॉफी टेबल, रग्स, कारपेट, मैट्रेसेस की वसी वैरायटी।
5: ओपन 7 डेज, 10 to 6, फ्री डिलीवरी ऑल ओवर वेस्ट यॉर्कशायर। लव फर्नीचर, कार्लाइल रोड, ब्रेडफोर्ड, अपोजिट बार्कलेंस बैंक, फोन ब्रेडफोर्ड 9627229622।
4: लव फर्नीचर, फर्नीचर यू लव।
6: You're listening to Breakfast Asian Radio on 1413 AM.

0: the winner is...
1: And the winner is...
2: And the winner is...
0: Your business being heard on the radio.
3: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
4: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेश है खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर ऑल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक
3: 8 6 6 7 7
4: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेश है खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर जिसकी

0: उफ़, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे, क्या ही चॉइस है आपका।
1: ये चॉइस हमारा नहीं, ये तो कमाल है, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का,
0: जो कि पायदार, मजबूत, खूबसूरत डबल एंट्रेपल ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
1: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं।
0: फर्स्ट चॉइस
1: 106 लिस्टर हिल्स ब्रेडफोर्ड BD71JL।
0: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए, आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
1: 01274317644।
2: क्वालिटी, वैल्यू, स्टाइल एंड सिक्योरिटी, योर नंबर वन चॉइस, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर।
1: दुल्हन वो जो पिया मन भाई,
3: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
1: नित नए डिजाइन के सेट, चूड़ियां, कंगन, कांटे,
3: बालियां, अंगूठियां और हार,
1: जो दुल्हन करे सिंगार,
3: आज ही मामू काकी की दुकान,
1: खालिस सौदे की पहचान,
3: पाकिस्तान ज्वेलर से शरीफ लाइए
1: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
3: आपकी शान
1: हमारी आन,
3: क्वालिटी की पहचान,
1: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 Duffield Lane ब्रेडफोर्ड, BD95ER, 01274491442।
3: पाकिस्तान ज्वेलर्स।
4: अरे बेटी की शादी करीब आ रही है, समझ नहीं आ रही कि जेवर कहाँ से लूँ।
5: अरे भोली, तुम्हें नहीं पता कि सोफी बहन ने ऑकलैंड पर सोफी ज्वेलर्स के नाम से गोल्ड जेवरात की दुकान खोल दी है।
4: सोफी ज्वेलर्स?
5: सोफी नहीं, सोफी, नित नए डिजाइन के जेवरात, जिनकी क्या है बात, इंश्योरेंस और वैल्यूएशन का भी इंतजाम, लेडी स्टाफ,
4: सोफी ज्वेलर्स, 121 ऑकलैंड, BD94QU, 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
6: Looking to start driving or building a strong career with Safeway Rider? You can learn automatic or manual driving with trusted, friendly instructors. We offer theory classes online and in class to help you pass first time. Need your taxi badge for West, North or South Yorkshire? We will guide you step by step. Want more? Train as a driving instructor with our audit approved trainers or get your truck, bus or forklift license and grow your future. Safeway Rider. Call today at 01274201679 or visit safewayrider.co.uk. Safeway Rider, helping you secure your future.
7: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
1: तुम्हें पता है भाभी ने बॉबीज कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली £299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली £99।
7: खूबसूरत कारपेट्स, लैमिनेट, लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डाइट, ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414।

0: Master Jewelers, 93 Hotham Grange Road, Bradford 7414760.
1: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
2: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज बल्स जाने का इरादा है।
1: जी हाँ, बल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
2: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए। आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, बल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रेडफोर्ड, BD6 1DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
3: You're listening to Bradford Asian Radio on 14:13 AM.
1: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिलनवाज,
2: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
1: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
2: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
4: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 14:13 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।

0: Nagpur Asian Radio on 1413 AM.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
0: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
4: उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे, क्या ही चॉइस है आपका।
5: ये चॉइस हमारा नहीं, ये तो कमाल है, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का,
4: जो कि पायदार, मजबूत, खूबसूरत डबल एंट्रीपल ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
5: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं।
4: फर्स्ट चॉइस
5: 106 लिस्टर हिल्स ब्रैडफोर्ड BD71JL।
4: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए, आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
5: 01274317644।
6: क्वालिटी, वैल्यू, स्टाइल एंड सिक्योरिटी, योर नंबर वन चॉइस, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर।
7: Sheffield Mellor CIC presents DeciFest Sheffield Mellor 2026. Join us at Firth Park, Sheffield on Sunday, 2nd of August from 12 to 8pm. A family fun day for the whole family with funfair, food stalls and Mellor shopping. Featuring live performances from Lemba Husseinpuri, H. Dami, Ramit Sandhu, Summer Blake and much, much more. Sunday, 2nd of August at Firth Park, Sheffield. We'll see you there.
5: आओ असल सोने के जेवरात के लिए दुबई चले।
8: मगर दुबई का टिकट तो हमने लिया ही नहीं।
5: अरे पगली, अब दुबई ब्रैडफोर्ड में ही आ गई। जी हाँ, दुबई ज्वेलर्स ने व्हाइट एबे रोड पर पेट्रोल स्टेशन के पास खूबसूरत जेवरात का शानदार शोरूम खोल दिया है।
8: जी मिल करते कांटे, बालियां, कंगन, गले के हार 22 और 24 कैरेट गोल्ड में तैयार।
5: टॉप क्वालिटी, बेहतरीन सर्विस, ओपन 7 डेज।
8: 30 वेटली हिल ब्रैडफोर्ड BD8 8NG, फोन 01274477257। दुबई ज्वेलर्स,
5: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका। पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ शोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक। आटा, चावल, दालें, मसाला जात, रोजाना ताज़ा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे। फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की ख्वारी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबी रोड, ब्रैडफोर्ड BD8 8JL। बुखारी, पसंद आपकी और हमारी बुखारी।
9: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
8: अरे दूल्हा जब शेरवानी मिलान दूल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ 3 दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रैडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दूल्हे को शहजादा बना दे।
5: मिलान दूल्हा हाउस 8183 व्हाइट एबे रोड ब्रैडफोर्ड BD8 8DR, टेलीफोन 07885428349, अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम 1304 लीड्स रोड ब्रैडफोर्ड।
8: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
5: तुम्हें पता है भाभी ने बॉबीज कारपेट्स की स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
8: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट, लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डाइट, ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3 8DN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।
10: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
5: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पल्स जाने का इरादा है।
10: जी हाँ, पल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
5: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से

0: के दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिलनवाज,
1: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
0: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
1: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
2: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।

0: Bedford Asian Radio on 14:13 AM.
1: And the winner is.
2: And the winner is.
3: And the winner is.
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक आटा चावल दालें मसाला जात रोजाना ताजा सब्जियां और फल फ्रूट हलाल गोश्त और चूजे फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले बचिए इधर उधर की ख्वारी से शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से बुखारी सुपर स्टोर नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक व्हाइट एबी रोड ब्रेडफोर्ड BD88JL बुखारी पसंद आपकी और हमारी बुखारी
6: उफ़ इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे क्या ही चॉइस है आपका
7: ये चॉइस हमारा नहीं ये तो कमाल है फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का
6: जो कि पायदार मजबूत खूबसूरत डबल एंट्रेपल ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
7: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं
6: इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे क्या ही चॉइस का
7: ये हमारा नहीं तो कमाल फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का
6: जो कि पायदार मजबूत खूबसूरत डबल एंट्रेपल ग्लेज विंडोज के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चांद लगाते हैं

0: सिंगार
1: जो दुल्हन करे सिंगार
0: आज ही मामू काके की दुकान
1: खालिस सोने की पहचान
0: पाकिस्तान ज्वेलर्स से शरीफ लाइए
1: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए
0: आपकी शान
1: हमारी आन
0: क्वालिटी की पहचान
1: पाकिस्तान ज्वेलर्स 1 Dufferin Lane ब्रेडफोर्ड PD95ER 01274491442
0: पाकिस्तान ज्वेलर्स। अरे बेटी की शादी करीब आ रही है समझ नहीं आ रही कि जेवर कहाँ से लूँ।
2: अरे भोली तुम्हें नहीं पता कि सोफी बहन ने ऑकलैंड पर सोफी ज्वेलर्स के नाम से गोल्ड जेवरात की दुकान खोल दी है।
0: सोफी ज्वेलर्स
2: सोफी नहीं सोफी नित नए डिजाइन के जेवरात जिनकी क्या है बात इंश्योरेंस और वैल्यूएशन का भी इंतजाम लेडी स्टाफ
0: सोफी ज्वेलर्स 121 ऑकलैंड BD94QU 01274056014 सोफी ज्वेलर्स। ना ही बच्चों का कोई सेफ मुस्तकबिल ना हमारा कब तक ऐसे ही करेंगे गुजारा।
1: अरे सेफ राइडर जाएंगे ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर बनके खूब पैसे कमाएंगे बच्चों को ड्राइविंग भी सिखाएंगे
0: बस ट्रक फोकलिफ्ट टैक्सी लाइसेंस हम है आपको सब कुछ सिखाने को तैयार
1: 30 साल ब्रेडफोर्ड का सबसे बड़ा पुराना और काबिल एतमाद नाम सेफ राइडर
0: DSA ऑडिट अप्रूव्ड इंस्ट्रक्टर्स ऑटोमेटिक एंड मैनुअल कार्स ऑनलाइन थ्योरी क्लासेस की सहूलत आज ही विजिट कीजिए
1: 33 Wetland Lane ब्रेडफोर्ड 01274201679
0: saferaider.co.in UK सुनिए जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे
1: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स
0: खूबसूरत कारपेट्स लैमिनेट लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ बॉबीज कारपेट्स लिस्टेड लाइट ट्रैफिक लाइट्स ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग्स BD3ADN बॉबी आइए भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट्स से घर सजाइए नंबर मिलाइए 07414260078

0: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
1: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
0: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
1: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
2: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।

0: अजान का वक्त हुआ चाहता है इस अजान के लिए हमें तावन हासिल है कूबर हॉल सोलिसिटर्स लिस्टर हिल साइंस पार्क कैंपस रोड ब्रेडफर्ड BD71HR
1: अजान दे गई हजरत बिलाल की हस्ती अजान दे गई हजरत बिलाल की हस्ती नमाज पढ़ गए दुनिया में करबला वाले सामीन ब्रेडफर्ड और इसके मुजाफात में अजान का वक्त हुआ चाहता है
2: अल्लाह

اشهد ان لا اله الا الله. اشهد

0: दिलों में रस खोलने वाली सदाई दिलनवाज,
1: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
0: कम्युनिटी की पूरा असर आवाज,
1: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
2: ग्रेटफुल एशियन रेडियो मीडियम वेव।

0: Bedford Asian Radio on 1413 AM.
1: And the winner is
2: Your business being heard on the radio.
3: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
4: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका, पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेश है खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक, आटा चावल दालें मसाला जात, रोजाना ताजा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे, फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की खुआरी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबी रोड ब्रेडफोर्ड BD88JL। बुखारी पसंद आपकी और हमारी बुखारी।
5: उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे, क्या ही चॉइस है आपका।
6: ये चॉइस हमारा नहीं, ये तो कमाल है, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का।
5: जो कि पायदार, मजबूत, खूबसूरत डबल एंट्रीपल ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
6: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं।
5: फर्स्ट चॉइस
6: 106 लिस्टर हिल्स ब्रेडफोर्ड BD71JL।
5: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए, आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
6: 01274317644।
7: क्वालिटी, वैल्यू, स्टाइल एंड सिक्योरिटी, योर नंबर वन चॉइस, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर।
8: दुल्हन वो जो पिया मन भाई,
9: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
8: नित नए डिजाइन के साथ चूड़ियां, कंगन, कांटे,
9: बालियां, अंगूठियां और हार,
8: जो दुल्हन करे सिंगार,
9: आज ही मामू काके की दुकान,
8: खालिस सोने की पहचान,
9: पाकिस्तान ज्वेलर से शरीफ लाइए
8: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
9: आपकी शान
8: हमारी आन,
9: क्वालिटी की

0: Master Jewelers, 93 Hotham Grange Road, Bradford 7, 414-760.
1: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
2: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज बल्स जाने का इरादा है।
1: जी हाँ, बल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
2: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए। आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, बल्स, सी रूम, 46 अरूली एवेन्यू, ब्रेडफोर्ड, BD6 1DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
3: ब्रेडफोर्ड में फर्नीचर का सबसे खूबसूरत शोरूम लव फर्नीचर।
1: फर्नीचर तो आप घर घर देखते हैं, मगर जो देखते ही पसंद आ जाए वो है लव फर्नीचर, जहाँ पर ऑर्थोपेडिक डबल बेड सिर्फ 100 pounds से, जर्मन वार्डरोब, डाइनिंग टेबल, कॉफी टेबल, रग्स, कारपेट, मैट्रेसेस की वसी वैरायटी।
4: ओपन 7 डेज, 10 till 6, फ्री डिलीवरी ऑल ओवर वेस्ट यॉर्कशायर। लव फर्नीचर, कार्लाइल रोड, ब्रेडफोर्ड, अपोजिट बार्कलेंस बैंक, फोन ब्रेडफोर्ड 9627229622।
1: लव फर्नीचर, फर्नीचर यू लव।
5: You're listening to Bradford Asian Radio on 1413 AM.
6: This is Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.

0: दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
1: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
0: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
1: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
2: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।

0: You're listening to Bedford Asian Radio on 1413 AM.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे, क्या ही चॉइस है आपका।
6: ये चॉइस हमारा नहीं, ये तो कमाल है, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का,
5: जो कि पायदार, मजबूत, खूबसूरत डबल एंट्रेपल ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
6: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं।
5: फर्स्ट चॉइस
6: 106 लिस्टर हिल्स ब्रैडफोर्ड BD71JL।
5: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए, आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
6: 01274317644।
7: क्वालिटी, वैल्यू, स्टाइल एंड सिक्योरिटी, योर नंबर वन चॉइस, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर।
8: Sheffield Mela CIC presents DeciFest Sheffield Mela 2026. Join us at Firth Park, Sheffield on Sunday, 2nd of August from 12 to 8pm. A family fun day for the whole family with funfair, food stalls and Mela shopping. Featuring live performances from Lamba Husseinpuri, H. Dami, Ramit Sandhu, Summer Blake and much, much more. Sunday, 2nd of August at Firth Park, Sheffield. We'll see you there.
6: आओ असल सोने के जेवरात के लिए दुबई चले।
9: मगर दुबई का टिकट तो हमने लिया ही नहीं।
6: अरे पगली, अब दुबई ब्रैडफोर्ड में ही आ गई। जी हाँ, दुबई ज्वेलर्स ने व्हाइट एबे रोड पर पेट्रोल स्टेशन के पास खूबसूरत जेवरात का शानदार शोरूम खोल दिया है।
9: जी मिल करते कांटे, बालियां, कंगन, गले के हार 22 और 24 कैरेट गोल्ड में तैयार।
6: टॉप क्वालिटी, बेहतरीन सर्विस, ओपन 7 डेज।
9: 30 वेटली हिल ब्रैडफोर्ड BD8 8NG, फोन 01274477257। दुबई ज्वेलर्स।
6: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका, पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक, आटा, चावल, दालें, मसाला जात, रोजाना ताजा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे, फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की खुआरी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर, नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबी रोड, ब्रैडफोर्ड, BD8 8JL। बुखारी, पसंद आपकी और हमारी बुखारी।
10: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
11: अरे दूल्हा जब शेरवानी मिलान दूल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ 3 दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रैडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दूल्हे को शहजादा बना दे।
6: मिलान दूल्हा हाउस 8183 व्हाइट एबे रोड, ब्रैडफोर्ड, BD8 8DR। टेलीफोन 07885428349। अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम, 1304 लीड रोड, ब्रैडफोर्ड।
11: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
6: तुम्हें पता है भाभी ने बोबीज कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
11: खूबसूरत कारपेट्स, लैमिनेट, लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बोबीज कारपेट्स, लिस्टेड लाइट, ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3 8DN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।
12: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
6: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पल्स जाने का इरादा है।
12: जी हाँ, पल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रम्स
6: और इसके साथ साथ खूबसूरत
0: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो ऑन 1413 AM।
13: वल्लाहि अल अस्माउल हुस्ना فدعوه بها صدق الله العظيم.

صلى الله عليه وآله وسلم: إن لله 99 اسما من أحساها دخل الجنة.

صلي وسلم على سيدنا

0: Asian Radio on 1413 AM.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर ऑल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक आटा चावल दालें मसाला जात रोजाना ताजा सब्जियां और फल फ्रूट हलाल गोश्त और चूजे फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले बचिए इधर उधर की ख्वारी से शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से बुखारी सुपर स्टोर नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक व्हाइट एबी रोड ब्रेडफोर्ड BD88JL बुखारी पसंद आपकी और हमारी बुखारी
6: उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे क्या ही चॉइस है आपका
7: ये चॉइस हमारा नहीं ये तो कमाल है फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का
6: जो कि पायदार मजबूत खूबसूरत डबल एंट्रेपल ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
7: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं
6: फर्स्ट चॉइस
7: 106 लिस्टर हिल्स ब्रेडफोर्ड BD71JL
6: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
7: 01274317644
8: क्वालिटी वैल्यू स्टाइल एंड सिक्योरिटी योर नंबर वन चॉइस फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर
9: दुल्हन वो जो पिया मन भाए
10: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए
9: नित नए डिजाइन के साथ चूड़ियां कंगन कांटे
10: बालियां अंगूठियां और हार
9: जो दुल्हन करे सिंगार
10: आज ही मामू काके की दुकान
9: खालिस सोने की पहचान
10: पाकिस्तान ज्वेलर्स तशरीफ लाइए
9: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए
10: आपकी शान
9: हमारी आन
10: क्वालिटी की पहचान
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स 1 Dufferin Lane ब्रेडफोर्ड BD95ER 01274491442
10: पाकिस्तान ज्वेलर्स अरे बेटी की शादी करीब आ रही है समझ नहीं आ रही कि जेवर कहां से लूं
11: अरे भोली तुम्हें नहीं पता कि सोफी बहन ने ऑकलैंड पर सोफी ज्वेलर्स के नाम से गोल्ड जेवरात की दुकान खोल दी है
10: सोफी ज्वेलर्स
11: सोफी नहीं सोफी नित नए डिजाइन के जेवरात जिनकी क्या है बात इंश्योरेंस और वैल्यूएशन का भी इंतजाम लेडी स्टाफ
10: सोफी ज्वेलर्स 121 ऑकलैंड BD94QU 01274056014 सोफी ज्वेलर्स
11: ना ही बच्चों के डिजाइन के जेवरात जिनकी क्या है बात इंश्योरेंस और वैल्यूएशन का भी इंतजाम लेडी स्टाफ
10: सोफी ज्वेलर्स 121 ऑकलैंड BD94QU 01274

0: ऑनलाइन थ्योरी क्लासेस की सहूलत आज ही विजिट कीजिए
1: 33 वेटल लेन ब्रेडफोर्ड 01274201679
0: सुनिए जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे
1: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स
0: खूबसूरत कारपेट्स लैमिनेट लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ बॉबीज कारपेट्स लिस्टेड लाइट ट्रैफिक लाइट्स ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग BD3 ADN बॉबी आइए भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए नंबर मिलाइए 07414260078

0: to Julius, 93 Hodson Grange Road, Bradford 7, 01274-414-760.
1: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है,
2: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पल्स जाने का इरादा है।
1: जी हाँ, पल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
2: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए। आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, पल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रेडफोर्ड, BD6 1DA, फोन 01274-306-567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
3: You're listening to
4: Breakfast Asian Radio on 1413 AM.
3: You're listening to
4: Breakfast Asian Radio on 1413 AM.

0: Nation Radio on 1413 AM.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे, क्या ही चॉइस है आपका।
6: ये चॉइस हमारा नहीं, ये तो कमाल है, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का,
5: जो कि पायदार, मजबूत, खूबसूरत डबल एंटीपल ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
6: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं।
5: फर्स्ट चॉइस
6: 106 लिस्टर हिल्स ब्रैडफोर्ड BD71JL।
5: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए, आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
6: 01274317644
7: फॉर क्वालिटी, वैल्यू, स्टाइल एंड सिक्योरिटी। योर नंबर वन चॉइस, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर।
8: Sheffield Mela CIC presents DeciFest Sheffield Mela 2026. Join us at Firth Park, Sheffield on Sunday, 2nd of August from 12 to 8 p.m. A family fun day for the whole family with fun fair, food stalls and Mela shopping. Featuring live performances from Lemba Husseinpuri, H. Dami, Ramit Sandhu, Summer Blake and much, much more. Sunday, 2nd of August at Firth Park, Sheffield. We'll see you there.
6: आओ असल सोने के जेवरात के लिए दुबई चले।
9: मगर दुबई का टिकट तो हमने लिया ही नहीं।
6: अरे पगली, अब दुबई ब्रैडफोर्ड में ही आ गई। जी हाँ, दुबई ज्वेलर्स ने व्हाइट एबे रोड पर पेट्रोल स्टेशन के पास खूबसूरत जेवरात का शानदार शोरूम खोल दिया है।
9: जी मिल करते कांटे, बालियां, कंगन, गले के हार 22 और 24 कैरेट गोल्ड में तैयार।
6: टॉप क्वालिटी, बेहतरीन सर्विस, ओपन 7 डेज।
9: 30 वेटली हिल ब्रैडफोर्ड BD8 8NG। फोन 01274477257। दुबई ज्वेलर्स।
6: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका, पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक। आटा, चावल, दालें, मसाला जात, रोजाना ताज़ा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे। फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की ख्वारी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबी रोड, ब्रैडफोर्ड BD8 8JL। बुखारी पसंद आपकी और हमारी बुखारी।
10: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
9: अरे दूल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ 3 दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रैडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दूल्हे को शहजादा बना दे।
6: मिलान दुल्हा हाउस 8183 व्हाइट एबे रोड, ब्रैडफोर्ड BD8 8DR। टेलीफोन 07885428349। अदर ब्रांच मुगल एम्पोरियम 1304 लीड्स रोड, ब्रैडफोर्ड।
9: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
6: तुम्हें पता है भाभी ने बोबीज कारपेट के स्पेशल ऑफर का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
9: खूबसूरत कारपेट्स, लैमिनेट, लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डायरेक्ट, ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग्स, BD3 8DN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।
11: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
6: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज बेल्स जाने का इरादा है।
11: जी हाँ, बेल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
6: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए, आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, बेल्स, सी रूम 46 रूली एवेन्यू, ब्रैडफोर्ड, BD6 1DA। फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
12: Do you know there are 170,000 new cases of cancer each year in Pakistan? Do you know that Imran Khan Cancer Appeal provides free cancer treatment to 75% of its patients? Do you know that the third specialist Shaukat Hanum Cancer Hospital is being built in Karachi? We need your support more than ever now. Please donate today by calling 01274 424444 or donate online at ikca.org.uk.
1: You're listening to
0: Bradford Asian Radio on 1413 AM.
1: You're listening to
0: Bradford Asian Radio on 1413 AM.